के साथ में शेयर करने के लिए। जबकि आप हमें सुन रहे हैं 104.2 FM साथ में रोवा पर, आपका खास स्वागत करते हैं इस शो में जिसका नाम है लंच बॉक्स, आपका फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, जहां पर आप दिन का एक ब्रेक लेते हो, सुबह से काम काज कर रहे हो लेकिन अभी का जो ब्रेक है इसमें अपने बैटरीज को रिचार्ज करते हो। इसीलिए आपका साथ देने के लिए और ढेर सारे ऐसे एनर्जेटिक पॉपिंग गाने सुनाने के लिए अभी से लेकर 3 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। तो सुनते रहिए हम, और साथ में 5599 पर अपने जो मैसेजेस है आप भेज सकते हैं। इसके अलावा 0800-004-866 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मैं हूं अभी लेकर आया हूं ढेर सारा प्यार और इन्फॉर्मेशन, बांटता रहूंगा आपके साथ में।

हम पर मैं हूँ आपका साथी अवि और यह है लंच बॉक्स का कारवा। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने नकल्स क्रैक करते हुए देखा होगा या फिर सुना होगा। जो लोग अपने उंगलियों को ऐसे मोड़ते हैं और फिर एक नकल पॉप होता है, और इसको आपने कभी ना कभी यही भी सोचा होगा कि क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट में उंगलियों में एथराइटिस हो सकती है या नहीं। तो ऐसा ही रिसर्च बीबीसी ने किया है, जहाँ पर कुछ पेशेंट्स के साथ में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है जो अपने नकल्स को क्रैक करते रहते हैं। तो इनको ये पता लगा है, जो रिजल्ट सामने आई है, कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। लेकिन वहीं पर जो लोग अपने जो नेक को पॉप करते हैं, ऐसे गले को भी घुमाकर फोड़ते हैं ना, जो आवाज़ आती है, तो ये नेक पॉपिंग जिसको कहते हैं, जब आप करते हैं, तो यहाँ पर ये सामने आया है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नर्व्स जो हमारे नेक से होकर ब्रेन तक जाती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल केयरफुल रहे, क्योंकि आप जाने अनजाने में कोई ना कोई सीरियस इंजरी खुद को पहुंचा सकते हैं। ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू बीबीसी, आपके साथ में लंच बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ।

0: Breakfast with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
0: हम.
2: We gotta go. Are you ready?
3: Come and take a trip with me.
4: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
5: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
6: Let's go.
5: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
9: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Acoustic wall panels, $2 for $99. Round LED bathroom mirrors, $149. Outdoor heaters, just $129. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
11: हाँ। अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
11: मिसेस सिंह
12: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
13: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
14: Make your space your own for less at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
15: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए auckland.gov.nz/where-it-goes पे Tamaki Turuki All Together Auckland
0: Non-stop Bollywood
16: जो भी करते शिद्दत के साथ करते
0: हैं हम Playing Bollywood's biggest hits
1: Lunchbox with Ketan.
17: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
1: Office shoutout.
18: हम पर लंच बॉक्स ऑफिस शाउट आउट में आज हमारे पास में मैसेज किया है विनय शर्मा ने विनय ड्राइविंग कर रहे हैं और लिखते हैं आई एम ड्राइविंग कैरिंग ऑन विद माय डे बट आई एम स्टिल ट्यून इन टू हम एंजॉयिंग एवरी मोमेंट इसी तरह से आप हमारा साथ देते रहे विनय हम के साथ में कीप हमिंग आपको भी ऑफिस शाउट आउट में शामिल होना है तो 5599 पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं अपने स्टाफ का नाम भी लिख सकते हैं साथ में जिस बिजनेस में आप हो वो सभी कुछ डिटेल्स हमारे पास में भेज सकते हैं
0: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

लंच बॉक्स में मैं अभी आपको जल्दी से बता दूं भजन जेम्स के बारे में, क्योंकि कुछ एक्साइटिंग होने वाला है जहां पर आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे कुछ अलग और यूनिक, क्योंकि साउथ ओकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड और साथ में एनजेड कल्चरल ट्रस्ट साथ मिलकर रवितेश देव को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो लाइव बैंड पर आपको सुनवाने वाले हैं डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन और कीर्तन। ये सभी कुछ आप सुन सकते हैं सैटरडे 22 अगस्त को, जी हाँ इसी शनिवार को, 7 PM वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एवेन्यू पपटोई में, जहां पर टिकट से सिर्फ $30 और बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 इनके लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहां पर स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट्स भी बेचे जाएंगे। टिकट्स के लिए आप eventbrite.com जा सकते हैं, जेस फ्रेश साथ में वेली फ्रेश पपटोई और शिव प्रसाद केल्सन से आप अपने टिकट्स ले सकते हैं। और एक और एक खूबसूरत बात क्या है इस इवेंट की, यहां पर जितने भी प्रोसीड्स कलेक्ट किए जाएंगे ये सभी दिए जाएंगे इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी। तो आप भी इसमें इस नेक कार्य में अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं बाय बीइंग देयर।

0: हम पर महकता और जायकेदार लंच बॉक्स के साथ में मैं हूं अवि, और आपको बता दूं कि हमारे जो सोशल मीडिया कंपटीशन जारी है रक्षाबंधन के लिए, हमारे हम फेसबुक पेज पर जहां पर आप कूल हार्ट के $300 जीत सकते हैं, तो इसके लिए बहुत समय नहीं बचा है अब। और जबकि ये जो ड्रॉ है ये अगले शुक्रवार को फ्राइडे 28 अगस्त को रहेगा, तो बस कुछ यूँ कह सकते हैं 1 वीक ही है आपके पास में। और अभी भी आप जाकर हमारे हम फेसबुक पेज पर जो प्यारा सा रक्षाबंधन जो कंपटीशन है इसमें भाग ले सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, मज़ेदार भी है। यहाँ पर आपको जाकर कुछ ऐसे एक ऑब्जेक्ट यूँ कहें जो आपके लिए बिल्कुल स्पेशल है, भाई बहन के नातों में, नाते में, रिश्ते में, अगर जो कोई प्यारा सा गिफ्ट है जहाँ पर आपके भाई ने आपको दिया था या फिर आपकी बहन ने आपको दिया था, जिसको आप बड़े ही प्यार से और फोन रिमेंबर करते हो, बस उसी चीज के साथ में फोटो खिंचाकर, उसी चीज की फोटो खिंचाकर आप हमारे हम फेसबुक पेज पर अपलोड करें। उसके बाद में 2-3 लाइंस लिखें कि क्यों आपके लिए ये स्पेशल है, और अपने सिबलिंग को टेक करें। बस इतना ही करके आप $300 जीत सकेंगे, जबकि आपके नाम को एंट्री मिल जाएगी इस ड्रॉ में। बस इतना ही सिंपल है। तो अभी भी आपके पास में समय है, जल्द से जल्द इसमें एंटर करें।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम पूजा की थाली में राखी सजाते हैं, धागों के जुड़ने से दिल मिल जाते हैं, माथे पे रोली का तिलक लगाते हैं और मीठे की मिठास से अपनों को करीब लाते हैं। इस रक्षाबंधन दीजिए अपने अपनों को कुछ ऐसा जो उन्हें उनके होने का एहसास दिलाए। सोना संसार के साथ, जहां आप पा सकते हैं बेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन फॉर योर लव्ड वंस। सोना संसार 190 स्टॉर्ड रोड माउंट रॉस्किल और 138 ग्रेट साउथ रोड पापा तोए। सोना संसार, संसार रिश्तों का।
2: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
3: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ,
5: अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस, फोकस साडा कुछ नहीं।
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
8: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon, and this time it's different. You now need to enroll before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
9: Remember, if you want to vote, you need to enroll first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
10: Being local doesn't mean looking small. Strong professional signage gives your business the presence and credibility customers expect. Speedy Signs works with local businesses to create signage that feels established, polished, and competitive. From building signs to branded vehicles, they help you show up like the serious operator you are. Big impact, smart spend. Give them a call on 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
11: Lunchbox with Keithan.
12: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
13: चटनी शॉट्स।
14: लंचबॉक्स चटनी शॉट्स में आज बातें करेंगे टैटूज के बारे में, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड में ये काफ़ी चर्चे में है। और क्यों, आपको जल्दी से बता देता हूँ। टैटूज कई तरह के होते हैं। एक तो होती है प्लेसमेंट टैटूज, जो आप अपने चॉइस से बनवाते हो, या फिर दूसरी होती है एक जहाँ पर आप किसी की मेमोरी में आप कुछ इंक करवाते हो। लेकिन अभी के टैटू इंडस्ट्री न्यूजीलैंड में क्या हो रहा है, इनको एक ट्रबल हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट लेकर आ रहे हैं एक AI जनरेटेड इमेज, और ये इमेज फिर ये टैटू करवाना चाहते हैं। जो टैटू आर्टिस्ट है, इनका ये कहना है कि AI जनरेटेड इमेज जो है ये काफ़ी डिटेल होती है और इसको सही तरीके से उतारना काफ़ी मुश्किल भी। और दूसरी बात जिससे ये खुश नहीं है कि कहीं ना कहीं जो लोग किसी टैटू आर्टिस्ट के पास में जाते हैं तो इनके स्किल सेट से खुश होकर जाते हैं, और वहीं पर आप एक AI जनरेटेड इमेज लेकर आ जाते हो, विच इज़ लाइक नॉट बीइंग टू क्रिएटिव। तो ये कुछ इनका कहना है कि जो मुसीबत है AI का, इनके इंडस्ट्री में भी अब क्रीप इन करने लगी है।
11: दिल से दिल तक
5: unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना. Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: लंच बॉक्स में आपको यादों की दुनिया में ले चलते हैं विद द काइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 0800 रचना.

सब मेरे दोस्त माय फ्रेंड, जब भी किसी फाइव स्टार होटल जाते हैं या तो खाने के लिए या किसी से मिलने के लिए और या किसी और काम के लिए, तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप

शर्म में खदर था बुखार हुआ नोवाली मुझे खाने की बन गोली मैंने बोला यो जोगी जोगी मैनेजर कुछ पूछा सुनते हैं आप मैंने मांगा नहीं खाना तुम चीनी मुझे लगते वो लंदूरी वो हैपनिंग मैन बोला सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं यहां हूं एम्प्लॉई मुझे नौकरी ना भाई फिर भी मैं करूंगा बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए।

ड्रिंक लाया मेरा सर चक्कर आया मैंने बोला बैग ला लाया और गुर्राया कॉल द प्रेसिडेंट सब घबराया जब प्रेसिडेंट आया मेरा मन मचला देखा सोनी सोनी पूरी लाल साड़ी वाली आगे खड़ी है मैडम क्या समस्या हुई है बुलवाया मुझे क्या प्रॉब्लम है सर कुछ नहीं कुछ नहीं वो चलता रहता है बस नहीं नहीं सर हम होटल की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं कन्फेशन करते हैं क्या आपको चाहिए

0: केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: अटेंशन एवरीवन, हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
3: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
4: क्या आपकी

0: कूलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
3: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
4: डॉक्टर ने क्या बोला?
5: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
4: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
6: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अ शो वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
7: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे, कॉल अश्योर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashurevan.co.nz। नॉर्थ इंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
10: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI.
11: Deal breaking news. Today is the Briscoe's one day sale.
12: That's right, Briscoe's lady, with up to 60% off store wide. Every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
13: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
14: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
13: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
14: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
13: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
11: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
15: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. The Police Association has welcomed a report justifying the killing of fugitive Tom Phillips. The IPCA watchdog says it was self-defence, given the officer who pulled the trigger believed his colleague was likely dead and that he himself was at risk. Association President Steve Watts is happy.
17: We were pleased to see that the IPCA had commended officers A, B, C and D for the actions that they took on the night.
16: Up to 250 jobs could be lost at Sky City. The company has begun consulting on proposals it says are difficult but necessary. A University of Otago study has found disparities in the rates of radiotherapy treatment between urban and rural areas. They were noticeably lower in smaller centres for breast, prostate and lung cancer, the three most prominent forms in New Zealand. Dr. Steve Withington is calling for change.
18: There needs to be targeted interventions for regional and rural people. This postcode lottery thing, we need to do better.
16: There's a plan to get more out of Auckland's motorway network as the population nears 2 million. The transport agency has come up with a three-part approach for the next 30-plus years. Included are recommendations to implement time-of-use charging and upgrading key interchanges. To sport, coach Andrew Webster has signed a 4-year contract extension with the Warriors. Already under contract until the end of 2028, Webster's new deal will keep him with the Auckland-based NRL club until the end of 2032. Rugby league with Machinery House and a league of their own. And there are 3 debutants in the Black Fern squad for the Laurie O'Reilly Trophy Test with Australia this Saturday in Auckland. Flanker Eleanor Plum-King will start, while Amarante Satiti and Shaira Tuilo Tua are in the reserves.
15: Zabardast hits.
19: Shuru ho jaye to rukte nahi.
15: Playing Bollywood's biggest hits.
0: Hum. Sports news.
15: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
20: Weather mein aaj sunset at 5:52 PM, saath mein minimum temperatures overnight 6 degrees tak rahenge. It's going to be cool tonight. Aur aise mein weather generally fine, accompanied with light winds bataye ja rahe hain.
15: Lunchbox with Ketan.
21: Aisa bajaunga na ki tere kaano mein roz meri aawaz gunjegi.

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अवि, और जबकि जस्ट आफ्टर 1:03 तक ये कारवा आपके साथ में चलता रहेगा। आप हमें सुन रहे हैं 104.2 एफएम साथ में रोवा पर। आपका खास स्वागत करते हैं, वेलकम टू लंच बॉक्स। और इसी आवा की इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं आपको हम बोर्डिंग कॉल के बारे में बता दूं, विच इज नाउ ओपन। येस, योर ड्रीम आइलैंड एस्केप इज जस्ट वन बोर्डिंग कॉल अवे, जहां पर आप दो रिटर्न एयर टिकट जीत सकते हैं वनुआतु के लिए विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी। आपको एंटर करने के लिए सिर्फ एवरी वीक डे हम सुनते रहना है और अपने कान खुले रखने हैं टू हियर द स्पेशल बोर्डिंग कॉल क्यू, जो आपके लिए 8 बजे सुबह, दिन में 11 बजे और साथ में 1 PM के और इधर आफ्टरनून में 5 PM के आसपास आपके लिए प्ले होगा। तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसे ही आप उस क्यू को सुने, स्पेशल बोर्डिंग कॉल के क्यू को सुने, उसके बाद में आपके पास में 60 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड टाइप करें बोर्ड नाउ, उसके बाद में उसको सबमिट करें। और अगर जो आपको इस कंपटीशन पेज का लिंक चाहिए तो BC लिखकर 5599 पर जरूर भेजें। एंड दैट्स इट, यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन एन अनफॉरगेटेबल वनुआतु गेटवे। Don't miss your flight because this one could take you to paradise. Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. T's and C's do apply. Bachao kya?

0: लंच बॉक्स में कमिंग अप नेक्स्ट इज लंच टाइम रेंट लाइन, जहां पर आपको एक टॉपिक देते हैं जिसके बारे में आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय टेक्सटिंग ऑन 5599। तो आज के लिए जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है, इसको नाम देंगे टेकिंग नेगोशिएशंस टू फा, यानी कि जब भी आप खरीदबीन करते हो और आपको नेगोशिएशन करने का पूरा अधिकार है, आपको राइट है, लेकिन क्या आप इसे कभी कभी बहुत दूर तक खींच कर ले जाते हो? तो इसके बारे में ही आपको बताना है, वेदर इससे आप खुश होते हो या फिर नहीं। एज अ कंज्यूमर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, वेदर डू यू टेक नेगोशिएशंस टू फा, और क्या ये अक्सर आपके लिए अच्छी तरह से वर्कआउट होता है या नहीं, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, डिस्काउंट्स अच्छे मिलते हैं या नहीं, इसके बारे में आपको हमें बताना है। और या फिर आप कहीं पर बिजनेस ओनर भी है, आपको लगता है कि नेगोशिएशंस को काफ़ी दूर तक खींच कर ले जाया गया है, एंड इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, 5599 पर टेक्स्ट करें।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Lunchtime, Rantline.
2: हम पर यह है लंच टाइम रेंट लाइन, जबकि हमने आपको आज टॉपिक दिया था whether you are taking negotiations too far. हालांकि एज अ कंज्यूमर आपके पास में राइट है नेगोशिएट करने को, क्या आप काफ़ी बार इसे बहुत दूर तक या फिर बहुत देर तक खींच कर लेकर जाते हो, आपसे इसके बारे में सुनना चाहा था. और या फिर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपसे भी सुनना चाहा था कि हाउ डू यू फील अबाउट व्हेन कंज्यूमर्स टेक नेगोशिएशंस टू फार. तो एक जो मैसेज आया है हमारे पास में, पूजा ने लिखा है 5599 पर, मैं जल्द आपके लिए पढ़ दूं. आई फील निगोशिएटिंग इज योर राइट एंड यू हैव टू आस्क फॉर अ फेयर प्राइस सो दैट यू कैन सेव मनी व्हाइल यू आर परचेसिंग. आफ्टर ऑल यू आर द वन हु इज गोइंग टू पे फॉर इट, सो इट्स ओके टू निगोशिएट एंड आस्क फॉर अ फेयर बिट ऑफ डिस्काउंट. ये पूजा का कहना है. थैंक यू पूजा फॉर शेयरिंग योर थॉट. इसके साथ में दूसरा जो मैसेज है यह पंकज ने लिखा है, और पंकज का मैसेज है कुछ इस तरह से. हाय, आई एम अ बिजनेस ओनर इन पपटोए. आई डू फाइंड that people try and negotiate a lot of times. I feel it's okay to negotiate, but they do take it too far, as sometimes they don't realize that we businesses have to make some profit too, and we have some cost as well. I hope consumers do understand and play a fair game with discounts. फेयर इनफ. यह पंकज ने लिखा है, और पंकज का कहना है कि एज अ बिजनेस ओनर, इन्होंने अपना बिजनेस का नाम नहीं दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि इट्स ओके टू आस्क फॉर सम डिस्काउंट, लेकिन कंज्यूमर्स को भी समझना चाहिए कि बिजनेसेस का भी ओवरहेड होता है, जो कॉस्ट होते हैं, और ये उनको भी बया करना पड़ता है. सो दोनों तरफ की आज जो टेक्स्ट है, दोनों पार्टीज की तरफ से, एक कंज्यूमर की तरफ से थी और एक बिजनेस ओनर की तरफ से थी, तो इट इज़ अ गुड फेयर वन. और

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गेमलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बातें करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें। ये सूचना एशियन फैमिली सर्विसेज की ओर से है।

0: हम पर सिलसिला है ये लंच बॉक्स का और आपको कम्युनिटी न्यूज में शेयर करने आपके साथ में न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो इसी वीकेंड को 22nd और 23rd अगस्त को रहेगी एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। और अगर जो अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है और आपको पार्ट लेना है तो जल्दी से विजिट करो न्यूजीलैंड नेशनल कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज पर या फिर NZCA के प्रेसिडेंट पंकज से आप 0210908506 पर बातें कर सकते हैं। इसके साथ में अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट में सिंडी और रुजबे ने खुलकर बातें की हैं पंकज के साथ में, जहां पर इस गेम कैरम बोर्ड को लेकर काफ़ी बातें हुई हैं। अगर जो अभी तक आपने कैरम बोर्ड को नहीं खेला है और इसके बारे में, इसके रूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो CB लिखकर 5599 पर मैसेज करें ताकि इस एपिसोड का लिंक आपको मिल सके और कहीं ना कहीं आपकी भी जो इंटरेस्ट है इस गेम के साथ में लग जाए। इसके साथ में आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि ओकलैंड भक्ति सत्संग लेकर आ रहा है ग्रैंड 3 कोना कीर्तन नाइट, जिसमें आर्टिस्ट रहेंगे अच्युतन नायर सिडनी ऑस्ट्रेलिया के, साथ में नितिन गाउंडर ओकलैंड से और साथ में अश्विन कुमार अप्पा लटोका फिजी से। तो फ्राइडे 21st अगस्त को इनका जो कॉन्सर्ट है रहेगा वैदिक सेंटर पापाटोई में, विच इज़ टुमारो। टिकट्स है $20 और स्पॉन्सरशिप के लिए या इंक्वायरीज के लिए आप 0210667236 पर कॉल कर सकते हैं।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
1: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
1: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
10: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
11: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
11: पर डेवलपमेंट के पैसे
10: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.go.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
12: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
13: Join the Tribe!
12: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
13: join the Tribe!
14: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
15: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
16: Mover, tools, bikes, या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden और lifestyle sheds की great range के साथ अपना perfect storage solution sort करें. आज ही बात कीजिए with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
17: Lunchbox with Ketan.
18: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
17: इसके पीछे?
18: हम.
17: Lunch के मंच पे.
0: हम पर आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स विद अवी. क्या आपने मनी मेहम के बारे में सुना है? एक ऐसा गेम जिसे डिजाइन किया है 4 या 13 स्टूडेंट्स फ्रॉम ओमिस्टन सीनियर कॉलेज, और इनका जो स्कूल बिजनेस प्रोजेक्ट था इनको इसने बना दिया है रियल वेंचर मनी मेहम. एक ऐसा गेम जहां पर इनका मोटिव यह है कि जो बच्चे बिटवीन द एजेस ऑफ 9 एंड 15 हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया जाए एक ऐसे गेम में जहां पर ये फाइनेंशियल डिसीशन बना सके थ्रू अ गेम. तो कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं बच्चों की फॉर रियल वर्ल्ड, और इन्होंने इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम अदर बोर्ड गेम्स. और इन 4 टीनेजर्स ने बातें की हैं कि कैसे इनको ये आइडिया आया है और कैसे ही इन्होंने इस गेम को डिज़ाइन किया है, और ये सब बातें इन्होंने खुलकर की हैं सेंडी और रुजबे के साथ में इन द अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट. अगर जो आप इस पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो 5599 पर ड्राइव लिखकर भेजें, ताकि आपको भी पता लगे मनी मेहम के बारे में और कैसे और कहां से ये गेम अवेलेबल, या फिर आप भी अपने बच्चों को इंस्पिरेशन देना चाहते हैं टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो ड्राइव लिखे 5599 पर भेजे.
17: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
19: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: हम पर लंच बॉक्स में घड़ी के कांटों को पीछे मोड़ते हुए आपको लेकर चलते हैं यादों की दुनिया में, क्योंकि अब समय हुआ आपको सुनवाए थ्रोबैक विद 0800 रचना।

0: अविनीत।
1: लंच बॉक्स के इस सफर में फाइनल हवा में हम पहुंच चुके हैं और जबकि तीन तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ऐसे में तीन बजे के बाद में आपके साथ में हो जाएंगी सैंडी, लेकर आएंगी कॉफी ब्रेक, लेकिन अभी के लिए इस हवा पर भी आपके साथ में होंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें और कुछ ऐसे गीतों को भी पेश करते रहेंगे, मेलोडियस नंबर्स को पेश करते रहेंगे जो आपके लिए आपका लंच हवा बिल्कुल हॉट एंड स्पाइसी बना दे।
0: बचाओ

हम पर कमिंग अप नेक्स्ट इज KPR रिप्ले, जहां पर आपको दो चॉइसेस देंगे, दो ऑप्शंस देंगे, किसी एक को ही आपको चुनना है, और चुनकर जो भी पसंद है आपको 5599 पर हमारे पास में टेक्स्ट करना है कि क्या सुनना पसंद करोगे। तो जो पहला चॉइस है आपको जल्द से सुनवा देते हैं ताकि आप भी अपना माइंड बना सकें।

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: स्किप या रीप्ले।
3: हम पर लंच बॉक्स में मैं हूं आपका साथी अवि, और स्किप या रीप्ले में जो मैसेजेस हमारे पास में आए हैं इस पर आउटराइट विनर ठहरा है बंधु 2.0, क्योंकि काफी मैसेजेस जो है इनकी फेवर में है। जैसे कि सिंडी ने मैसेज किया था, इसके साथ में अंकुर आपका भी मैसेज आया है, साथ में प्रतीक आपने भी मैसेज किया है, और इसके साथ साथ हमारे पास में एक और एक मैसेज आया है प्रिया का। आप सभी ने चूज किया है बंधु 2.0, जबकि दो चॉइसेस आए थे हम प्यार करने वालों के लिए, जिनमें शामिल है केश और साथ में कृष्णील। आपने कहा था कि आपको ये गाना सुनना पसंद है, लेकिन वोट्स गो outright in the favor of Bandhu 2.0. तो अगला गाना अब तो यही बजेगा। Thank you for playing though.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

हम पर लंच बॉक्स में मैं हूँ आपका साथी अभी और आपको रिमाइंड कर दूं जबकि आज है 20th of August तो ऐसे में आपके पास में वन मोर वीक टू गो है जबकि रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू आप देकर लाइव होने आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर सकेंगे जहां पर आप जीत सकते हैं $250 कैश इनाम जबकि ये ड्रॉ होगा 28th August को और दो लकी विनर्स ठहरेंगे। आपको सिर्फ क्या करना होगा, जैसे अपने अपने शो में हमारे रिस्पेक्टिव आरजेज आपको मौका दे कॉल करके 0800004866 पर सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू दे, यानी कि जो भी आपको अपने सिबलिंग के बारे में पसंद है उसके बारे में आप बता सकते हैं या फिर कोई ऐसी बातें होंगी जिससे आप ना खुश है उसका भी आप खुलासा कर सकते हैं। बस इतना ही करके आप अपने नाम को ड्रॉ में शामिल कर लोगे और इन टाइम जस्ट इन टाइम फॉर रक्षाबंधन राखी आपके हाथ में $250 कैश इनाम लग सकता है जिससे आप अपने सिबलिंग के लिए एक प्यारा सा तोहफा ले सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका रहेगा विद रक्षाबंधन ऑन एयर सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू।

0: Yeah. हम पर मैं हूं आपका साथी अभी बस थोड़ी देर में आपके लिए लेकर आऊंगा टेक टॉक, जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बातें होंगी आपके साथ में, अपडेट्स जो हैं शेयर करते रहेंगे ताकि आप भी बिल्कुल अवेयर रहे, अपडेटेड रहे।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: ड्राइविंग यू होम, ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
5: ये गलत बोल दिया यार।
4: और पहनता भी नहीं उसको।
5: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं, अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ।
4: इंटरेस्ट
6: ब्रांड हो गया अभी वो।
5: अभी ब्रांड हो गया ना।
4: रुस्बे के बाल लगे उस।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.
7: It's a client who tried DIY, it did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier, everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
8: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277644. T's and C's apply.
9: Deal breaking news. Today is the Briscoe's one day sale.
10: That's right, Briscoe's lady, with up to 60% off store wide. Every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for T's, C's and store hours.
11: Auckland's growing, with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
13: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
14: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
1: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
15: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
1: इसके पीछे.
3: Hum.
1: Tech Talk.
0: आज टिकटॉक में मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में अंडर 16 टीनेजर्स के लिए बैन कर दिया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना, और ऐसा ही कुछ कदम फ्रांस उठाना चाह रही थी, जहां पर यह प्रपोज किया गया था बाय लॉ मेकर्स कि अंडर 15 जो टीनेजर्स हैं इनके लिए जो सोशल मीडिया बैन है ये चालू किया जाए। लेकिन अभी हाल में फ्रांस के कोर्ट ने इस प्रपोजल को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है और स्ट्राइक डाउन कर दिया है, जबकि उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ बैन जो अंडर 15 के लिए है ये इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकती है और यहां पर इनको ब्लॉक किया जाता है, इसीलिए इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ये हिंडा करती है, इन्फ्रिंज करती है। तो यहाँ पर फ्रांस में जो लॉ मेकर्स थे इन्होंने ब्लॉक करना चाहा था, जबकि इनका रीजनिंग ये था कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो बच्चे होते हैं इनको एक मेंटल हेल्थ रिस्क हो जाती है। लेकिन अब फ्रांस के टॉप कोर्ट ने इस जो प्रपोजल है इसको बिल्कुल खारिज कर दिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इन्फ्रिंज करती है, ये इनका कहना है।
2: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: Yaskun Jackie.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: लंच बॉक्स में अब 0800 रचना की ओर से आपको सुनवाते हैं एक और एक थ्रोबैक और इसी के साथ साथ हमारा यहां से जाने का समय हुआ। अब एक बार फिर आपसे कल मुलाकात होगी ठीक 12 पर, लेकर आएंगे एक और एक लंच बॉक्स का सेगमेंट। इन द मीनवाइल आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डू टेक केयर, बाय।

0: with Ketan.
1: Mujhe pasand hai ladka.
0: Hum. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: क्या? कौन है? अरे
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Morning.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
0: मोवर, टूल्स, बाइक्स या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? फाइंड शेड लोड्स एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन. गार्डन और लाइफस्टाइल शेड्स की ग्रेट रेंज के साथ अपना परफेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन सॉर्ट करें. आज ही बात कीजिए विद द टीम एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन. When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800-862-342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ. अच्छा,
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह.
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
0: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
7: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards business card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 2026. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hastie with the latest at 3. It's hoped lessons will be learned from the justification of Tom Phillips' death. The Maracopa fugitive was shot by a police officer, which the independent watchdog has declared as self-defence. Police Association President Steve Watts says the response needs to be looked at in its entirety.
10: That communication, that command and control was outlined as something that needed to be looked at, and I'm sure that police will be taking that on board.
9: Up to 250 jobs are on the line after a tough financial year for Sky City. According to the company's latest report, annual profit fell 37% to $18.2 million. A new drug testing report shows more people are getting what they think they're buying. According to Know Your Stuff, 92% of samples tested this season matched the substance it was offered as, the highest rate it's recorded. Spokesperson Carrie Spearin says it's reassuring news.
11: If something is as expected, that means that there's less of a risk of accidental overdose because you're getting something that might be more potent or not what you thought it was.
9: Marlborough's iconic wine and food festival has been put on hold and won't go ahead next year. Wine Marlborough says the huge investment needed to run the event in its current format is no longer sustainable. To sport, serious questions for New Zealand cricket after announcing a preliminary deficit of $7.3 million for the financial year ending July 31st. Another top netballer is leaving for Oz. Silver Fern Georgia Heffernan has signed a 2-year deal with the Sunshine Coast Lightning. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, Warriors coach Andrew Webster has signed a 4-year extension. He's there to the end of 2032.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.1 डिग्री से और आज को ओवरनाइट 8 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है. कल हल्की सी होने की बारिश के चांसेस है, हल्की सी बारिश होने के चांसेस है, अदरवाइज इट्स टोटली फाइन. सनसेट आज का 5:52 पर.
1: बॉलीवुड
13: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड Coffee Branch me.
14: Coffee Break with Sandy.
12: 3:02 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू चुका है. कैसे हैं आप? आपका डे आज का कैसा जा रहा है वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. वैसे मेरे को लगता है माय टाइम का डे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि कशिका अभी भी यहाँ पे घूम ही रही है. हाय कशिका, कैसा चल रहा है? कोई भी माइक ले लो.
15: हाय, मेरी गुड मॉर्निंग है अभी भी.
12: आपकी अभी मैं आफ्टरनून में पहुंच चुकी हूँ, कॉफी पे आ चुकी हूँ.
15: तुम कॉफी पे आओगी, मेरी तो चाय खत्म नहीं हो रही है अभी तक.
12: क्या बात कर रहे हो, इतना बिजी.
15: मैं पर्स ढूंढ रही थी, यहीं पे भूल के चली गई सुबह सुबह.
12: ये आपका पर्स है यहाँ पे? हाँ. मेरे को लगा कोई ऐसा गिफ्ट रख के गया है कि ये लो आज तुम्हारे लिए पर्स.
15: ले लो. उसमें क्या है. तुम ठीक हो?
12: हाँ, बढ़िया. कैसा जा रहा है आपका डे?
15: अरे बहुत बिजी भाई, तो दिवाली आने वाली है एंड उसमें हम लोग अब बिजी हो रहे हैं. इलेक्शंस आ रहे हैं, हम उसमें भी बिजी हो जाएंगे.
12: हाँ, हाँ, हाँ.
15: तो बहुत एक्साइटमेंट है. बैक ऑफिस में जो काम चल रहा है ना वो बहुत एक्साइटिंग है और इट्स गोइंग टू बी फन टू सेल इट.
12: एग्जैक्टली. एंड काउंट डाउन में बहुत कुछ है अभी.
15: हाँ, बहुत कुछ है.
12: कशिका इज लाइक, और क्या लेके आओगे? बस करो भाई.
15: हाँ, बस करो भाई, अब बहुत हो गया.
12: हो गया पूरा.
15: हाँ, ये साल का कोटा खत्म. नहीं, रेडियोथॉन बचा है ना.
12: रेडियोथॉन भी है.
15: हाँ, अभी तो रेडियोथॉन बचा है
12: टिल दिसंबर. अभी तो बैक टू बैक है चीजें.
15: हाँ, बैक टू बैक है.
12: मुझे लगता है कि रेडियो पे ना सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज मोर बिजी.
15: यस, 100%. बाकी दिनों में ऐसे छुपचाप छुप के बैठ रहे होते हो कि यार कोई देख तो नहीं ले, पूछ तो नहीं कि सेल्स का क्या हाल है. हाँ. क्या चल रहा है. उस समय कोई हाल नहीं पूछेगा.
12: और रेस्ट ऑफ द ईयर में कशिका से प्राउडली घूम रही होती है. हाँ, क्या बात है.
15: एग्जैक्टली. एग्जैक्टली.
12: सही है, सही है. चलो ठीक है. हैव अ वेरी गुड इवनिंग कशिका.
15: थैंक यू सो मच. थैंक यू. और तुम्हारी कॉफी में आज क्या ऐड कर रही हो?
12: आज मैं ब्लैक कॉफी पी रही हूँ.
15: सोई नहीं रात को?
12: कुछ नहीं ऐड नहीं करना है बीच में. नहीं, काफी दिनों से मैं और रुज़बे वी हैविंग अ ब्लैक कॉफी.
15: ओह वाओ.
12: या, नो मिल्क.
15: नो मिल्क एट ऑल?
12: नो शुगर एट ऑल.
15: अच्छा,
12: नो मिल्क नो शुगर जस्ट ब्लैक कॉफी.
15: ऐसे कैसे कड़वी कड़वी पी लेते हो?
12: वही तो, अभी हम इतने मीठे हैं तो थोड़ा कड़वा.
15: उंगली घुमा दो.
12: बैलेंस करना पड़ता है.
15: उंगली घुमा दो.

0: 3:13 यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे बिग ट्विस्ट है हैरी एंड मेगन की स्टोरी में भी। सो प्रिंस हैरी एंड मेगन वैसे ये काफ़ी समय पहले रिलोकेट हो चुके थे कैलिफोर्निया में। नाउ दे आर मूविंग बैक टू ब्रिटेन। सो लेटर दिस मंथ दे एक्चुअली आर गोइंग बैक टू ब्रिटेन 6 years आफ्टर स्टेपिंग अवे फ्रॉम रॉयल ड्यूटीज एंड रिलोकेटिंग टू कैलिफोर्निया। उनके जो बच्चे हैं प्रिंस आर्ची 7 एंड प्रिंसेस लिलिबेट 5, दे आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड स्कूल इन ब्रिटेन फ्रॉम सेप्टेम्बर। वेल थिंक इज कि दे वॉन्ट बी मूविंग बैक टू द रॉयल रेजिडेंस, वहाँ पर वो नहीं जाने वाले हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ प्राइवेट एंड रॉयल्टी के बिना एक घर ब्रिटेन में, वो भी। सो दे आर नॉट रिटर्निंग एज अ वर्किंग रॉयल्स, जैसे कि हैरी का जो भाई है विल, जिस वजह से वो वर्किंग रॉयल्स में है, वैसे वो नहीं रिटर्न कर रहे। जो स्टेटस है इट विल रिमेन अनचेंज एंड दे वॉन्ट रिज्यूम ऑफिशियल रॉयल ड्यूटीज। इससे उन्होंने काफ़ी समय पहले अपने आप को साइडलाइन डिस्टेंस कर लिया था। सो वो उनका सेम चीज़ है कि वो वापस उसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाले हैं। बट रिसेंटली एक्चुअली में कुछ रिलेशंस को लेके, फैमिली रिलेशंस को लेके इम्प्रूवमेंट्स हुई है, जैसे कि हैरी एंड किंग चार्ल्स दे आर रीबिल्डिंग देयर रिलेशनशिप। हैरी मेगन एंड जो चिल्ड्रन है दे रिसेंटली मेट चार्ल्स एंड क्वीन कैमिला हाईग्रोव में, तो वहाँ से ऐसा पॉसिबिलिटी थी कि दे आर रीबिल्डिंग द रिलेशन एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट। सो चार्ल्स इज़ जो है ही इज़ एक्साइटेड अबाउट इट कि ही इज़ कमिंग बैक टू द ब्रिटेन। दो विलियम एंड हैरी का जो रिलेशनशिप है वो अभी भी स्ट्रेंड है दोनों भाइयों के बीच में, अभी भी विलियम और हैरी के बीच में एक्चुअली में ज़्यादा भी अभी बात नहीं होती है, डिस्पाइट कि इम्प्रूवमेंट इज़ देयर बिटवीन हैरी एंड हिज फादर। सो सिक्योरिटी जो है ये एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा कंसर्न डेफिनेटली रहने वाली है, बिकॉज बीइंग देयर, और ये चीज़ मैंने भी वहाँ पे एक्सपीरियंस की है कि वहाँ पे ना रॉयल्स को लेके बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, लॉयल्टी है, बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने बहुत सारे कमेंट्स अगेंस्ट हैरी एंड मेगन सुने हुए हैं, बिकॉज उनको रॉयल्स के हीरो हिसाब से नहीं चलना था, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया वहाँ पर। तो उनके खिलाफ वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी है, सो इसीलिए जो सिक्योरिटी का इशू है वो डेफिनेटली एक रहने वाला है। दिस वाज़ द वन इशू जिसके कारण ये लोग ब्रिटेन से बाहर गए थे और कैलिफोर्निया में सेटल हुए थे, बट नाउ फॉर सम रीजंस दे हैव टू गो बैक ओवर देयर। सो द फैमिली का जो नया घर है एंड जो बच्चों का स्कूल है उसे प्राइवेट रखा जाएगा, इट विल नॉट बी आउट इन द पब्लिक कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। वेल एनीवे, या थोड़े दिन पहले एक्चुअली में इसके बारे में हम बात भी यहाँ पे कर रहे थे मैं और रुज़बे, बट या सी प्रिंस हैरी एंड मेगन दे आर गोइंग बैक टू ब्रिटेन आफ्टर 6 years।
1: कॉफी ब्रेक विद सैंडी। वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: Bunnings has great value nailed across the store.
5: Get your garage sorted with a Stanley 17 compartment storage organiser 1018 or a Command 1.8kg broom holder just $9.98. Head in store or online for even more great value.
6: Mower, tools, bikes, या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden और lifestyle sheds की great range के साथ अपना perfect storage solution sort करें. आज ही बात कीजिए with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
7: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods multi-grain dosa batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
8: बिजी सुबह हो या शाम का जल्दी का खाना, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर बनाएं. हर मील हेल्दी और डिलिशियस, हाई प्रोटीन, रिच इन फाइबर और स्वाद से भरपूर. ये है हर घर का बेस्ट चॉइस, अम्मास फूड्स मल्टीग्रेन डोसा बैटर. 100% ऑथेंटिक और माँ के प्यार जितना शुद्ध. आज ही करें ट्राई, आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध है. स्वाद भी, सेहत भी.

0: most wanted.
1: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
2: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:20 हो चुके हैं एंड बात करते हैं हमारे नए पॉडकास्ट के बारे में, जिसके बारे में थोड़ा हिंट हमने आपको कल दिया था. क्लासरूम टू अ कंपनी जिसका नाम है एक्सप्लोर. नो एक्सप्लोर जो है ये एक्चुअल में ग्लेंडोई के कॉलेज के ईयर 13 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना बिजनेस प्लान एक्सप्लोर, ये जो गेम है इन्होंने बनाई है. सो क्या है कि ये जो ईयर 13 के स्टूडेंट्स हैं इन्होंने भी येस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, विच इज़ यंग एंटरप्राइज स्कीम. जैसे कि पहले भी कुछ स्टूडेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है. तो इन्होंने एक स्टूडेंट रन बिजनेस जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इन्होंने डेवलप किया एक्सप्लोर को. फिर हम कहते हैं कि यार एक्सप्लोर करना है मुझे, एक्सप्लोर करना है मुझे. तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन स्टूडेंट्स ने एक गेम बनाई है. दे हैव क्रिएटेड एन इनोवेटिव कार्ड गेम जो कि डिज़ाइन है to encourage tourists and locals to discover New Zealand's hidden gems and lesser known destinations. तो ये गेम खेलते खेलते आप न्यूजीलैंड की हिडन जेम्स को डिस्कवर कर सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गो एंड देन विजिट ओवर देयर एज वेल. सो थ्रू द गेम जो प्लेयर्स हैं दे लर्न अबाउट द स्टोरीज, कल्चर एंड अट्रैक्शन दैट मेक दिस प्लेसेस वेरी यूनिक. सो इस गेम का नाम है एक्सप्लोर. और ये जो गेम है आप इनके इंस्टा हैंडल पे जाके EXPLORE वहाँ पे जाके ये गेम आप खरीद भी सकते हैं. तो थोड़ा सा मैं बिट आपको सुनाती हूँ. तो हमारे साथ स्टूडियो में युवराज एंड जेसिका ये दोनों शामिल हुए थे अपनी इस वेंचर के बारे में, ईयर 13 के स्टूडेंट्स अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताने के लिए. तो थोड़ा सा बिट आपको सुनाती हूँ.
4: बिजनेस इज कॉल्ड एक्सप्लोर एंड इट इज अ कार्ड गेम दैट शोस द लाइक different places from around New Zealand. They're like unknown places that people might not know about.
3: Oh, wow.
4: Yeah, we're trying to like bring awareness to those places that aren't just like Auckland or like Queenstown or something, you know?
3: Like hidden gems as well.
4: Yeah, the hidden gems. Yeah.
3: Wow.
4: Our vision is to like connect people more and bring like, you know, bring the tourists some more information stuff about New Zealand rather than just like the places that they'll find on Google and stuff. Yeah, and our mission is to just like bring curiosity and adventure and like make people more excited about like the unknown and that kind of stuff.
3: This is so cool.
5: So
3: इससे पहले भी इन्होंने you know बहुत interestingly बताया कि इन्होंने इसी गेम को select क्यों किया. You know how they एक business में एक rule होता है या फिर एक काम का भी एक rule होता है जहाँ पे 80-20% के ऊपर हम काम करते हैं. कि जैसे you know अगर आप 80% काम करते हैं 20% उसका आउटपुट आता है तो वो कितना फिजिबल है. लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं 20% अगर आप काम करते हैं और 80% रिजल्ट आपको मिलता है तो वो कितना बेनिफिशियल होता है. तो इन्होंने ऐसे कुछ रूल अप्लाई किया है यहाँ पे बिकॉज लास्ट ईयर दे डिड समथिंग जिसके ऊपर इनको उल्टा काम करना पड़ा कि 80% काम करना पड़ा, 20% रिजल्ट था. बट दिस टाइम अराउंड दे डिड कि 20% काम करना पड़े और 80% इनको रिजल्ट मिले. सो मुझे ये बात भी इनकी बहुत अच्छी लग रही है कि एट सच अ यंग एज दे आर लर्निंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट जो हम एक कॉर्पोरेट लाइफ में आके ही समझ पाते हैं. धीरे धीरे जब हम काम में जाते हैं, चीज़ें करनी शुरू करते हैं, उस समय पर हमें लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं अभी राइट नाउ, ये बच्चे ऑलरेडी ऐसे वेंचर्स करते समय सीख रहे हैं. सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ ये जो प्रोग्राम है, जो यंग एंटरप्राइज स्कीम है इनकी. सो इसलिए आपकी इंकरेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ़ दे आर डूइंग समथिंग यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. दिस इज़ अबाउट 25 मिनट्स का एपिसोड है ये. सो गो एंड लिसन टू इट. अगर आप रोवा पे जाते हैं तो रोवा पे जाके अगर आप सर्च करेंगे अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुज़बे तो ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. अदरवाइज स्पॉटिफाई पे भी अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुज़बे में ये एपिसोड आपको मिल जाएगा. जस्ट गो एंड लिसन. इसका लिंक मैंने फेसबुक पेज पर भी डाला है, हमारा जो हम का फेसबुक पेज है वहाँ पे भी पोस्ट किया है ये एपिसोड, वहाँ पे जाके भी आप सुन सकते हैं.

0: 3:32 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. और रिसेंटली जो सिल्विया पार्क में शूटिंग हुई थी, इसकी जो रिपोर्ट है पुलिस की, ये एक्चुअली में सामने आई है, जिसे पता चलता है कि इस शूटिंग में जो न्यू कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिवील करते हैं द पर्सन हु वाज शॉट डेड, 33 ईयर ओल्ड मैन, उनको एक्चुअली में काफ़ी वार्निंग्स मिल चुकी थी. ही हैड अ लॉन्ग एंड सीरियस हिस्ट्री ऑफ ऑफेंडिंग. सो ही हैड 30 कन्विक्शंस इन टोटल, जिसमें कि एग्रवेटेड रॉबरी थी एंड फायर आर्म्स रिलेटेड ऑफेंसेस भी थे. He was sentenced to 4 years in prison 2023 में, जब पुलिस ने उसे एक हाई पावर्ड .308 राइफल उससे पाई थी. एंड एक प्रोबेशन रिपोर्ट जो है ये डिस्क्राइब करती है हिम एज अ हाई रिस्क ऑफ री ऑफेंडिंग विद लिटिल मोटिवेशन टू चेंज. इसके बावजूद भी वो एक्चुअली में बाहर कम्युनिटी डिटेंशन में था, ही वॉज नॉट इन द जेल. सो एक्चुअली में उसके ड्रग रिलेटेड हिस्ट्री जो है वो तब से शुरू होती है जब वो 15 साल का था. हिज हिस्ट्री ऑफ मेथ एडिक्शन इज सिंस ही वॉज 15. सो जिस जज ने उसे सेंटेंस किया था 2023 में, उसको वार्न किया था अबाउट डायरेक्शन ऑफ हिज लाइफ, कि किस डायरेक्शन में वो जा रहा है. एंड उसके 5 बच्चे भी हैं. एंड स्पेशली अपनी लाइफ में जिस पाथ में वो जा रहा है वो उसके और उसकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है. बट इस सब के बावजूद भी रिपीटेड ऑफेंस उसने बहुत सारे किए थे. एंड या हिस्ट्री उसकी एक्चुअली में रह चुकी थी ऑफेंस को लेके. सो दिस इज़ एक्चुअली यू नो, वहाँ पे ये सवाल ये भी आता है कि क्योंकि उसको वार्निंग्स मिल चुकी थी एंड व्हेन ही वाज हेडिंग टू सिल्विया पार्क एंट्रेंस, उसके हाथ में एयर राइफल थी, तो वहाँ पे जो पुलिस ने उसको शॉट किया है, यू नो, अगर पुलिस शायद शूट नहीं करती तो मे बी वो किसी के ऊपर एयर राइफल के साथ शूट कर देता. ऐसी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऐसी एक्चुअली में वहाँ पे हो सकती थी. वो अभी हमें नहीं पता है कि क्या होना था क्या नहीं होना था. बट देर इज़ अ बिगर क्वेश्चन कि कुड दिस हैव बीन प्रिवेंटेड, बिकॉज कोर्ट सिस्टम ने अगर आइडेंटिफाई किया है पर्सन को एज अ हाई रिस्क ऑफेंडर, जिसकी सीरियस ड्रग एडिक्शन है और हिस्ट्री है इन्वॉल्विंग द फायर आर्म्स, तो क्या वो पर्सन बाहर होना चाहिए? वो क्या कम्युनिटी डिटेंशन में होना चाहिए? ही वॉज इवेंचुअली बैक इन द कम्युनिटी. सो उसके बाद जो कर्फ्यू था वो 7 PM ऑनवर्ड्स था, लेकिन डे टाइम ये सब कुछ हुआ है. इन डे टाइम तो वो खैर बाहर होता था. सो ऑल्सो इसके ऊपर बहुत और डिबेट्स भी होती है, बिगर डिबेट्स होनी चाहिए मेरे को लगता है, अबाउट एडिक्शन ट्रीटमेंट, बेल कम्युनिटी सेंटेंसेस के ऊपर, एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम रिपीट ऑफेंडर्स, रीएप्लिकेशन के बारे में भी एक्चुअली में डिबेट होनी चाहिए. सो दीज आर द टॉपिक्स जिसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है ये होनी चाहिए, बिकॉज जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं वो इवेंचुअली आगे जाके ऐसे स्टेप्स कर रहे हैं. सो एडिक्शन की ट्रीटमेंट कैसे हो रही है, बेल एंड कम्युनिटी सेंटेंसेस के बारे में थोड़ा रिव्यू होना चाहिए, एंड प्रोटेक्टिंग द पब्लिक फ्रॉम रिपीट ऑफेंडर्स शुड बी अ वेरी बिग डिबेट ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये इलेक्शन ईयर है और कुछ ही महीनों में यहाँ पे इलेक्शन होने वाली है. वेल, आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? डू यू थिंक कि जो कर सकते थे वो किया एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये इंसिडेंट हुआ, या फिर आपको लगता है कि ये प्रिवेंटेबल हो सकता था, मतलब उसको मतलब शूट करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उससे पहले के ही बहुत सारे मेजर्स ले लिए होते? आपका इसके ऊपर क्या टेक है? आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं. 5599 इज अ नंबर टू मैसेज.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स,
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: guarantees true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4NZPMI.
1: 20 मिनट बाकी है 4 बजने में, 4 बजे ड्राइव शो आपके लिए यहाँ पे शुरू हो जाएगा। एंड बच्चों के रिकॉर्ड्स में पढ़ रही थी यहाँ पे, एंड डायनासोर्स, अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो बच्चे हैं डायनासोर्स के बहुत सारे नाम्स जो है डिफरेंट स्पीसीज़ के बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और आपको लगता है कि यार यही सीखना था, इसमें क्या है, बट माइंड इट, ये एक्चुअली में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है अगर उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम पता है, बिकॉज इसके ऊपर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 5 साल का बच्चा जिसका नाम है अवयुक्त सिंह, अवयुक्त जो है 5 साल का है और ये डायनासोर एक्सपर्ट है। दिस 5 ईयर ओल्ड किड कैन आइडेंटिफाई 46 डिफरेंट डायनासोर्स इन 1 मिनट। वेल ही इज़ फ्रॉम इंडिया। प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा है डायनासोर्स को आइडेंटिफाई करने का, ये नंबर रहा है 41। नौ अवयुक्त सिंह जो है इसने आइडेंटिफाई किए हैं 46 डिफरेंट डायनासोर्स इन 1 मिनट। रिपोर्टेडली ही डिवेलप हिज नॉलेज थ्रू डायनासोर बुक्स एंड टॉयज। सो कुड योर चाइल्ड बी दिस? आपके बच्चों को क्या डायनासोर्स पसंद है? काफ़ी बच्चों को डायनासोर्स पसंद होते हैं। मेरा नेफ्यू को टीरेक्स बहुत ज़्यादा पसंद है, वो टीरेक्स लेके बहुत घूमता है। सो मेरे को लगता है वो काफ़ी बच्चों का वैसे भी फेवरेट है। सो या आप भी यहाँ पे ज़रूर इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। बट अगर उनको डायनासोर्स वगैरह पसंद है, दे आर फ्यू थिंग्स दे कैन डू। एक्चुअली मैं ऑकलैंड जू में अभी उन्होंने वो लॉन्च किया है, जून से ही एक्चुअली में उन्होंने एक डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक बना दिया है। एंड ये वहाँ पे 7 फेब तक रहने वाला है, उसके बाद नहीं रहेगा। डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक है जहाँ पे बच्चों के लिए, वहाँ पे जहाँ पे 20 लार्ज डायनासोर्स, मतलब ऑफकोर्स नॉट रियल वन, रियल कहाँ से आएगा, बट नकली डायनासोर्स वहाँ पे हैं। 15 डिफरेंट स्पीसीज भी है वहाँ पे। सो दे आर रोरिंग एंड मूविंग डायनासोर, जिसमें टी रैक्स भी है एंड बाकी ऐसे हैं जिनका नाम मैं तो नहीं ले सकती, कोई बच्चा ज़रूर ले सकता है। एंड वहाँ पे फॉसिल डिगिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही है, विच गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर योर किड। सो डायनासोर रेंजर टॉक्स भी है वहाँ पे। सो या वेस्टर्न स्प्रिंग में यह है ऑकलैंड जू। तो अगर अपने बच्चों को आप लेके जाना चाहते हैं, नॉर्मल ऑकलैंड जू की जो एडमिशन फीस है वो ऑफकोर्स इस पर अप्लाई होती है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, बट यू कैन गो टू द वेबसाइट एंड चेक मोर डिटेल्स।

यू बाय 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.8 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है, कल हल्की सी बारिश होने के चांसेस हैं। सनसेट आज का 5:52 पर।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. ड्राइव शो आपके लिए शुरू चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैनी राइट नाउ. रुजबे यहाँ पे नहीं है आज, वो कल यहाँ पे डेफिनेटली शामिल हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज़ 20th of August. अगर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ओ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपके एनिवर्सरी है तो अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. अगर किसी को शाउट आउट देना चाहते हैं बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए, तो मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे. 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे आप शाउट आउट्स के लिए एक्चुअली में मैसेजेस कर सकते हैं. एंड इस आवर में आपके लिए ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स भी रहने वाले हैं. ड्राइव शो में आपके लिए ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स रहने वाले हैं, जैसे कि हम बोर्डिंग कॉल. हम बोर्डिंग कॉल जो है ये आज भी आपके लिए 5 बजे के बाद प्ले होने वाला है. सो हम बोर्डिंग कॉल में होता क्या है, अगर इसके बारे में आप पहली बार सुन रहे हैं, सो आप जी सकते हैं 2 return air tickets to 102 विद सोलोमन एयरलाइंस प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी. तो करना क्या है आपको, सुनते रहना है हम FM को ध्यान से. स्पेशल बोर्डिंग कॉल जो है ये आपके लिए प्ले होता है बिटवीन 8 AM to 9 AM, देन बिटवीन 11 AM to 12 PM, देन 1 PM to 2 PM एंड 5 PM to 6 PM के बीच में. जैसे ही आप वो बोर्डिंग कॉल सुनेंगे उसके बाद आपके पास 60 मिनट्स होंगे एग्जैक्टली, यानी कि 1 आवर आपके पास होगा रोवा ऐप पे जाने के लिए. वैसे तो रोवा ऐप पे जाने के लिए आपको लेस देन 30 सेकेंड्स लगते हैं, बट स्टिल वी गिविंग यू लाइक 60 मिनट्स, इनफ टाइम. रोवा ऐप पे जाइएगा, वहाँ पे आपको हमारा कॉम्पिटिशन पेज दिखाई देगा हम बोर्डिंग कॉल का. वहाँ पे आपको 5 बजे के आगे लिखना है बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट. That's it. और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे रिटर्न एयर टिकट्स प्लस स्पेंडिंग मनी आपके नाम हो सकता है. लेकिन अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हमने आपके लिए एक और काम ईजी कर दिया है. अगर आप रोवा ऐप पे जाके आर्टिकल नहीं ढूंढना चाहते हैं, सिंपल BC लिख के भेजिए 5599 पर. BC एज इन बोर्डिंग कॉल लिख के भेजिए 5599 पर. एंड या ऑटो रिप्लाई में आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक मिल जाएगा. तो वट यू हैव टू डू इज़ 5 बजे के बाद जैसे भी होगा आपके पास लिंक ऑलरेडी है, वहाँ पे क्लिक करो एंड सबमिट करो बोर्ड नाउ लिख के. सो इट्स वेरी इजी. हम बोर्डिंग कॉल थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस विच फ्लाई 4 times each week नॉन स्टॉप फ्रॉम ऑकलैंड टू वनाटू. एंड यू कैन विजिट flysolomons.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. इस कॉम्पिटिशन की टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी वेबसाइट पे है, वो भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं. इन केस यू डोंट नो कि वो जो बोर्डिंग कॉल वाला क्यू है ये कैसे प्ले होता है, उसका साउंड कैसा है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बोर्डिंग कॉल फॉर सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 104.2 FM टू वनुआटू. बोर्डिंग इज नाउ इन प्रोग्रेस. प्लीज प्रोसीड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ
5: थैंक्स टू सोलोमन एयरलाइंस फ्लाइंग 4 times each.
3: तो ये आपके लिए प्ले होगा 5 बजे के बाद. सो रिमेम्बर, 5 बजे के बाद किसी भी टाइम पे ये प्ले हो सकता है, बिटवीन 5 to 6 ही प्ले होने वाला है. सो ये प्ले होगा उस समय आपको ये करना है. सो टू गेट द लिंक नाउ यू कैन जस्ट, अभी आप लिंक ले सकते हैं, BC लिख के भेजिए 5599 पर.

4:23 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. वैसे आर्टिकल आया है अबाउट ग्रीन पार्टी. वेल, ग्रीन पार्टी जो है ये इन्होंने प्रॉमिस किया है, इज प्रॉमिसिंग टू रीस्टोर द ओरिजिनल का ओरा का ओको स्कूल लंच मॉडल एंड एक्सपेंडेड. सो इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट गवर्नमेंट. तो प्रपोजल में इनके क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी अनाउंसमेंट ये रीस्टोर करेंगे प्रोग्राम विच इज़ क्लोजर टू इट्स ओरिजिनल मॉडल, जहाँ पे मोर लंचेस रहेंगे मेड एट स्कूल्स और बाय लोकल प्रोवाइडर्स. सो ये एक्सपेंड करेंगे प्रोग्राम टू अराउंड 400 एडिशनल स्कूल्स and provide lunches to estimated 150,000 more children. So increased funding hogi to around $6.80 per meal according to Green's budget material. And they're gonna bring back local jobs. The party says ki wo lost ho chuki hai when the delivery model is changed. So unka plan hai to make funding more permanent rather than leaving the program with uncertainty beyond the current funding period. So because elections aane wali hai, तो इस समय पर जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पीरियड लीडिंग टू इलेक्शन, दे रोल आउट अ इंडिविजुअल पॉलिसी अनाउंसमेंट्स एज वेल वन टॉपिक एट अ टाइम, सो दैट जो मोमेंटम है वो बना रहे, वो बिल्डअप हो, एंड दे कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व, दे कैन सेल देमसेल्व बेसिकली. सो या मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट्स जो है ये इस साल भी हो रही है. फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक लेबर जो है, इन्होंने रिसेंटली बोला है कि $20 वीकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेयर कैप करने वाले हैं वो मेजर सिटीज़ में, 3 free GP विजिट्स एनुअली करने वाले हैं, फ्री प्रिस्क्रिप्शंस करने वाले हैं, सपोर्ट फॉर द स्मॉल बिजनेसेस एंड मेनी अदर पॉलिसीज़ भी इन्होंने अनाउंस की है. ग्रीन्स की वेल्थ टैक्स प्रपोजल्स भी है, फ्री स्कूल लंचेस के बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट्स की है, देन कुछ कम्युनिटी पॉलिसीज़ के बारे में इन्होंने बोला है एंड क्लाइमेट फोकस्ड पॉलिसी वर्क भी इन्होंने बोला है. एनजेड फर्स्ट ने अनाउंस किया है पॉलिसी टारगेटिंग द सुपर मार्केट डुओपोली एंड फूड प्राइसेस एंड नेशनल एक्ट एंड न्यूजीलैंड फर्स्ट गवर्नमेंट. मीनवाइल दिस पार्टीज आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू अनाउंस एंड प्रमोट पॉलिसी एंड सम चेंजेस, जिसमें कि प्लानिंग सिस्टम है, ड्रोन रेगुलेशन रिफॉर्म्स भी आज वैसे अनाउंस हुए. तो ये सारी चीज़ें. सो अगर आपको जानना है, यू कैन एक्चुअली विजिट देयर

0: इफ यू क्लिक ऑन एनरोलिंग तो वहाँ पे है गेट रेडी टू एनरोल. आप ऑनलाइन ही अपने आप को एनरोल कर सकते हैं. वहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल टू एनरोल एंड वोट एज वेल. एंड आप अपना वहाँ पे मैप है जहाँ पे यू कैन फाइंड योर इलेक्टोरेट एज वेल. सो वो भी आप चेक कर सकते हैं. इफ़ समवन इज़ ओवरसीज दे कैन एनरोल फ्रॉम ओवरसीज एज वेल, बिकॉज राइट नाउ हमें ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी लिसनर्स सुन रहे हैं. अगर आप वहाँ से वोट करना चाहते हैं आप वहाँ से भी वोट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो. सो यू कैन अपडेट देयर एज वेल. तो बेसिकली ये जो इलेक्शन ईयर है इट विल बी ऑन 7th November, दिवाली से एक दिन पहले एक्चुअली में ये जो जनरल इलेक्शंस है यहाँ पे ये होने वाली है. सो उससे पहले पहले आपको एनरोल करना है. सो यू मस्ट बी एनरोल्ड बाय मिडनाइट 25th October अगर आप इस साल वोट करना चाहते हैं. ये मत सोचेगा कि अब ये अगस्त है यार, बहुत टाइम पड़ा है, यू नो अगला महीना भी है तो देखी जाएगी. अगला अगला करते ही जो टाइम मेरा निकल जाता है. सो अगर आज ही आपके पास टाइम है जस्ट गो ऑन द वेबसाइट एंड एनरोल योरसेल्फ या फिर अपडेट योरसेल्फ.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हाँ.

432 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे कुछ इवेंट्स भी आपकी सुपर सिटी में होने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी भी आपको प्रोवाइड करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है आपके लिए। यू नो, कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी जो मुश्किलें हैं ये बढ़ रही हैं, तो आपको ऐसे में जो सामना अकेले सामने करने की ज़रूरत नहीं है मुश्किलों का। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज़ को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सपोर्ट मिल सके। इन्होंने शुरू किया है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुल के बात करने को बढ़ावा देना। अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर आप बात कर सकते हैं। नंबर टू कॉल इज 0800-862-342, इट्स 0800-862-342। फ्री है ये सर्विस और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट भी है। अक्सर होता है ना मन में कि हमने अगर हेल्पलाइन पे कॉल किया तो यार हमारी रेपो का क्या होगा, किसी को पता चल जाएगा, बट काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि ये कॉन्फिडेंशियल सर्विसेज होती है। सो यू कैन कॉल ऑन दिस सर्विस। आप खुद डिटेल्स पहले चाहिए, अगर आप थोड़ा ब्राउज करना चाहते हैं, यू कैन गो टू द वेबसाइट asianfamilieservices.nz। गो टू द वेबसाइट, चेक एवरीथिंग, वहाँ पर भी फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड है, देन यू कैन कॉल। जब आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा मिले देन यू कैन एक्चुअली कॉल ऑन दिस नंबर। So the number is 0800-862-342 and the website is asianfamilieservices.nz. Now events ke baare mein baatein karte hain, to वैसे इसी weekend पे होने वाला है भजन जैम्स। रवितेश त्यो अपने लाइव बैंड के साथ परफॉर्म करने वाले हैं इस इवेंट में, जहाँ पे फ्यूजन होगा भजन्स का एंड कीर्तन्स का। सो एक ट्रेडिशनल डिवोशन इवनिंग रहने वाली है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडर्न अरेंजमेंट्स के साथ। And this is presented by South Auckland Driving Limited and curated by New Zealand Culture Trust. और ये जो special event है is being held in the aid of Gift of Life Fiji. So Saturday 22nd August को 7 PM onwards event होगा Vedic Center में। टिकट सिर्फ $30 की है। Children under the age of 5, इनकी entry एकदम free है। Snacks and kawa will be sold over there. Tickets online भी आप ले सकते हैं Eventbrite website पर जाके, eventbrite.co.nz। और यू कैन गो टू जेस फ्रेश पापटोए, वेलीज फ्रेश पापटोए या फिर शिव प्रसाद कैल्स्टन, वहाँ पे भी ये टिकट्स आप चेक कर सकते हैं।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
3: कौन है?
4: हुनुआ और वेटाकरे।
3: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
4: किधर है हुनुआ?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: 447 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं और बताते हैं कि टिंसल टाउन में क्या क्या हो रहा है. रिसेंटली मैंने वीडियो देखी थी सुनीता आहूजा जो कि पहले लॉकडाउन में थी एंड लॉकडाउन में हमने एक डिफरेंट फेस देखा सुनीता आहूजा का. देन शी केम आउट कि वो लॉकडाउन में नहीं रहना चाहती है एंड देन उनको लेने के लिए गोविंदा वहाँ पे पहुँचे थे एंड थिंग्स सीम्ड लाइक ओके बिटवीन देम. अभी रिसेंटली एक और वीडियो आई थी जहाँ पे वो अब्यूज़ कर रही है गोविंदा को एंड देन गोविंदा की एक और वीडियो आई. अभी ये रिसेंट की बात है, लाइक वीक हुआ है इसको. देन गोविंदा की एक और वीडियो आती है, सुनीता आहूजा को मैसेज दे रही है मीडिया के सामने कि उन्हें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए. मतलब आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दोनों मीडिया के सामने ही सारी की सारी बातें कर रहे हैं. बट नाउ अनदर न्यूज़ इज़ कि सुनीता आहूजा विदड्रॉ द डिवोर्स केस अगेंस्ट गोविंदा. कल की आई थिंक वीडियो थी, शी वॉज आउटसाइड द फैमिली कोर्ट अपने बेटे के साथ, जहाँ पे मीडिया अगेन सुनीता के पीछे थी बिकॉज उनको पता है कि यहाँ से कुछ तो मिलेगा, कुछ इंटरेस्टिंग डायलॉग मिलेगा. सब पीछे पड़े हुए कि सुनीता जी क्या कहना चाहेंगे एंड शी सेड क्यों आए थे यहाँ पे फैमिली कोर्ट में. शी सेड हैप्पी बर्थडे मनाने आई थी. क्लासिक है वो बंदी यार, वो गोविंदा के साथ रह के वो एक कॉमेडी सीख गई है. बट या फिलहाल न्यूज़ ये है कि शी विजिटेड फैमिली कोर्ट बिकॉज उन्होंने डिवोर्स केस विदड्रॉ किया है. बहुत कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है इनका. मतलब पब्लिकली मीडिया के सामने एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे हैं, डिवोर्स केस भी विदड्रॉ किया है. सो इट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग कि चल क्या रहा है. एनीवे उदय कियारा एडवानी ने टीम अप किया है सैफ अली खान के साथ. कनिका ढिल्लो की नेक्स्ट मूवी है जो कि सुपर नेचुरल थ्रिलर बनने वाली है, तो इसी मूवी में कियारा एडवानी एंड सैफ अली खान को हम देखेंगे. कनिका ढिल्लो इज़ द सेम मेकर जो कि जैसे कहानी लिखी है मन मर्जियाँ की एंड और भी ढेर सारी मूवीज़ वैसे इन्होंने लिखी है. तो कियारा एडवानी इनके प्रोजेक्ट में काम करने वाली है अलॉन्ग विद सैफ अली खान. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: first. Credit criteria, fees, T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe basin mixers, $149. American standard toilet suite, $349. Luxury Clashish wall vanities, $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
2: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
4: It's McHappy season. Get your McHappy cookies from Macca's. Just $3.50. All proceeds go towards keeping families together at Ronald McDonald House Charities. T's and C's apply.
1: Time check. You by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The local government minister wants to meet in person with Tauranga's mayor in the wake of the Mount landslide review. The report found the council had failed to act on decades of warnings about risks. Simon Watts says it's damning.
6: I want an explanation in regards to report findings and in particular when and timeline around when the council will implement those recommendations.
5: After 40 years, the Marlborough Wine and Food Festival is being put on ice. Organiser Wine Marlborough says the investment needed to deliver the event is no longer the best fit for the organisation. General Manager Marcus Pickens is stressing that the festival is merely on hold.
7: Giving us time to reevaluate it, what it means to the community, what it means to us, and also what else could we be doing to make sure we're doing the right thing for our members.
5: The New South Wales Premier has apologised after wrongly saying missing teenage hiker Lily Hooper had been found alive. Shortly after announcing the news to a parliamentary hearing, Chris Minns clarified that her body had been found, saying earlier advice was incorrect. Police confirmed the grim outcome. A man has been arrested at Tokyo Airport after about 200 lizards were found stuffed in socks in his suitcase. Some of the species can sell for hundreds in Japan. To sport, Jeff Allett has been the CEO of New Zealand Cricket for just over a month and a half. Today he's been trying to put a brave face on a $7.3 million loss, a loss far greater than NZC's own forecast. Silver Fern Georgia Heffernan has signed a two-year deal with the Sunshine Coast Lightning. And to rugby with Shift 4, a second Ranfurly Shield defence for Canterbury this evening. The clash with Northland kicks off at 10 past 7.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
8: World's best, hamari koi branch nahi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.8 डिग्रीज और आज ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है वैसे मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन था लेकिन कल हल्की सी बारिश होने के चांसेस है नॉट मच सनसेट आज का होगा 5:52 पर
10: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
11: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. The Drive Show with Sandy and Rusby.
12: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
9: पांच बज के तीन मिनट हो चुके हैं अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए शुरू हो चुका है यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी राइट नाउ रुजवे आज यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं आपका साथ दे रही हूँ यहाँ पे 7 बजे तक सो कैसे हैं आप और इस आवर में आपको बताऊं कि हम बोर्डिंग कॉल डेफिनेटली प्ले होने वाला है मैंने पिछले आवर में आपको सुना भी दिया है कि ये कैसा साउंड होता है सो मेक श्योर कि आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं जैसे ही हम बोर्डिंग कॉल आपके लिए प्ले होगा आपको जाना है हमारे रोवा ऐप पे वहाँ पे हम बोर्डिंग कॉल के कंपटीशन पेज पे जाके 5 बजे के आगे बोर्ड नाउ लिखना है टाइप क्लिक करना है बोर्ड नाउ एंड क्लिक सबमिट सो दैट आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो, जहाँ पे रिटर्न एयर टिकट्स, टू रिटर्न एयर टिकट्स टू वन आर टू विद सोलोमन एयरलाइंस आपके नाम हो सकती है, प्लस $1,000 स्पेंडिंग मनी एज वेल। अगर आपको कॉम्पिटिशन पेज का लिंक अभी चाहिए, रिमेंबर यू कैन जस्ट टेक्स्ट नाउ ऑन 5599 PC लिख के भेजिए, आपको लिंक अभी के अभी मिल जाएगा। आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में ना एक एक्टर का बर्थडे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। इस एक्टर के बारे में मैं आपको हिंट देती हूँ, लेट्स सी अगर आप इसके बारे में गेस कर पाते हैं। ये जो एक्टर है, इन्होंने हमें सिखाया अपने डायलॉग के जरिए, इस एक्टर ने हमें सिखाया कि हीरो वो होता है, हीरो वो नहीं होता है जो जीत जाता है, हीरो वो होता है जो हार जाता है, एक लॉजिक के साथ। सो 5599 पर लिख के भेजिए किसका बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है, या कॉल करके बताइए 6 बजे के बाद। मतलब मेरे को ये एक्टर बहुत ही सही लगता है यार। अनफॉर्चुनेटली इसकी ज़्यादा कमर्शियल बिग मूवीज़ नहीं आती है। आई थिंक दिस एक्टर इज़ वेरी अंडररेटेड। कुछ कुछ इस एक्टर की ऐसी मूवीज़ आई है जो कि कमाल की मूवीज़ है, एंड वो बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज़ नहीं थी। सो कौन सा एक्टर है ये, लिख के भेजिए या कॉल करके भेजिए कि इस एक्टर का ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब उस पूरी मूवी में, दिस पूरी मूवी में और भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो फेमस है, बट दिस इज़ वन डायलॉग जो बहुत हाईलाइटेड हुआ था कि हीरो वो नहीं होता जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। 5599 पर लिख के भेजिए, लेट्स सी कितने लोग गेस कर पाते हैं कि आज हम 6 बजे के बाद जिन्होंने ये डायलॉग बोला है किस एक्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं।

इस्माइल लांगा ग्रुप एक्चुअली में ये एक फोक असेंबल ग्रुप है फ्रॉम राजस्थान इंडिया जो कि डेडिकेटेड है टू प्रिजर्विंग सेंचुरीज ओल्ड म्यूजिकल ट्रेडिशंस ऑफ द लांगा कम्युनिटी. तो उन्हीं का ये गाना एक्चुअली में आप यहाँ पे सुन रहे थे, थोड़े कोलेबोरेशन में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे. होपफुली आपने इंजॉय किया. ज़रूर यहाँ पे लिख के भेजिए ये गाना आपको यहाँ पे कैसा लगा. थोड़ी देर में आपके लिए यहाँ पे रक्षाबंधन का कॉम्पिटिशन भी होगा एंड कन्फेशंस भी होंगे. कन्फेशंस में आपको मैं टॉपिक देती हूँ एंड बताना कि इसके बारे में अगर आप कन्फेस करना चाहते हैं थोड़ी देर में आप यहाँ पे कॉल कर पाएंगे. एंड द टॉपिक फॉर द डे इज़ क्या आपने कभी प्रिटेंड किया है कि आप बिज़ी हैं व्हेन समवन कॉल्स यू जस्ट बिकॉज वो कॉल आप बहुत ही जल्दी ना रैप अप करना चाहते हैं, फिनिश करना चाहते हैं. यू लाइक कि अरे बहुत ज़रूरी काम में हूँ मैं, मतलब बहुत बिज़ी हूँ मैं, जल्दी बोलो क्या हुआ या समथिंग लाइक दिस. हैव यू एवर डन दिस? सो आज आप कन्फेस कर सकते हैं इसके बारे में एंड विदाउट टेकिंग योर नेम एक्चुअली में आप कन्फेस कर सकते हैं. थोड़ी देर में यहाँ पे कॉल कीजिए, नॉट राइट नाउ बट थोड़ी देर में 0800 00 हम पर. हैव यू एवर प्रिटेंडेड दैट यू आर बिजी व्हेन समवन कॉल्स यू जस्ट बिकॉज आपको उस पर्सन के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी है या फिर आपका ऐसे ही बात करने का मन नहीं है. यू नो कभी कभी होता है कि यार यू डोंट वॉन्ट टू टॉक मच. तो बताइए यहाँ पे थोड़ी देर में कॉल करके 0800 00 हम पर. एंड अगर मैसेज करना चाहते हैं देन द नंबर टू मैसेज इज 5599.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए?

0: सिबलिंग को ले आइए हम बोट रूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजंस। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Malabar Golden Diamonds, Botany Town Center. Accurate traffic.
3: Got an unreliable outboard.
4: Cloudy overnight for Auckland. A low of 9 on the northern. It's heavy northbound around Oniwa Road. The northwestern slow from St Luke's to Rosebank. On the southern, it's heavy southbound Newmarket to East Tamaki Road. And heading north from Mount Wellington to just north of Green Lane. Southwestern looking a bit slow. Northbound from Puhinui Road to Mangere Bridge. And from there through to the southern.
5: Upgrade now with 0% finance on selected Yamaha outboards. TC's fees and credit criteria apply.
6: We've all been there. 6 p.m. traffic sucks and that chicken for dinner still frozen.
7: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef and local produce ready in the fridge when you are.
6: Take back dinner time with HelloFresh.
8: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
9: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
11: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the winter sparkle celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus have old gold of 18 carat or more to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
12: डिब्बा खुल गया
13: भरत भाई, टिफिन खुल गए छे। संजना का डिब्बा खुल गया।
14: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
13: डिब्बा खुल गया।
14: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 5:20 हो चुके हैं. पावर ड्राइव 5 फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. एंड कॉल कीजिए, शेयर कीजिए या फिर मैसेज कीजिए. क्या आपने कभी प्रिटेंड किया है कि आप बहुत बिजी हैं जब आपको कोई कॉल आया है? एंड यू आर नॉट बिजी, यू आर प्रिटेंडिंग. एक्चुअली में इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है. यू वॉन्ट टू अवॉइड द पर्सन, आपका मन नहीं है बात करने का. और लास्ट आपने ये कब किया था? वेल, आई विल कन्फेस, मैं ये करती हूँ. मैं ये बहुत बार करती हूँ, टू बी ऑनेस्ट. एंड मेरे केस में इट्स नॉट अबाउट द पर्सन. मेरे केस में ये होता है कि मुझे बस बात नहीं करनी होती है ज़्यादा उन पे, तो इसके कारण मैं ये कई बार करती हूँ. इट हैपन्स विद मी. तो डिपेंड करता है, अगर मैं किसी को कॉल कर रही हूँ तो मैं तो स्ट्रेच पे बहुत लंबी बात कर सकती हूँ. लेकिन जब कोई कॉल आ रहा है तो मैं बहुत बार, एंड आई विल से 60% ऑफ टाइम मैं ये करती हूँ. 60% इज स्टिल बेटर. सो कोई है और जो इसके बारे में कन्फेस करना चाहता है, 0800 00 हम. और मुझे लगता है ना कि ये बहुत ही नॉर्मल है. ऐसा हम में से बहुत लोग करते हैं कि जब हम कॉल करते हैं तब हमें लंबी बात करनी होती है, लेकिन जब हमें कॉल आती है तो हमें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बात करनी होती है कि भाई हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, चाहे आप बिज़ी भी नहीं हो. इट्स कई बार तो होता है कि बिज़ी होते हैं ना, कि वो एक केस होता है. बट प्रिटेंडिंग दैट यू आर बिज़ी व्हेन यू आर नॉट बिज़ी. सो कॉल करके या मैसेज करके बताइए. यहाँ पे 5599 एज अ नंबर. रक्षाबंधन के लिए कॉल्स भी थोड़ी देर में यहाँ पे ओपन अप होने वाली है. फिलहाल आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस इन्वेस्टिगेशन, दिस आर्टिकल जो कि हेल्थ न्यूजीलैंड के ऊपर है. एक रिव्यू हुआ है एक इवेंट का. सो हुआ क्या था कि इट इन्वॉल्व अ 55-year-old मैन जो कि न्यूजीलैंड में एमरजेंसी डिपार्टमेंट में गए थे. ही हैड अ बर्निंग पेन इन द सेंटर ऑफ हिज चेस्ट. एंड उस समय पर जो ईडी था वॉज अंडर एक्सट्रीम प्रेशर. एमरजेंसी डिपार्टमेंट, इट वॉज ऑपरेटिंग एट 200% ऑक्यूपेंसी. 10 नर्सेज शॉर्ट थे. सो स्टाफ जो था वॉज डीलिंग विद ओवरलोडेड डिपार्टमेंट एंड हाई पेशेंट डिमांड. सो उसके बाद जो नर्स है उन्होंने असेस किया मैन की चेस्ट पेन को एज अ नॉन कार्डियक एंड गेव हिम अ कैटेगरी. दैट मीन्स कि ही शुड हैव बीन असेस्ड विद इन 30 मिनट्स. हाउएवर थिंग्स डिड नॉट हैपन एज दे शुड हैव. ECG नहीं हुआ. बिकॉज कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन हो तो ECG कैरी किया जाता है, बट ECG वॉज नॉट कैरीड आउट अंटिल 4.5 hours लेटर. सो वेन इट वॉज फाइनली डन, इट शोड कि जो मैन है वॉज एक्चुअली हैविंग अ हार्ट अटैक. उसके बाद उसे अर्जेंटली रेफर किया गया टू हॉस्पिटल्स कार्डियक टीम, बिकॉज हार्ट अटैक कैन गो फॉर लाइक लॉन्ग टाइम. सो यू नो, पहले नॉन कार्डियक बोला 30 मिनट्स के अंदर असेस करना था, लेकिन 4.5 hours के बाद ECG होता है जब पता चलता है कि इज अंडर गोइंग अ हार्ट अटैक. सो हेल्थ न्यूजीलैंड कैरिड आउट एडवर्स इवेंट रिव्यू एंड कंक्लूडेड कि जो पेशेंट था शुड हैव बीन गिवन अ मोर अर्जेंट कैटेगरी. सो उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दी है हेल्थ न्यूजीलैंड ने कि मोर एजुकेशन फॉर द नर्सेज, ट्रायज नर्सेज स्पेसिफिकली, बेटर प्रोसीजर्स होने चाहिए ऐसी सिचुएशंस के लिए जहाँ पे ED रीचेस द क्रिटिकल कैपेसिटी जो कि इस सिचुएशन में थी. इंक्रीज्ड स्टाफिंग होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड हैविंग अ डेडिकेटेड नर्स इन द वेटिंग रूम एज वेल. सो हेल्थ एंड डिसेबिलिटी कमिश्नर जो है इन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है एंड दे फाउंड आउट कि हेल्थ न्यूजीलैंड जो है इन्होंने ब्रीच किया है द कोड ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज कंज्यूमर्स राइट. सो इवन द बिगर क्वेश्चन ओवर हेयर इज कि वॉज इट जस्ट अ नर्स फॉल्ट. कि यू नो, मेन आर्गूमेंट इसमें यह भी है कि येस, जो पेशेंट के सिम्टम्स है उसे करेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया एज अ पोटेंशियली कार्डियक एंड ही वेटेड फॉर टू लॉन्ग. बट वेदर इट इज़ फेयर टू लुक ओनली एट इंडिविजुअल क्लिनिकली अगर देखा जाए कि जो इंटायर वर्किंग एनवायरनमेंट है वॉज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर. सो रैपिड डिसीशंस लेना कई बार होता है लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी. यू नो चेस्ट पेन बहुत ट्रिकी है. इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम लेस सीरियस इश्यूज लाइक इनडाइजेशन का कई बार पंगा होता है. सो वहाँ से एक कार्डियक अरेस्ट इज अ लाइक क्वाइट अ डिफरेंस. सो पेशेंट्स में ऑल्सो डिस्क्राइब सिम्टम्स डिफरेंटली एट टाइम्स बिकॉज कई बार होता है ना यहाँ पे भी. और आपने ये कितनी बार सुना होगा कि अगर आपको आउट ऑफ 10 4 की पेन हो रही है तो आपको डॉक्टर्स को 8 बताना चाहिए 9 बताना चाहिए सो दैट यू नो योर केस इज़ हैंडल्ड इन अ बेटर वे. तो कई बार बैक ऑफ द माइंड काफ़ी लोगों का ये भी होता है कि कुछ लोग जो है ये एग्जैगरेट करके तो नहीं बता रहे हैं अपने सिम्टम्स को. So the problem becomes even more serious in overcrowded ED as well. So agar us 30 minute ke target mein khair baad mein kuch hua nahi lekin agar kuch ho jata to ek life ka bhi sawal hai wahan pe. Well aapke sath koi aisa experience hua ho, ED ka experience hai, emergency department ka, how much time aapko wahan pe laga hai wo bhi aap yahan pe share kar sakte hain. 0800 00 hum is a number. Apni story koi aap share karna chahte hain, कोई व्यू है आपका इसके बारे में वो भी शेयर कर सकते हैं, या फिर यू कैन मैसेज ऑन 5599 एज वेल. एंड थोड़ी देर में यहाँ पे रक्षाबंधन के लिए फोन लाइंस भी ओपन अप होने वाली है. स्टे ट्यून्ड.
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: 34 एट द मोमेंट हो चुके हैं। नवरात्रि सीजन भी आने वाला है, दिवाली आने वाली है, क्रिसमस आने वाली है। सो कितनी जल्दी ये साल जा रहा है, कैन यू इमेजिन दिस? दिस इज़ लाइक 20th of August। सो बहुत ही जल्दी नवरात्रि, गरबा, दिवाली की सेलिब्रेशन हमारे रेडियो पे शुरू हो जाएंगी। उससे पहले वैसे फादर्स डे, इसकी सेलिब्रेशन भी शुरू होने वाली है। फादर्स डे भी आने वाला है, रिमेंबर दिस एज वेल। एंड या फिर दिवाली की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी एंड देन रेडियोथॉन भी आने वाला है। टाइम फ्लाइज एक्चुअली में। रेडियोथॉन भी इस बार थोड़े डिफरेंट डेट्स में हम लेके आने वाले हैं आपके लिए। 48 hours रेडियोथॉन चले के आते हैं जहाँ पे वी गिव बैक टू कम्युनिटी, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप कहीं पे रहते हैं टू गिव बैक एंड टू थिंक अबाउट एवरीवन एल्स एज वेल। एंड उस समय पर ये नोटिस किया है कि हम सब एक्चुअली में एक फैमिली बन जाते हैं। यू नो, यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन्स में, कॉल्स में पार्टिसिपेट करो ना करो, लेकिन रेडियोथॉन में ऐसे चेहरे भी उस समय पर आते हैं जो कभी रेडियो पर कॉल ही नहीं करते हैं। एंड दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट वंडरफुल पार्ट ऑफ दैट कैंपेन, बिकॉज वी ऑल कम टूगेदर फॉर अ कॉज। बच्चों के लिए एक्चुअली हम यहाँ पे साथ में इकट्ठे होते हैं। बस बच्चों से याद आया, रक्षाबंधन। बचपन में आपने भी अपने सिबलिंग्स का बहुत परफॉर्मेंस रिव्यू दिया होगा एंड अभी भी दे रहे होंगे। एंड यू कैन इनकरेज योर किड्स ऑल्सो टू कॉल ओवर हेयर एंड पार्टिसिपेट। अपने सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू वो भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन कॉल ऑन 0800 हम राइट नाउ। आपको सिर्फ, आपके पास सिर्फ एक मिनट का टाइम है यहाँ पे कॉल करने के लिए। एंड परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या है कि आपको बस अपने सिबलिंग के बारे में कुछ शेयर करना है, कुछ आपको बस फीडबैक उनके बारे में यहाँ पे देनी है कि वो कैसे हैं एंड आप जो भी उनके बारे में कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे फोन लाइन पे, हाय।
1: हाय, हेलो, इट्स शेरल,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम गुड, थैंक यू। मैंने सिर्फ थोड़ा एयर सुना, आपने बोला कॉल करना, एक मिनट में मैंने कॉल कर दिया। तो मुझे प्लीज सिर्फ बताना है अपने सिबलिंग्स के बारे में।
0: सिबलिंग का, या सो सिबलिंग का परफॉर्मेंस रिव्यू देना है, दिस इज रक्षाबंधन कॉम्पिटिशन। तो बताइए अपने भाई या बहन के बारे में, किसके बारे में बोलना चाहेंगी?
1: सो आई हैव गॉट टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। तो मैं सबसे बड़ी हूँ, तो आई लाइक द थिंग इज आई बुली देम। मैं उनको, मैं बड़ी हूँ ना, मेरी छोटी बहन मुझसे 8 साल छोटी है। तो आई मीन द थिंग इज, अभी रिसेंट की बात बताती हूँ, वी लॉस्ट आवर मॉम लाइक 2 years ago।
0: ओके,
1: तो अभी ऐसा लग रहा है कि आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वॉन्ट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू बी टूगेदर। जैसे कि नहीं कोई मन मुटाव ना हो, कभी किसी ने ये सुना तो ये वो ना करे। तो आई एम जस्ट उस तरह से आई एम टेकिंग लाइक द बिग स्टिक लेके कि बहन खड़ी है यहाँ पे, कुछ भी हो मेरे भाई बहन में दे कैन डिपेंड ऑन मी।
0: यू आर दैट बाइंडिंग फैक्टर अभी राइट नाउ कि जुड़े रहे सारे एक साथ।
1: हाँ जी, माय मम यूज्ड टू होल्ड अस टुगेदर, शी वुड हमको सबको बटोर के रखा हुआ था। तो मुझे वो खोना नहीं है। आई मीन आई माय मम सिबलिंग्स आर ऑल ओवरसीज एंड मैंने बहुत जगह देखा है ना कि जैसे तक वो मन मुटाव होता है या किसी ने कुछ बोल दिया, तो मैंने तो इतना भी बोला है ना, आई ओपन अ सिबलिंग्स ग्रुप, उसका नाम भी है सिबलिंग्स, उसमें डेड भी है। तो कुछ होता है तो मैं उसमें डिस्कस करती हूँ, या कुछ किसी के पास भी हो तो आई टॉक टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई टॉक टू ऑल ऑफ देयर किड्स। आई वॉन्ट वो ना हम साथ साथ वाला कि हम हमेशा, आई मीन एक माँ बाप होते ना। आई एम रियली क्लोज टू माई ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माई यंगर, आई मीन, and then they can come and talk to me about anything as well. Like the sharing and the love, the questions. I mean, it's not that, I mean, there are days that someone would, my mom was a little dark, my dad was fair, to abhi kisi ne weight put on kiya hai, koi thoda dark hai to bolenge mota kala, wo apna chalta hai na,
0: wo beech mein bhai bhai ke beech mein sab chalta hai, yeah,
1: chalta hai. And also, like, you know, yeah, I'm close to my brothers and sisters. I want to keep them binded together. I want to be there for them whenever they need me. It's not about the money. It's about the love,
0: 100%.
1: The culture, everything.
0: Wow, that's such a wonderful thought. Or, but Cheryl, I think this is very, very important. जो ज़्यादा आजकल नहीं सोचते हैं, even इस competition में भी ना, हमने क्या notice किया है? जब फादर्स डे, मदर्स डे होता है तो हम फादर के बारे में, मदर के बारे में खुल के अपने इमोशंस जाहिर करते हैं। बट फॉर सम रीजन हम सिबलिंग्स के बारे में अपने इमोशन जाहिर नहीं करते हैं, बिकॉज थ्रू थिक एंड थिन वो आपके साथ हमेशा होते हैं. बीच में कुछ मन मुटाव कभी कभी हो सकता है, आ जाए,
1: हो जाता है
0: वाइल ग्रोइंग अप, वो होती है चीज़ें. बट मुझे लगता है कि उनको ऐसा अप्रिशिएट करना, उनको बोलना बहुत अंडररेटेड है. सो इट्स अ हाई टाइम, मतलब हमें बोलना चाहिए, मतलब वी नीड टू बी वोकल टू आवर सिबलिंग्स व्हाट दे मीन टू अस.
1: एग्जैक्टली. एंड सैंडी मैं एक और बात बताऊँ ना, मेरी दो भाभियां भी हैं. आई गेट अलोंग विद देम. मैं अपनी भाभियों से एवरी छोटी भाभी से तो एवरी डे बात करती हूँ. उसकी बेटी छोटी है, ही वॉज गोइंग थ्रू प्रेगनेंसी, मम्मी इज नॉट हियर, तो आई वॉज मेकिंग एन एफर्ट टू कॉल हर एवरी सेकंड डे जस्ट टू एंश्योर कि हम हैं यहाँ पे उसके लिए. क्योंकि मैंने ये भी देखा है ना, व्हेन माय मॉम सिबलिंग्स आर हियर, माय मॉम वाज द ओनली वन हु वाज ओवरसीज, बट वो क्या था ना, माय मॉम वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर देम टू कॉल हर, ऑलवेज वेटिंग कि वो कॉल करे या ये सब. मुझे वो नहीं चाहिए. वो जो देखा है उससे मुझे और ज्यादा, आई पुट माई माइंड टू इट, आई वॉन्ट द टूगेदरनेस टू बी देयर इवन विद भाभीज. एंड वी आई ऑल्सो हैव अनदर ग्रुप दैट्स कॉल्ड एंटरटेनमेंट, जिसमें सभी के हस्बैंड एंड वाइफ भी है.
0: Okay.
1: तो हम 10 उसमें भी है. तो या
0: नाइस,
1: जस्ट अ गुड वाइब.
0: या या या, दैट्स गुड ऑन यू शेल, सो प्राउड ऑफ यू.
1: थैंक यू.
0: या थैंक्स थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट टू यू.
1: अब मेरा नाम डाल दिया आपने?
0: हाँ जी डाल दिया जी.
1: थैंक यू सैंडी, होपफुली मैं जीत जाऊँ.
0: या ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू,
0: बाय बाय बाय. सो यस, यहाँ पे आपको मौका मिलता है परफॉर्मेंस रिव्यू देने का, और ये परफॉर्मेंस रिव्यू तो खैर आपने सुन ही लिया. उन्होंने अपने सारे भाई बहन के बारे में, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, अगर कोई वन ऑफ द सिबलिंग जो है ये ऐसा एफर्ट लेते हैं. एंड मेरे को लगता है घर का जो बड़ा सिबलिंग में जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा एफर्ट वो ही ले रहा होता है कई बार सबको एक साथ रखने के लिए. इफ़ यू आर द वन टेकिंग दैट एफर्ट, आप भी उसके बारे में ज़रूर यहाँ पर शेयर कर सकते हैं. एक और कॉलर को मौका देते हैं यहाँ पे. हाय
2: हाय आंटी, कैसे हो?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू?
2: मैं भी अच्छी
0: हूँ. तो किसका सिबलिंग किसका परफॉर्मेंस रिव्यू देना है?
2: मैं मिडिल चाइल्ड भी हूँ और ओल्डेस्ट चाइल्ड भी हूँ, तो मुझे दोनों साइड्स की आर्गुमेंट्स देनी है.
0: गो फॉर इट. अच्छा, हाउ कितने साल की हो आप?
2: मैं 15 की होने वाली हूँ नेक्स्ट मंथ.
0: अच्छा, रोशनी हो ना?
2: यस.
0: हाँ रोशनी, तो आप 15 साल की होने वाली हो. एंड आपके सिबलिंग्स कितने साल के हैं?
2: मेरी बड़ी बहन 26 की होगी ये और मेरी छोटी बहन 9 साल की है.
0: ओह वाओ, तो या हो जाओ शुरू रोशनी.
2: माय ओल्डर सिस्टर, मुझे उनके साथ, आई नो कि मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ. आई काइंड ऑफ लुक अप टू हर बिकॉज शी हैज सो मेनी अचीवमेंट्स एंड या आई लव हर वेरी मच. आई लव टॉकिंग टू हर और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में सुनकर मैं इंस्पायर होती हूँ. हाँ, और उनके साथ मुझे रील्स बनाने में भी बहुत मजा आता है.
0: ओके,
2: आल्सो अ सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट. और मेरी छोटी बहन के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ाई करना.
0: हाँ, वो छोटी है ना अभी.
2: उसकी मार खाना.
0: वही ना, अभी उससे पूछती हूँ मैं परफॉर्मेंस रिव्यू ना, फिर वो बताएगी. फिर वो अच्छे से बताएगी रोशनी.
2: उसकी मार खाने में और उसमें भी मुझे मजा आता है.
0: सी
2: ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, मुंह बना रही है.
0: या
2: खेलने में मजा आता है
0: ऑनेस्टली. या आई थिंक लेटर ऑन ना फॉर हर यू विल बी लाइक, जैसे अभी आपके लिए आपकी बड़ी बहन है, सो लेटर ऑन यू विल बी लाइक दैट बड़ी बहन टू हर.
2: या
0: शी इज ऑलरेडी ना.
2: शी इज ऑलरेडी.
0: या
2: शी लुक्स अप टू रोशनी.
0: या सी, तो या ये बॉन्ड होता है. या वेरी नाइस रोशनी, एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड शेयरिंग दिस.
2: थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी.
0: थैंक यू, ऑल गुड. थैंक यू सपना, बाय.
2: थैंक यू, बाय
0: बाय बाय बाय.
2: टेक केयर, बाय.
0: सो आपको भी मौका मिलता रहेगा यहाँ पे. सो मेक श्योर कि जब भी आपके लिए लाइन्स ओपन होती है उस समय पर आप कॉल करें. यू कैन विन $250 कैश. हमारे फेसबुक पेज पर जाके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वहाँ पे हमने एक फ़ोटो पोस्ट की है रक्षाबंधन की. उसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट अ फोटो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो आपको आपके सिबलिंग की याद दिलाती है, कनेक्ट करती है. उसके बारे में 2-3 सेंटेंसेस लिखेगा. टैग योर सिबलिंग एंड योर नेम विल बी इन द ड्रॉ टू विन $300 कैश.

0: Koke Koi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: Let's go.
2: Straight from the heart.
4: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
5: 548 एट द मोमेंट हो चुके हैं. 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं रणदीप हुड्डा को. रणदीप हुड्डा का आज बर्थडे है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर्स रणदीप हुड्डा रहे हैं. जिस भी मूवी में आते हैं फोकस उनके ऊपर तो डेफिनेटली जाता है कि यार इस मूवी में रणदीप हुड्डा भी है. बट कमाल की बात यह है कि बहुत ही कम मूवीज़ है रणदीप हुड्डा की जिसमें उन्होंने लीड रोल्स में काम किया है. है काफ़ी मूवी एंड इन मूवीज़ के बारे में एंड मोर अबाउट रणदीप हुड्डा आफ्टर 6 PM.

0: स्वाद है आपका, सिर्फ ले गए मुलाकात हो गई आपसे। हम थ्रोबैक
1: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers.
2: फ्रेंड्स एंड टॉप इट्स आपके लिए शुरू हो चुके हैं एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणदीप हुडा को बिकॉज आज रणदीप हुडा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। रणदीप हुडा मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, फेवरेट एज इन के एक ऐसे एक्टर जो कि लीड रोल्स में बहुत कम आए हैं लेकिन जितने भी रोल्स इन्होंने बॉलीवुड में किए हैं एज अ करेक्टर रोल्स या फिर जो भी मूवीज़ इन्होंने की है काफ़ी लोगों ने पसंद की है बिकॉज इनके वैसे भी इनके करैक्टर के भी फ़ैन है काफ़ी लोग, इन एज अ पर्सन वो कैसे है इस चीज़ के भी काफ़ी लोग वैसे इनके फ़ैन हैं। चैरिटीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ के सामने आते हैं, कहीं पे भी कुछ हो रहा होता है ही एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन आर द फर्स्ट वन जो वहाँ पे जाते हैं और हेल्प करते हैं लोगों की। इसके बारे में भी और बातें करेंगे और भी लेस नोन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगे अबाउट रणदीप हुडा एंड ट्राई करेंगे उनके मूवीज़ के कुछ गाने भी यहाँ पे आपके लिए प्ले करने के लिए। वेल, रणदीप हुडा के बारे में बात करते हैं। इनकी मूवीज़ की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी नहीं है लेकिन इनकी कहानियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। मॉनसून वेडिंग में इन्होंने काम किया है, साहेब बीवी गैंगस्टर में भी इन्होंने काम किया है। सो हिज करियर एक्चुअली स्टार्टेड अर्ली 2000s में एंड अभी तक वो कोई ना कोई किसी न किसी मूवी में काम कर ही रहे हैं। अभी जो आप गाना सुनने वाले हैं ये एक्चुअली में एक ऐसी मूवी का गाना है जो ज़्यादा पॉपुलर उस समय पर नहीं हुई, ज़्यादा हिट ये मूवी नहीं हुई बट मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। इस मूवी का नाम है दो लफ्ज़ों की कहानी, एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, मतलब जो रणदीप हुडा ने बाद में जाके नहीं की रोमांटिक ड्रामा, ये कैसी मूवी थी, अलॉन्ग विथ काजल अग्रवाल। It was directed by Deepak Tijori. So it is a official remake of South Korean movie जिसका नाम है Always. ये जो मूवी है इसमें कहानी है कि एक एक्स बॉक्सर है, उसका डार्क पास्ट है एंड उसको प्यार होता है एक ऐसी लड़की से जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है एंड देन कहानी बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आगे बढ़ती है। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी, इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल मूवी टू वॉच। दो लफ्सों की कहानी इस मूवी का नाम है लेकिन इस मूवी का ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, रणदीप हुडा मूवी, दो लफ्जों की कहानी।

रणदीप हुडा के ऊपर फीचर कुछ गाने आज इस आवर में आप यहाँ पे सुन रहे हैं। रणदीप हुडा कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया में, अगर आपको पता है तो लिख के भेजिए 5599 पर कि रणदीप हुडा ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं। 5599 का नंबर यहाँ पे आप लिख के भेज सकते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, बट लेट्स सी, इट कैन बी कन्फ्यूजिंग एट टाइम्स, सो 5599 पर लिख के भेजिए। एंड डू यू नो कि रणदीप हुडा हमारे नेबर्स थे पहले, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में थे, उनका एक ऑस्ट्रेलिया में अलग ही स्ट्रगल रहा था। सो बिफोर बॉलीवुड ही स्टडीड इन मेलबर्न, वहाँ पे उन्होंने यू नो एज अ स्टूडेंट वीज़ा वो वहाँ पे गए थे, एज अ टैक्सी ड्राइवर उन्होंने वहाँ पे काम भी किया, नाइट शिफ्ट वेटर भी काम किया, कार जो वॉश करते हैं वो भी की उन्होंने, बेसिकली जो और जॉब्स हम बाहर की कंट्री में आके करते हैं वो सब कुछ रणदीप हुडा कर चुके थे ऑलरेडी, बट ही न्यू कि ये उनकी लाइन नहीं है, दैट्स हाउ ही मूव्ड back to the country. He been a national sports champion as well. He just isn't an actor who like horses. Because agar aap unke insta pe jaoge ya bahut sari horses ki photo dekhoge jo unhone abhi paal ke rakhe hai, but he's a professional person jo ki jeet chuke hai. He won multiple gold and silver medals at national equestrian championship jahan pe show jumping hota hai. सो करंटली ही ओन्स 6 हॉर्सेज इन मुंबई, अपने हॉर्सेज का प्रॉपर इन्होंने तबेला बना के रखा हुआ है जहाँ की फोटोज़ वो बहुत बार पोस्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ के साथ देखा जाए तो रणदीप हुडा ऑलवेज कनेक्ट रहे हैं, उन्होंने पहले भी वाइल्ड लाइफ स्पेशली चीताज को लेके बहुत बार पोस्ट किया है। अपने स्कूल टाइम में ही बीन अ रिबेलियस किड एज वेल, सो ही वॉज नोटोरियस रिबेलियस, एंड इसीलिए जो उनके जो साथ के लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने निक नेम रखा था रणदीप, डॉन हुडा नाम रखा हुआ था। नाउ अभी भी आपके पास सवाल आपके लिए ये है कि रणदीप हुडा ओरिजिनली कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं इन इंडिया, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे लिख के आप भेज सकते हैं।

0: Trend Makers.
1: Ladies and gentlemen,
0: Unfiltered with Sandy and Rusby. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
2: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan the.
0: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699 and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: Make your space your own for lease at Mitre 10. Save $150 on a Robinhood 60cm dishwasher, now $449. And conquer the clutter with 30% off JobMate heavy-duty storage boxes. T's and C's apply. Shop these great deals and more at Mitre 10.
6: Mower, tools, bikes, ya fir sab kuch rakhne ke liye space chahiye? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden or lifestyle sheds ki great range ke saath, apna perfect storage solution sort kare. Aaj hi baat kijiye with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं रिश्तों को और करीब लाएं कशिश प्रीमियम बासमती राइस Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grohe Basin Mixers $149. American Standard Toilet Suite $349. Luxury Clashish Wall Vanities $399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
0: The beat of Bollywood.
9: World's best. Hamari good brands nahi hai.
10: Are you ready to go home?
11: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
12: ट्रेंड्स एंड टॉपिक्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं रणदीप हुडा इनका बर्थडे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणदीप हुडा के बारे में बात की जाए तो अनलाइक सेलिब्रिटीज जो कि सिर्फ सिंपथी ट्वीट्स करते हैं रणदीप हुडा ट्रैवल करते हैं डायरेक्टली टू डिजास्टर जोन्स विदाउट कैमराज और पीआरस बहुत सारे लोग इनको ज़रूर कैप्चर करते हैं जहाँ पे वो जाते हैं जैसे कि केरला फ्लड्स जब हुए थे 2018 में ही जॉइन द एनजीओ खालसा एड ऑन द ग्राउंड एंड वहाँ पे इन्होंने हेल्प किया था एक पिक्चर बहुत ही वायरल गई थी जहाँ पे ही वॉज इन द नी डीप इन वाटर एंड सिर्फ हेड स्कार्फ पहना था एंड पर्सनली वहाँ पे लोगों को वो लंगर सर्व कर रहे थे मील्स वहाँ पे वो शेयर कर रहे थे एट अ रिलीफ कैंप देन पंजाब में जो फ्लड्स आए थे वहाँ पर ही वॉज ऑन द ग्राउंड असम में जो अभी फ्लड्स आए थे सो ही एक्सटेंडेड हिज ग्राउंड लेवल सपोर्ट ड्यूरिंग द सवियर फ्लडिंग इन पंजाब एंड असम जहाँ पे इन्होंने कुछ वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ काम किया था जैसे कि ग्लोबल सिक्स एंड वहाँ पे ही वेंट उन विलेजेस में भी जो कि सबमर्ज्ड विलेजेस थे इन द डिस्ट्रिक्ट्स लाइक गुरदासपुर एंड वहाँ पे राशन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था क्लोथ्स एंड इमरजेंसी सप्लाइज डायरेक्टली टू द अफेक्टेड फैमिलीज यू नो कईयों को एक्टर्स को होता है कि अपने साथ सिक्योरिटी लेके चलो भाई पहचान लेंगे ये सब कुछ होगा बट दिस पर्सन वॉज जस्ट एवरीवेयर महाराष्ट्र में जो ड्रॉट रिलीफ थी वहाँ पे ही वेंट टू द सेवरल विलेजेस नासिक के पास रिलीफ टीम के साथ ये पहुँचे थे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर लेके वहाँ पे एंड कॉलिंग आउट द लोकल वाटर गवर्नेंस इश्यूज एज वेल इन्वायरमेंटल एंड एनिमल वेलफेयर कॉसेस में भी ये, जैसे कि पहले मैंने आपके साथ शेयर किया, आगे रहे हैं. ही वॉज अपॉइंटेड एज UN Environment's Ambassador for Aquatic Migratory Species. बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है. एंड हैविली इन्वॉल्व्ड इन वर्सोवा बीच क्लीन अप इन मुंबई. ये एक्चुअली मैं काफ़ियों को पता होगा बिकॉज इसकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई थी. लेकिन आज भी वो रेगुलरली पोस्ट करते हैं वीडियोज़ जहाँ पे जो बीच वगैरह है वहाँ पे जाके प्लास्टिक्स को डिस्कार्ड करते हैं, कवर करते हैं. एंड ही अडॉप्ट डोंट शॉप एडवोकेट फॉर एग्जाम्पल, एक आउटस्पोकन एडवोकेट फॉर स्ट्रे एनिमल्स है. सो ही रिफ्यूजेस टू बाय जो पी डिग्री डॉग्स, ओन्स अडॉप्टेड स्ट्रे डॉग्स एंड ही एक्टिवली प्रमोट्स अडॉप्टिंग अ लोकल ब्रीड एज वेल. तो इन चीज़ों में भी रणदीप हुडा एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं. हीरो जब भी हम उनके बॉलीवुड के बारे में बात करते हैं, सुल्तान मूवी में चाहे उनका फुल फ्लेज रोल नहीं था, लेकिन जितना रोल था ना सुल्तान मूवी में, मुझे लगता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रोल था. इनफैक्ट इस मूवी के जो डायलॉग्स थे रणदीप हुडा के, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जस्ट लाइक दिस वन.
13: सब ये सोचते हैं सुल्तान की हीरो वो होता है जो जीतता है. मेरा ये मानना है कि हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू.

मर्डर 3 का गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। रणदीप हुड्डा के मूवीज के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी मूवीज है उनकी जो अंडर रेटेड रही है। फॉर एग्जाम्पल लाल रंग बहुत ही अच्छी मूवी है, कल्ट क्लासिक इस मूवी को बोला जाता है, बट रणदीप हुड्डा की बहुत ही अंडर रेटेड परफॉर्मेंस है इस मूवी में। सो रणदीप हुड्डा की ये जो मूवी है इसमें ही प्लेड द रोल ऑफ शंकर मलिक, एक यू नो स्वैगरिंग हसलर है। एंड इस मूवी में ब्लड बैंक माफिया ऑपरेशन दिखाया गया था और इसे करनाल हरियाणा में दिखाया गया था। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि रणदीप हुड्डा कहाँ से है इंडिया में, हरियाणा से है। ये मूवी जो है ना ये ब्लेंड करती है डार्क क्राइम को अनएक्सपेक्टेड ह्यूमर के साथ। इट हैज़ हैवी डोज ऑफ हरियाणवी प्राइड, मतलब इट्स कम्प्लीट विद क्लासिक हरियाणवी डायलॉग्स है इसमें। यामा RX 100 बाइक है, सिग्नेचर स्वैगर्स भी है। सो रॉ हरियाणवी ऑथेंटिसिटी ही है एक्चुअली में इस मूवी में। ही लव द करेक्टर ऑफ शंकर सो मच कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया सीक्वल ऑफ दिस मूवी लाल रंग 2 खून चूसवा। एंड ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे वैसे फ्लॉप हुई थी लेकिन बाद में इस मूवी को कल्ट क्लासिक डिक्लेयर भी किया गया था। पर रणदीप हुड्डा के बारे में बातें करते हैं तो इनके बहुत ही नो फिल्टर ओपिनियंस रहे हैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंड फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ कमेंट्स भी किए थे जो अपने रिलेशनशिप में रहे थे उसके बारे में विद सुष्मिता सेन, उसके बारे में भी उन्होंने बाद में थोड़ा अजीब सा कमेंट किया था जिसके कारण वो कंट्रोवर्सी में आए थे, बट देन लेटर ही रियलाइज्ड कि ये सही नहीं था। अभी जो आप गाना सुनने वाले हैं इसमें तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था रणदीप हुड्डा का। दिस इज़ फ्रॉम सरबजीत विच वॉज बेस्ड ऑन द रियल पर्सन सरबजीत सिंह के ऊपर ये मूवी बेस्ड थी। एंड सरबजीत का रोल प्ले करने के लिए अपने आप को एक डार्क रूम में बंद कर लिया था रणदीप हुड्डा ने और अपने आप को चेन्स में बांध लिया था सो दैट वो एक करेक्टर को फील कर सके जो कि एक ऐसे जेल में बंद है जहाँ पे कोई रोशनी ही नहीं जाती है एंड वो चेन्स में है। तो वो फील करने के लिए उन्होंने अपने आप को वहाँ पे बहुत सारा टाइम जो है उन्होंने उस डार्क रूम में स्पेंड किया था। एंड आफ्टर दैट ही डिड दैट रोल एंड ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट रोल फॉर हिम। इस मूवी में ऐश्वर्या राय भी थी जिन्होंने उनकी बहन

का रोल प्ले किया था. बट इट वॉज अमेजिंग मूवी, जिस वजह से उन्होंने पूरी की पूरी एक्टिंग की थी इस मूवी में. 2016 के सरबजीत सिंह की बायोपिक है ये मूवी. इस मूवी के लिए ही लॉस्ट 18 केजीज इन जस्ट 28 डेज. नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा ये मूवी. और इसी मूवी का ये गाना अभी आप यहाँ पे सुनने वाले हैं.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Rusbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
1: Fatiha.
2: Bangkok mein hoga hamara asli tashan.
1: Tuk tuk street food aur raaton ki rangeen duniya bhi.
3: Ek baar to jaana hi chahiye Thailand.
4: Hello everybody.
0: Do shehar, ek safar aur yaadein jo rahengi hamesha.
5: Thoda ghume aao, acha lagega aapko, man behal jayega aapka bhi.
0: Text drive on 5599 for the all inclusive tour price. Kyunki ye kahani ab aapke saath likhi jayegi. Bali and Bangkok getaway with Sandy and Rusbe only on Hum. Hum, accurate traffic.
6: You made it with Caboodle.
7: A low of 9 overnight for Auckland and cloudy on the northern from town to Silverdale, 31 minutes. It's just a bit heavy southbound from Eastman Road to the Harbour Bridge to Massey, just 18 on the southern to Monaco, 30 minutes. And Drury, 40. Just heavy southbound from Green Lane to Ellerslie Panmure and heading north from Mount Wellington to Green Lane on the southwestern slow northbound Beta Drive to Mangere Bridge.
6: Tradies, get the job done with Caboodle's quality, affordable and easy to install kitchens.
8: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to donate today. Give blood, give plasma, save lives.
9: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
10: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लेने.
9: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
10: पर डेवलपमेंट के पैसे
9: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
11: You filled the pinata before I sealed it, right?
12: No, you did.
11: Oh, I thought you did.
13: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
14: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
15: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
14: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
15: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
16: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
17: मुझे भी
16: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
18: Don't miss the Volkswagen 5-day sale on now at your local dealership. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win one of 40 Samsung OLED TVs worth 7699. Offer ends August 22nd. T's and C's apply. Volkswagen.
19: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusbe. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
19: Let's go!
20: ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रणदीप हुड्डा को. एंड अगर आपको जानना है कि रणदीप हुड्डा सिनेमा में कितना फार जा सकते हैं, लुक एट स्वतंत्र वीर सावरकर. इस मूवी को उन्होंने को राइट किया, को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट भी किया, ऑल वाइल स्टार्विंग हिमसेल्फ ऑन मिल्क एंड डेट्स ताकि वो 20 किलो लूज कर सके इस रोल के लिए. It paid off because he bagged the National Film Award for the best debut director as well. So, total dedication to the craft, hum keh sakte hain is movie ke liye. Isme Randeep Hooda ne, inka actually mein ye bohat hi ambitious project raha hai till the date. And inhone, he was originally supposed to direct the film, बट जो ओरिजिनल डायरेक्टर है महेश मंजरेकर, ही वॉज नॉट सॉरी ओरिजिनली सपोज टू डायरेक्ट द फिल्म, लेकिन जो ओरिजिनल डायरेक्टर है महेश मंजरेकर, ही स्टेप डाउन ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस. तो हुडा को लगा कि यार ये मूवी तो ज़रूर बननी चाहिए, तो खुद उस चेयर पर वो बैठे इस पैशनेट प्रोजेक्ट के लिए. एक्सट्रीम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने की सावरकर के रोल को निभाने के लिए. ही ड्रॉप्ड रफली 20 to 22 kg, अपने वेट को डाउन किया उन्होंने, एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड हिम. एंड सी, इस मूवी को बाद में अवार्ड भी मिला. इस मूवी का एक्चुअली में एक डायलॉग है जो मैं आपको सुनाती हूँ.
2: देश को बांट रहे हैं, सिंधु नदी से सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या समाज के क्यों ना हो. स्वतंत्रता के लिए हमारी एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हिंदुत्व.
21: मतलब हिंदू धर्म?
2: नहीं, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं, और सनातन धर्म भी हिंदू धर्म का केवल एक हिस्सा है. इसमें लिंगायत हैं, आर्य समाजी हैं और बहुत लोग हैं, सिख हैं.
22: सिख कैसे हिंदू हो गए?
2: सिख तो सबसे बड़े हिंदू हैं, जो एक ढाल बनकर इस हिंद को बचाए. नहीं आई बात समझ में? शायद हिंदुत्व समझाने से पहले यह समझाना होगा कि हिंदू कौन है. असिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका, पितृभू पुण्य भूश्चैव सा वै हिंदू रीति स्मृता. मतलब सिंधु नदी से सागर तक की विशाल भारत भूमि में जो इसको अपनी पितृभूमि माने, यानी अपने पूर्वजों की जमीन, मातृभूमि यानी अपनी संस्कृति, भाषाओं, खान पान, त्योहारों को अपना माने, वो हिंदू है.
20: सो बहुत ही सुपर्ब एक्टिंग एक्चुअली में इन्होंने इस मूवी में की थी, जो कि उनका खुद का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. रियल लाइफ रोल इन्होंने निभाया था वीर सावरकर का. वेल, ऐसी और भी बहुत सारी इनकी मूवीज़ हैं, सो कभी टाइम मिले तो इनकी कुछ ऐसी मूवीज़ जो है ये उठा के आप ज़रूर देखिएगा. एक अनकॉम्प्रोमाइज आर्टिस्ट की, एंड देखा जाए तो ही नेवर शाइड अवे फ्रॉम कॉलिंग आउट बॉलीवुड पीआर कल्चर, स्टेपिंग आउट ऑफ हिज कम्फर्ट जोन, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स करने में जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं. एंड रियल लाइफ हीरो भी, बिकॉज चाहे कहीं पे फ्लडिंग हो रही है, चाहे कहीं पे कुछ भी है, वो एनजीओ टीम्स के साथ मिलकर ऑन द ग्राउंड वहाँ पे जाते हैं एंड लोगों की हेल्प भी करते हैं. हमारी नेबरिंग कंट्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया से बॉलीवुड का सफ़र बहुत ही बड़ा रहा है रणदीप हुड्डा का.

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है. आद

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Deal-breaking news. Today is the Briscoe's one-day sale.
6: That's right, Briscoe's lady. With up to 60% off store-wide, every single aisle is packed with deals. Today only. All stores open late. See online for TCs and store hours.
7: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir-fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
8: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
9: Reliance Ventilation System.
10: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
9: Moisture और ventilation का problem लगता है।
10: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
9: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
11: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
3: Imagine you're a snowboarder looking down a mountain. Zero crowds, zero noise, zero wind, zero ice, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Zero by Corona. Corona Zero, zero alcohol served everywhere this winter with a lime.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
5: Join the Tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
5: Join the Tribe!
6: Get dinner sorted with fresh deals at New World North Island, like whole chicken legs, $7.99 per kilo, or Pam's stir fry kits, $4.99 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
7: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज तो उसे सीधा बिन में ना डालें पता करें कि वो कहां जाना चाहिए oaklandcouncil.govt.nz/where-it-goes पे तमाकी तुरुकी ऑल टुगेदर ओकलैंड
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
10: Indelible Homes.
11: Hum. Time check. By Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. Local Government Minister Simon Watts wants a formal meeting with Tauranga's mayor in the wake of the Mount landslide review. It found the City Council had failed to act on years of warnings about the risk to life. The Greens are campaigning on bumping the cost of the free school lunch scheme back to $6.50 per meal. The Coalition has reduced the average cost to about $3.50 a pop. And mushroom murderer Erin Patterson's appeal against her triple murder conviction resumed today in Australia. The court is also hearing from prosecutors who argue Patterson's sentence is manifestly inadequate as it allows for the possibility of parole. In sport, Canterbury's second Ramfurly Shield defence in this tenure underway, the Red and Blacks taking on Northland. Northland scored a converted try early. Canterbury struck back with two tries to take the lead, but right on half-time, it's Northland ahead 21-12. And Rugby League with Machinery House in a league of their own. Warriors coach Andrew Webster set to remain at the club until the end of 2032. The 44-year-old has extended his current deal by another 4 years.
11: Sports News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
14: World's best, hamari koi branch nahi hai.
13: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
15: A very good evening, everyone. Main Krish aa gaya hu Thursday night ko aapka saath dene ke liye. Thursday is always such an amazing feels deta hai hame kyunki weekend ke bahut hi kareeb aa jaate hain aur kafi logo ke liye weekend bahut hi badi baat hoti hai kyunki aaram karne ka time ho jata hai. Matlab khud ke liye time milta hai jo bhi aap karna chahe. To I get personally very excited jab weekend aata hai. To I'm sure aise hi sabhi ke liye hoga. To Thursday night hai, 20th August hai aur main Krish aa gaya hu aapka saath dene ke liye. Swagat hai aapka. Aapke liye shuru karne जा रहे हैं आज तो रोमांटिक नाइट होने जा रहा है क्योंकि रोमांटिक गाने बहुत सारे बजेंगे क्योंकि आज आपके लिए हम लेकर आएंगे रिदम एंड रोमांस
13: जज्बात की नरमी मोहब्बत की राज
15: रिदम एंड रोमांस में आपका स्वागत है. वेलकम टू द शो एवरीवन. आपके लिए 8 टू मिडनाइट पूरा 3-4 घंटों के लिए इनफेक्ट रहेगा रिदम एंड रोमांस, जिसमें रोमांटिक गाने बजेंगे, शेर व शायरी भी लेकर आएंगे जैसे ही हमें समय मिलता है. ऑल्सो आपके लिए सेंसुअस गाने, लव मेलोडीज और ऐसे प्यारे प्यारे रोमांटिक गाने होंगे जो आपको भाएगा, आपको आराम देगा, आपको सूद करेगा. ऐसे ही गाने हम लेकर आए हैं. कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादें हर पल हमारे साथ रहती है. फासले चाहे कितनी भी बढ़ जाए दरमियान, फासले चाहे कितनी भी बढ़ जाए दरमियान, मोहब्बत के रिश्ते कहाँ आसानी से ख़त्म होते हैं. स्वागत है आपका, प्यारे गाने आपके नाम.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू. आपने जो एक्चुअल वर्क होता है उनका रिव्यू के बारे में सुना होगा, लेकिन अपने सिबलिंग को रिव्यू करना ये भी एक टास्क है आपके लिए जो हम लेकर आए हैं. थिंक योर ब्रदर और सिस्टर डिजर्व्स अ ग्लोइंग रिव्यू और नीड्स अ सीरियस अप्रेजल. आप कॉल करें जब हमारे साथ ही आपको इन्वाइट करते हैं टू गो लाइव ऑन एयर और ऑफिशियल परफॉर्मेंस रिव्यू आप उनको दे पाएंगे. रिव्यू में आप उनको इन चीज़ों पर इंक्लूड कर सकते हैं, बेस्ट और वर्स्ट सिबलिंग एवर, बोरोइंग योर स्टफ़ विदाउट आस्किंग, या हमेशा ट्रबल में होना, या आपका बिगेस्ट सपोर्टर बनना, या आपको अनोय करना 24/7. आप अपने रिव्यूज़ को शेयर करें और ड्रोमेश

0: Night Cafe on Hum.
1: We gotta go. Are you ready?
2: Come and take a trip with me.
3: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
0: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
4: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
5: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। Kashish Premium Basmati Rice. Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
6: डॉक्टर ने क्या बोला?
7: बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ गए।
6: गुड थिंग हम चेकअप के लिए गए, वरना पता भी नहीं चलता।
8: दैट कन्वर्सेशन इज हैपनिंग इन मोर टीवी होम्स देन यू थिंक। हाय, आई एम नितेश हीरा फ्रॉम अशोर वन। माय जॉब इजंट टू जस्ट सेल पॉलिसीज, इट इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ऑप्शंस एंड मेक श्योर योर फैमिली इज प्रोटेक्टेड।
9: बुक योर फ्री इंश्योरेंस रिव्यू टुडे। कॉल अशोर वन ऑन 0800-77-HEERA, दैट्स HIRA, और विजिट ashore1.co.nz। नॉर्थइंडियन एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अशोर वन, इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइडर।
10: New Mazda CX-5 is big. Big on room for growing families. Big on smart features for busy lives. Big on five-star peace of mind. It's big on everything that makes it New Zealand's favorite Mazda. Mazda.
11: I know about framing, but not how to keep our team connected on all the sites.
12: When you're a Spark Business customer, you get the number one mobile network coverage in New Zealand as awarded by Open Signal. Spark, the best bench in business.
13: Big Say's having a whiteware sellout today. We've got washing machines, dryers, fridges and dishwashers from just $2.98. Get a Samsung 6kg washer, only $6.99. Or a Panasonic 332-litre fridge, only $9.60. Need it today? We have stock. Plus get a massive 30 months interest-free store-wide. TCs and credit criteria apply. Get New Zealand's best value whiteware only at Big Say.
14: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
15: Yes, but I want to subdivide too.
14: Zelo.
15: Zelo?
14: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes packed with premium inclusions with full subdivision support if you need.
15: Really?
14: Yep. From planning and consents through to construction, the team can help manage the entire process.
15: Zelo. I like the sound of that.
14: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.
16: Of Bollywood.
17: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
16: Hum. Night Cafe on Hum. You're listening to Krish.
18: Let's go.
19: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hun. Hum boarding call is now open. Dream Island Escape jeetne ka mauka hai. It could be just one boarding call away. Do return air tickets to Vanuatu with Solomon Airlines plus $1,000 spending money jeetne ka mauka hai. Is tarah se aap enter kar payenge. Aap hum ko sune every weekday aur apne kaan ko khule rakhe for the special boarding call. 8 a.m. 11 a.m., 1 p.m. और 5 p.m. होगा. जैसे आप ये बोर्डिंग कॉल सुनते हैं, आपके पास 30 मिनट्स है टू हेड टू रोवा एंड एंटर बोर्ड नाउ. दैट्स इट. आपको बस बोर्ड नाउ लिखना है और आप ड्रॉ में शामिल होकर अनफॉरगेटेबल वनवातु गेटअवे जीत पाएंगे विद सोलोमन एयरलाइंस. और अपना फ्लाइट ना मिस करें, बिकॉज दिस कुड टेक यू टू पैराडाइज थैंक्स टू सोलोमन आइलैंड्स, फ्लाइंग फोर टाइम्स ईच वीक नॉन स्टॉप फ्रॉम ओकलैंड टू वनवातु. आप विजिट कर सकते हैं flysolomons.com पर. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: अटेंशन एवरीवन, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आप

0: whispers of Ishq.
1: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
2: Welcome back, everyone. You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Sunte raho, kyunki Bollywood ke gaane aapke liye hum lekar aayenge. Lekin aaj sab kuch special chal raha hai, kyunki aaj Thursday night hai, rhythm and romance hum lekar aaye hain, jisme aapke liye rahega bahut sare romantic gaane, jisme pyare rhythm hai, pyare songs hai, प्यारे सूदिंग साउंड है, ऐसे ही गाने हम लेकर आए हैं. चाहे वो अभी के गाने हो अरिजीत सिंह के रोमांटिक सॉन्ग्स, चाहे वो अलका याग्निक के गाने हो पहले के, या उदित नारायण या कुमार सानू के गाने हो, ये सभी कुछ आपके लिए हम लेकर आएंगे. खामोशी में भी एक आवाज़ छुपी होती है, खामोशी में भी एक आवाज़ छुपी होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे एक बात छुपी होती है. लोग समझते हैं हम खुश है दुनिया में, लोग समझते हैं हम खुश है दुनिया में, पर आंखों में अक्सर एक रात छुपी होती है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, प्यारे गाने आपके लिए. 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक आपको सुनाते हैं, बैक टू बैक सॉन्ग्स जो रहेंगे आपके लिए 30 मिनट्स के अंदर. ये गाने सारे के सारे रोमांटिक सॉन्ग्स आपके नाम. एंजॉय.

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम.
1: You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो आपको अकेले इसका सामना करने की जरूरत नहीं है. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज पूरे न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है. इनकी एक्सपीरियंस टीम आपकी लैंग्वेज और कल्चर को समझती है ताकि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिल सके. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने को बढ़ावा देना. अगर आपको या आपके किसी अपने को मदद की ज़रूरत है तो एशियन हेल्पलाइन पर 0800-862-342 पर फ्री और कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट के लिए कॉल करें या asianfamilieservices.nz पर विजिट करें. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.
2: तुम सा कोई दूसरा इस समीप पे हुआ तो रब से शिकायत होगी. तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी
3: रुजबे टिकट्स बुक हो गए
4: तो फिर देर किस बात की बाली बुला रहा
3: सनसेट बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
6: हेलो एवरीबॉडी
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
7: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
2: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे ओनली ऑन हम
8: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
9: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा
10: NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
11: You filled the pinata before I sealed it, right?
12: No, you did.
11: I thought you did.
13: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
14: Kia ora. If you're enrolled to vote, you'll soon receive an enrolment pack in the mail. Keep an eye out for yours.
15: Your enrolment pack should arrive by 22 August. Open yours and check your details to make sure they're correct. Learn more at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
16: Jackie didn't think she needed a DVS system.
17: Our home is brand new.
16: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
17: Yeah, it does.
16: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन इनवाइट कर रहे हैं कम्युनिटी को टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो 22nd और 23rd अगस्त को होगा बकनहेड स्काउट्स हॉल में। प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स को इन्वाइट किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल करें ऑन 021-090-85067 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: driving you home? Drive show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुस्बे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GW on Havel and Omura Jaiku.
4: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
5: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया. मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
4: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
6: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
7: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten and somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: Find more ways to save this business month at Warehouse Stationery. Grab hot deals on office essentials or a great value bundle and earn bonus biz rewards points on the brands you love. Shop great deals for your business and save big today.
10: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. More support for the IPCA's finding that the shooting and killing of fugitive Tom Phillips was justified. The watchdog says the police officer who pulled the trigger acted in self-defence. Police Minister Mark Mitchell is pleased with the result. Local Government Minister Simon Watts wants to meet Tauranga's mayor to see how the council will respond to yesterday's independent report on January's fatal Mount Maunganui slip. And a woman's in a serious but stable condition and a child has minor injuries after being assaulted in a violent aggravated robbery in Kaikohe. A 38-year-old man is in custody. In sport, 48 years in the making, it's been so long since Northland last held rugby's Ranfurly Shield that when it did, it was actually as North Auckland. It was 1978, so long ago, Muldoon was Prime Minister. Celebrations for the Taniwha, who went to Christchurch this evening for the Shield Challenge and won it 36-12. Rugby was shift 4. And at the Hockey World Cup tonight, group games continue. In half an hour, the New Zealand men will play Argentina, both sides in with a chance of moving into the second stage at the expense of the other.
0: Sports News.
10: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
10: Night Cafe. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
0: Whispers of Ishq.
10: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
12: You're humming along with Krish, your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Welcome back to the show, everyone. Night Cafe aapke liye jaari hai, jisme rhythm and romance aapke liye 8 PM se shuru hua hai aur ye chalta rahega midnight tak. Abhi it's past 10. News and sports update aapne suna. Aapke liye hum lekar aate hain, chalo ek aur segment of non-stop music back to back jo aapke liye hum pesh karenge. Sunte raho kyunki bahut sare romantic songs main lekar aaya hu and I'm so excited, super excited to play them for you. Aap enjoy karte raho hamare saath hokar. Waqt badla, लोग बदले, बदल गई कहानी, फिर दिल फिर भी दिल में रह गई तेरी निशानी। हमने तो सब कुछ भुलाने की कोशिश की, हमने तो सब कुछ भुलाने की कोशिश की, पर यादों ने कभी हार नहीं मानी। कुछ मुलाकातें जिंदगी भर याद रहती है, कुछ बातें दिल के अंदर आबाद रहती है। इंसान चला जाता है वक्त के साथ, इंसान चला जाता है वक्त के साथ, मगर उसकी यादें हमेशा साथ रहती है। सुनते रहो हम क्रिश के साथ है, वेलकम बैक टू द शो।

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hub 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call, thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
3: Your vehicle is already out there every day. The question is, what is it saying about your business? With a Speedy Signs rep, your car, van or truck becomes a rolling ad seen by thousands. One upfront investment, years of exposure. Why let that space go to waste when it could be bringing in new inquiries? Turn every trip into brand awareness. Give Speedy Signs a call or visit speedysigns.co.nz to get your vehicle signage sorted and grow your business faster.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 PM, Vedic Center, Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, gift of life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
9: अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
12: नाइट कैफे जस्ट बात की नरमी मोहब्बत के राज
13: विस्पर्स ऑफ इश्क
12: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
14: You're with Krish on Hum, playing Bollywood's biggest hits, Raksha Bandhan ke dauran, aap $300 cash jeet payenge, humare Facebook page par jaye. Sibling bonds ko expensive gifts se nahi dekha jata hai, ya tola jata hai. In fact, ordinary objects aur extraordinary memories hi humare liye kaafi hota hai, jaise old cassette tape ho, ya ek shared key ho, stolen t-shirt ho shayad. रक्षाबंधन पोस्ट हमने फेसबुक पेज पर डाला है हम फेसबुक पेज पर आप हमारे फेसबुक पेज पर जाए एक फोटो अपलोड करें ऑफ वन मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट इन द कमेंट सेक्शन दो तीन सेंटेंसेस आप जरूर लिखें अबाउट द मेमोरी जो इससे जुड़ी है और टैग योर सिबलिंग ड्रो में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है विनिंग स्टोरी को लाइव रेडियो पर पढ़ा जाएगा ऑन एयर ऑन फ्राइडे 28 अगस्त और $300 कैश गिव अवे अनाउंसमेंट भी विनर को दिया जाएगा मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ

0: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है। 20th August है, आपका जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से, और जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स ग्लोबल लिसनर्स आपको भी शामिल करते हैं। म्यूजिक प्लस स्टेशन जोन हम सुनना ना भूले, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर होने को है। अगर आप चढ़ती कला पंजाबी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या फिर 80s जू बॉक्स के 80s बॉलीवुड गाने सुनना चाहते हैं, राहत फतेह अली खान के गाने अगर आप सुनना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। फिजी कीर्तन संग्रह बिगर चॉइस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट अब रख दिया गया है ऑन हम फिजी कीर्तन संग्रह। न्यू पूल ऑफ कीर्तन बाय विनेश चंद, सोनम बली, संजय, सुनील चंद्रा, मंजीत प्रसाद, मिलन, अमित कुमार, रविनेश चंद रवि, नितिन, नीलेश, प्रकाश, दवेन नाथ, केविन कुमार, अपरोहित प्रसाद, शलिन सिंह और भी बहुत सारे कलाकारों को आप सुन पाएंगे। इसके अलावा हम रिवाइंड जिसमें 60s और 70s हिट्स भी सुनने का मौका रहेगा, आपको आपके फेवरेट म्यूजिक से कनेक्टेड रखता है हम म्यूजिक प्लस स्टेशंस। अगले घंटे पर मिलते हैं टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए।
1: लाइट कैफे ऑन हम।
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
2: Night Cafe Rhythm and Romance में आपका स्वागत है. Welcome back everyone. This is our final hour. जितने भी हमारे प्यारे listeners हमारा साथ दे रहे हैं, thank you so much. और अगर आपने अभी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, thank you. Radio tune in किया है, स्वागत है. अभी भी अगर आप कार में आकर बैठे हैं, driving कर रहे हैं और घर की ओर जा रहे हैं, या फिर कहीं और अगर आप जा रहे हैं, काम की ओर जा रहे हैं, रात को मिडनाइट आपका शायद काम स्टार्ट होने को है, तो स्वागत है. नाइट शिफ्ट वर्कर्स और ट्रक ड्राइवर्स आपको भी शामिल करते हैं. आपके लिए जारी है रिदम एंड रोमांस, जिसमें आपके लिए हम लेकर आते हैं बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे लव मेलोडीज़, रोमांटिक सॉन्ग्स जो आपके लिए हम पेश करेंगे. हमने दर्द को भी मुस्कुराना सिखा दिया, हमने दर्द को भी मुस्कुराना सिखा दिया, हर आंसू को आँखों में छुपा लिया. लोग पूछते रहे खुशी का राज हमसे, लोग पूछते रहे खुशी का राज हमसे, हमने बस तेरा नाम दिल में दबा लिया.
3: तुझ

द नाइट होने जा रहा है, 21 अगस्त को ये होगा वैदिक सेंटर पापटोए में। टिकट्स $20 में आप ले सकते हैं। और स्पॉन्सरशिप और इंक्वायरीज के लिए आप अश्नील से बातें करें 021-0666-7236 पर, और 021-558-884 पर भी आप इनको संपर्क कर सकते हैं। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m. प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
0: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
0: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
5: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
6: Join the Tribe!
5: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and...
6: Join the Tribe!
7: Winger Motors are your home of Chery, जहां नई

0: Cafe on Hum. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ ही देर तक, और आपके साथ हम देंगे प्यारे प्यारे गाने और भी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको हम सुनाएंगे. कुछ मुलाकातों जिंदगी भर याद रहती है, कुछ मुलाकातें जिंदगी भर याद रहती है, कुछ बातें दिल के अंदर आबाद रहती है. इंसान चला जाता है वक्त के साथ, इंसान चला जाता है वक्त के साथ, मगर उसकी यादें हमेशा साथ रहती है. कुछ और प्यारे गाने आपको सुनाते हैं. कृष के साथ है, रिदम एंड रोमांस जारी है आपके.

रिदम एंड रोमांस यहीं पर खत्म हो रहा है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है एक बार फिर नेक्स्ट वीक मंडे को, हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए प्यारे प्यारे गाने मंडे टू फ्राइडे नाइट कैफे सेगमेंट्स लेकर. अपना बहुत ही ख्याल रखे, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे एंड द वीकेंड. मंडे को मिलते हैं, कृष का प्यार, नमस्ते.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हैरिंगटन लिविंग मेनिकाउ, होम ऑफ एवरीडे लग्जरी इलेक्ट्रिक रिक्लाइनर लाउंज सुइट्स फ्रॉम जस्ट 2,699। हैरिंगटन लिविंग, लग्जरी फॉर लेस। विजिट हैरिंगटन लिविंग मेनिकाउ सुपर सेंटर, कैवेंडिश ड्राइव, मेनिकाउ।

0: Night Flight on Hum.
1: Attention everyone. हम बोर्डरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
2: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
1: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
2: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
1: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बोर्डरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई समझ सकते हैं।
2: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
1: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
3: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
4: डज योर फ्लोर नीड अ मेकओवर? Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने

Listen up, yo. It's Valentine's Day. And boom. And groove.

अंडा अंडा अंडा अंडा। हम सब ने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है। ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है।

0: 27. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। Mover, tools, bikes, या फिर सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए? Find shed loads at Mytet and Mega Westgate and Henderson. Garden और lifestyle sheds की great range के साथ अपना perfect storage solution sort करें. आज ही बात कीजिए with the team at Mytet and Mega Westgate and Henderson.
6: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
7: Right now, your team could be winning.

0: मुझसे प्यार करती हो, कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

0: सैंडी एंड्रस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड्रस पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था, फिर ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
7: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
8: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
7: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
8: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
7: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
9: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18।
10: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800-862-342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
0: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
0: Night Fly.

0: लगता।
1: चुप्पे फौसले फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन
2: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम हाँ।

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया
3: अभी. ब्रांड हो गया ना
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो.
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
11: Night flight.

0: stop from Auckland to Vanuatu.
1: Let's go.
0: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Welcome to Kebabs Kitchen. I am Chef Alex और ये है मेरी guest Sarah.
6: क्या बनाते हैं इन कबाब को special, Chef Alex?
5: Perfect blend of spices, tender meat और fresh vegetables. हर कबाब बनता है with love and passion.
6: Wow, these kebabs are amazing. Spices एकदम right and meat is so juicy.
5: ये है अम्मा's kebabs promise, delivering happiness bite by bite. अम्मा's food at your nearest Indian grocery or halal butchery stores.
6: 100% authentic and pure as mother's love.
7: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
8: Yeah, but there always seem to be hidden extras.
7: Zelo by Ashcroft Homes. A great range of modular homes packed with premium inclusions right from the start. Think stone bench tops and heat pumps to built-in cabinetry and storage, all included.
8: Really?
7: Yep, and they can deliver in as little as 8 weeks.
8: Zelo. I like the sound of that.
7: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Attention everyone, हम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में हैं और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग हैं हॉट सीट पर।
1: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
0: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
1: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
0: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
1: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
0: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल।
2: रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर।
3: So, you've been looking at adding a modular home to your property.
4: Yeah, but nothing quite reaches my standard.
3: Well,
4: within my budget?
3: Zelo.
4: Zelo?
3: Zelo by Ashcroft Homes. A range of stylish modular homes from 1 to 4 bedrooms with 1 or 2 bathrooms, all packed with premium inclusions.
4: Price?
3: $139,000 for a fully complete 1-bedroom home and $215,000 for a 3-bedroom home.
4: Zelo. I like the sound of that.
3: Discover the Zelo difference at zelo.co.nz.

0: show with VJ and Pooja.
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है temperature.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with
2: क्या?
3: The cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: KZ. Offer ends August 31st.
1: Time check. Good morning, it's me teacher Bajre hain.
2: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
3: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. A study reveals young people in public housing are significantly less likely to commit crimes. Otago University found they had fewer interactions with the justice sector despite experiencing socioeconomic disadvantages. Lead researcher Chang Waiyu says the stability works.
4: We are less exposed to the change in the environment, so they are much less likely to be the suitable target of offenders.
3: Time of use charging has once again been recommended for Auckland roads. It forms part of the Transport Agency's 30-year plan to better the motorway network. But AA Policy Director Martin Glynn says it could only really work in the CBD.
5: We're getting better, of course, with things like the City Rail Link and ongoing improvements in the public transport network generally. But that's where it's focused. It gets more tricky on the motorway network.
3: An epidemiologist supports applying COVID learnings to the late season surge in influenza. The ARB reports clinicians are separating patients with respiratory symptoms and extra precautions are being rolled out in hospitals. Professor Michael Baker says the COVID alert system was for a different situation, but the principle could be considered. To sport, where Damian McKenzie's over an ankle injury and will start at fullback for the All Blacks against the Springboks at Ellis Park on Sunday. Fabian Holland and Josh Lord are the longs, while Anton Segner and Leroy Carter have been included on the bench. And the Ranfurly Shield has a new home on Sky Sport.
6: For the first time since 1978, the Ranfurly Shield is heading to the far north.
3: Northland upsetting Canterbury 36-12 in Christchurch. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
2: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
7: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
8: सूचित किया जाता है कि बाउलेवु नोसोरी फिजी के स्वर्गीय श्रीमानो श्रीमती मुत्तुसामी गाउंडर की पुत्री यानी सनीवेल ऑकलैंड के जेफ्री हॉग की पत्नी ऑकलैंड के सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की मां सनीवेल ऑकलैंड की विजय लक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार को दिन में 1 बजे मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनोई रोड वीरी ऑकलैंड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02120021273700 पर कॉल कर सकते हैं. याद रहे बाउलेवु नोसोरी फिजी के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती मुत्तु स्वामी गाउंडर की पुत्री यानी सनीवेल ऑकलैंड के जेफ्री हॉग की पत्नी ऑकलैंड के सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की मां सनीवेल ऑकलैंड की विजय लक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार सोमवार को दिन में 1 बजे मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनोई रोड वीरी ऑकलैंड में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02121379700 पर कॉल कर सकते हैं.
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
2: जबरदस्त हिट्स
9: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
2: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Hum.
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
10: 8.5 degrees temperature. Auckland mein bhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 16. Overnight kam se kam 9 degrees. Kuch badal chhaye rahenge. हल्की बारिश कभी कभार कुछ हो सकती है. सुबह के वक्त कुछ कुछ जगह पर फॉग और आज सनराइज 6:56 AM पर सनसेट 5:53 PM पर होगा.
2: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा
11: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस. फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन बिग और स्मॉल. ब्रिंग होम द फॉर्च्यून एंड हैरिंगटन लिविंग एट बेजरस मनको. इंग्लिश हेरिटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर फॉर एवरीडे लग्जरी लिविंग.
2: ब्रेकफास्ट कैचअप The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: पूरी की पूरी गैंग के लोगों कान के साथ सब कुछ खोल के सुन लो.
8: Hello, Kiora. Good morning. Namaste and welcome to Hum, playing Bollywood's biggest hits. 4 minute ho rahe hain samay hamari studios mein 6 bajkar aur aaj hai Friday 21st of August. Finally Friday aa hi gaya.
10: और इस दिन का आप में से शायद बहुत सारे लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. तो लीजिए इस दिन का भरपूर मजा लें आप, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और हमने कल आपसे वादा किया था तो आज आए हैं एक बार फिर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में आपका साथ देने के लिए।
1: बिल्कुल, जहां पर ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ हो रही है शुरुआत, तो डेफिनेटली विल चेक आउट की खबरों में क्या कुछ है ऐसा जिसके साथ आपको हम और भी इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड रख सकते हैं। और यू नो रोज की जो मस्ती मजाक ये सारी चीजें होती है ये तो रहेगा ही, आपके फेवरेट गाने भी रहेंगे। आपका साथ जो मिल रहा है इसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड ऑफ कोर्स अ वेरी गुड मॉर्निंग वन मोर टाइम आपको विश करना चाहते हैं, साथ में आपके कीमती साथ और समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Inside Up.
1: तो चलिए आज फ्राइडे है, एक तो वैसे ही खुशी की बात है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आज की जो सनी साइड अप स्टोरी है ये जिसके ज़रिए आपके लाइफ में सुबह सुबह और भी पॉजिटिविटी जो है ये हम लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले आज आपको हम याद दिला दें कि ये जो कहानी है दिस इज़ नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम यू नो आउट ऑफ
2: न्यूजीलैंड.
1: यस, अपेरेंटली ये कहानी है फ्रॉम इंडिया. फ्रेंडशिप जो है बहुत गहरी चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी रिश्ता होता है लाइफ में. और इसे अगर आपको एक सही शख्स के साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिले तो इससे बड़ी बात क्या होगी. आज हम आपको बताना चाहते हैं ह्यूगो ड्यूमास के बारे में, जो कि फ्रांस से हैं और ये 22 इयर्स ओल्ड थे जब ये पहली बार इंडिया गए, जहाँ पर इन्होंने इंडियन कल्चर, वहाँ की भाषा, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए अपना जो मूव है ये किया था फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया. When he went there, तो ये पटना पहुंचे, जहां पर पटना में जो इस्त्री वाला बेसिकली जो कपड़े आयन करता है,
2: हाँ,
1: उनका एक बेटा है जिसका नाम ऋतिक बताया गया है, जो 8 साल का था उस समय. When Hugo was 22, he was 8 years old. तो तब जाकर इनकी मुलाकात जो है ये हुई. और when they met each other, तो इनकी ये unusual दोस्ती जो है ये शुरू हो गई. 2012 की कहानी ये है. और आपने पढ़ाई जो ये ख़त्म करने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन दिल्ली ये पटना पहुँचे, वहाँ पर हिंदी सीखी और आउटसाइड उनके ही घर के बाहर इनफैक्ट ऋतिक से उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि उनके ऋतिक के पिता जो इनके घर के बाहर ही इस्त्री का काम जो ये किया करते थे. एवरी इवनिंग ह्यूगो जो है वुड स्टॉप टू चैट विथ ऋतिक. एंड ऑफकोर्स शुरुआत में वो एक दूसरे की भाषा ज़रा भी नहीं समझते थे, क्योंकि ह्यूगो को उतनी हिंदी नहीं आती थी और ऋतिक को इंग्लिश नहीं आती थी. एंड दे बेली शेयर्ड लैंग्वेज, स्माइल, जेस्चर्स, ऐसे सिंपल सिंपल तरीक़ों से उन्होंने एक दूसरे को ग्रीट करना शुरू किया. लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि बात जो है ये समझना आना शुरू हो गया. फिर हंसी मजाक जो ये शुरू हो गया. एक दिन ह्यूगो ने देखा कि ह्यूगो ऋतिक और उसकी बहन जो है ये दरअसल सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे थे. ही इनवाइटेड देम होम टू स्टडी और स्लोली उन्होंने उनको पढ़ाना भी शुरू कर दिया, उनको सिखाना शुरू कर दिया. और कन्वर्सेशंस जो है ये शुरू हुए इन दोनों के बीच में, जिसके बाद चलकर कहते हैं कि ये छोटा सा कन्वर्सेशन विच एक्चुअली इनिशिएटेड वो अब इतनी बड़ी फ्रेंडशिप में बन गया है कि ये दोनों बहुत अच्छी फ्रेंडशिप जो ये शेयर करने लगे. एंडलेस क्यूरियस क्वेश्चंस जो ऋतिक पूछता था अबाउट वर्ल्ड और लाइफ आउट ऑफ इंडिया, जिसके बाद में चलकर वो दोनों साथ में खाते पीते, टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे के घर आना जाना जो है ये शुरू हो गया, साइकिलिंग करते, मतलब एंडलेस मीटिंग्स जो है कि इनकी होती. हर कोई इनके इस बॉन्ड को समझ नहीं पाया, बिकॉज अ 22-year-old फ्रेंच मैन एंड अ 8-year-old इंडियन बॉय, इनके बीच में कैसी फ्रेंडशिप. तो इसके बाद में चलकर जजमेंट्स बहुत हुए, बट दे केप्ट देयर फ्रेंडशिप टुगेदर. ऋतिक बड़ा हो गया और ह्यूगो के साथ उनका जो दोस्ती है ये बरकरार था, जिसके बाद चलकर उन्होंने उनकी हेल्प की टू सी लाइफ आउटसाइड बिहार और दुनिया जो है ये जाकर देखो, एक्सप्लोर करो. उन्होंने इनको इनकरेज किया इवेंचुअली और उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये लेकर गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है ये कंप्लीट की. एंड एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने अपना सिलेक्शन जो है ये किया और उसकी ओर अपनी लाइफ को बनाने में ये लग गए. और इसमें ह्यूगो का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी इनकरेजमेंट एक 8 साल के बच्चे को दिया था बैक देन, आज भी इनकी दोस्ती बरकरार है. ऑफ कोर्स दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टफ, लेकिन कोशिश जो है ये जारी रहती है, बातचीत होती रहती है. और ह्यूगो जो है फ्रांस वापस चले गए हैं और ऋतिक अभी भी भारत में ही है, बट फिर भी दे मेक श्योर कि दे डू टॉक टू ईच अदर, दे शेयर देयर फ्रेंडशिप, भले ही थ्रू ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन हो या फिर फ़ोन के ज़रिए हो. तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप एंड अबाउट द फैक्ट कि एक स्ट्रेंजर एक स्ट्रेंज नए कंट्री गया जो उसके लिए एकदम नया हो, वहाँ का कल्चर डिफरेंट हो, और वहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखकर, उनकी फैमिली के हालात देखकर, उनसे बातचीत कर व्हाटएवर ही डिस्कवर्ड, ही हैड दैट एम्पैथी इन हिम टू हेल्प दैट बॉय. उन्होंने सही गाइडेंस दी, जिसके बाद चलकर आज ऋतिक लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है.
2: दैट्स रियली अमेजिंग. और कभी कभार जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलना हो जाता है जो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल देते हैं.
1: एब्सोल्युटली. फिलहाल 16 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर और थोड़ी देर बाद आज का ग्लोबल हेडलाइंस.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा.
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ.
4: अटेंशन एवरीवन, अ
3: नाम बूटरूम अब ऑफिशियली सेशन में है और इस बार एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए आपके सिबलिंग है हॉट सीट पर।
4: क्या आपके भाई ने बिना पूछे कपड़े बोरो किए हैं?
3: क्या आपकी बहन ने कभी आपकी मम्मी बनने की कोशिश की है?
4: या फिर हर मुश्किल वक्त वो आपके सबसे बड़े क्रिटिक या सपोर्टर बने हैं?
3: इस रक्षाबंधन अपने सिबलिंग को ले आइए हम बूटरूम में, उनकी खिंचाई कीजिए, तारीफ कीजिए, पुराने हिसाब क्लियर कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए वो बॉन्ड जो सिर्फ भाई बहन समझ सकते हैं।
4: सबसे बेस्ट दो परफॉर्मेंस रिव्यूज जीतेंगे $250 कैश ईच,
3: क्योंकि हर सिबलिंग को मिलना चाहिए एक जबरदस्त अप्रेजल। रक्षाबंधन ऑन हम ब्रॉट टू यू बाय इंटेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड मलाबार गोल्डन डायमंड्स बॉटनी टाउन सेंटर। There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.hz. Terms and conditions apply.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
8: Kahani of Indelible Homes.
9: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2MONTHS. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
10: You filled the pinata before I sealed it, right?
11: No, you did.
10: I thought you did.
9: Get groceries in as little as 60 minutes with New World Express Delivery. T's and C's and exclusions apply. See online for details.
12: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस, ईट बेटर लिव बेटर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स।
13: Playing Bollywood's biggest hits.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
15: Global headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सारी बातचीत रोकते हुए मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन शुरू करने की धमकी दी है, जबकि 6 महीने से चल रहे इस जंग से निकलने में उन्हें मुश्किल हो रही है। व्हाइट हाउस अब ईरान की इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह करने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है, जिसमें उन देशों पर भी एक्शन लिया जाएगा जो ईरान को किसी भी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। ट्रंप ने ऑयल स्मगलिंग, कैश ट्रांसफर्स और शिप रजिस्ट्रीज को तुरंत रोकने की मांग की है, जबकि दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ने पर वो अपना स्टैंड बदलते हैं या नहीं। भारत में पंजाब के मोहाली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल हुआ है। सोर्सेस के मुताबिक मलबे के नीचे अभी भी कुछ लेबर्स के दबे होने की आशंका है, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फिजी में सुबह हाई कोर्ट रजिस्ट्री में इमरान खान यानी किंग खान और डेबरा किम की $404,000 से ज्यादा की अनएक्सप्लेन वेल्थ, एक घर और 4 गाड़ियों को जब्त करने की एप्लीकेशन दाखिल की गई है। मेथमफेटामिन रखने के जुर्म में 4 साल 3 महीने की जेल काट रहे इमरान खान और किम अपनी इन एसेट्स को लीगली कमाए जाने का कोई प्रूफ नहीं दे सके थे। सरकार द्वारा पेमानेंट रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर मिलने के बाद अब इस बैंक अकाउंट बैलेंस वाले लेवू नसीनू में 3 बेडरूम घर और 4 व्हीकल्स को स्टेट प्रॉपर्टी घोषित करने की लीगल एक्शन आगे बढ़ाई गई है। क्रिकेट में अगर देखें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच का तीसरा या दूसरा दिन जो है ये जारी है। इंग्लैंड अभी देखें तो उन्होंने 79.5 ओवर्स में 8 खिलाड़ी खोकर 364 रन्स बनाए, जबकि पाकिस्तान 48.1 ओवर्स में 171 रन्स पर है। साथ ही में इंग्लिश प्रीमियर लीग का नया सीजन जो है ये कल से शुरू होगा। पहले मैच में कल सुबह 7 बजे आर्सेनल कोवेंट्री सिटी का सामना करेगा, जबकि कल रात 11:30 बजे हल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच खेला जाएगा। इन पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
16: Bollywood's most wanted.
17: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
16: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

चलिए इस बार अरमान मलिक और साथ में उनके साथियों की आवाजों से इस गाने को एंजॉय करते हैं। अदिति सिंह शर्मा भी साथ दे रही है इनका। फिल्म का नाम है अजहर, 2016 में ये फिल्म आई थी, इसी का ये गाना है। सो एंजॉय करते रहे, क्योंकि इस गाने के बाद बॉलीवुड से जुड़ी आज की पहली खबर आपके नाम हम करेंगे। गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं। बॉबी मान जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आपने कहा हैप्पी फ्राइडे, जय माता दी, पूजा एंड विजय, गुड मॉर्निंग, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपका हर पल द बेस्ट हो, हैव एन ऑसम वीकेंड, चीयर्स। थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए।

0: तो बॉलीवुड में सबसे लेटेस्ट खबर जो है ये क्या है, क्या कुछ चीजें जो ये हो रही है, इस पर हमने आपसे बातें जो ये करनी चाहिए। आपने ऑपरेशन सफेद सागर जो है ये देखा है?
1: नहीं, अभी नहीं देखा है।
0: नहीं देखा है। इसके बारे में काफी बातें हो रही है और इस पर्टिकुलर शो के बारे में आपको बता दें कि ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और आप जरूर ये जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, बट नेटफ्लिक्स पर ऑपरेशन सफेद सागर, एक स्पेशल एक्नॉलेजमेंट जो है इसमें हुआ है फॉर लेट कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव एट द एंड ऑफ ईच एपिसोड्स। मैंने एक भी एपिसोड अभी तक नहीं देखा है, सो आई डोंट रियली नो एंड आई कैन कन्फर्म दिस, बट रिपोर्ट्स आर सेइंग इट कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो है ये हुए हैं। एंड वाइल द ट्रिब्यूट हैज कॉट व्यूअर्स अटेंशन, जो मेकर्स हैं उन्होंने अब फाइनली ओपन अप किया है अबाउट द पर्सनल कनेक्शन बिहाइंड इट और रिवील किया है कि क्यों उनका नाम होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन दिस प्रोजेक्ट। एक इंटरव्यू जो है ये हुआ है को क्रिएटर कुशाल श्रीवास्तव और साथ में आई थिंक देयर इज अनदर पर्सन हाईली इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर सीरीज इनके द्वारा, बट कुशाल श्रीवास्तव जो है जो प्रीवियसली इंडियन एयरफोर्स में एज एन ऑफिसर काम करते थे, ही सर्व्ड एज एन इंडियन ऑफिसर, उन्होंने कहा कि ये सीरीज वुड नॉट हैव टेकन शेप विदाउट द सपोर्ट ऑफ हिज लेट चाचा राजू श्रीवास्तव।
1: Oh, okay.
0: Yes. So, कुशाल जो है ये राजू श्रीवास्तव जी के नेफ्यू हैं एंड वॉज नॉट ओनली अ सेलिब्रेटेड कॉमेडियन, लेकिन उनके लिए ही वॉज समवन हु एनकरेज्ड हिम टू परस्यू फिल्म मेकिंग। और जब वो ऐसा कुछ करना चाहते तो उन्होंने बताया कि years ago उन्होंने अपने चाचा को ये कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे दुनिया में उनका नाम हो, जिसके बाद चलकर उन्होंने ये कहा कि तुम्हें हर जगह पर हैंडपम्प लगा देने चाहिए जिस पर तुम्हारा नाम हो, ये उन्होंने कुशाल को बताया था। जिसके बाद चलकर जब उन्होंने कहा कि जब राजू श्रीवास्तव जी को ये एहसास हुआ कि कुशाल वाज क्वाइट सीरियस अबाउट द फैक्ट कि वो अब इंडियन एयरफोर्स छोड़ना चाहते हैं और फिल्म मेकिंग को परस्यू करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ही वॉज दैट गाय हु हेल्प्ड हिम सिक्योर द परमिशन टू लीव द इंडियन एयरफोर्स। और उनके उस हेल्प की वजह से, एनकरेजमेंट की वजह से उन्होंने बाद में चलकर वोट का डायरीज 2018 में जो है ये डायरेक्ट की और फिर डेवलप किया ऑपरेशन सफेद सागर राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा श्रीवास्तव के साथ। तो इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट जो है इनिशियली से प्लान किया था एज अ फीचर फिल्म, लेकिन ये फिल्म हो नहीं पाए बिकॉज आई थिंक उसके बाद चलकर COVID-19 जो हो ये हो गया था और कंसिडरेबली देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस जो है ये आए थे इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर फिल्म, जिसको लेकर उन्होंने बाद में ये सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को एक सोशल मीडिया सॉरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, OTT प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया जाए एंड वेब सीरीज जो है ये बनाया जाए। तो दे सेड कि लेटर इन 2022 मई में जाकर उन्हें नेटफ्लिक्स की ओर से एक गो अहेड मिला, जिसके बाद चलकर उन्होंने अपनी जो ऑपरेशन सफेद सागर की जर्नी है ये शुरू की एंड देन टर्न्ड दिस फीचर फिल्म इनटू अ वेब सीरीज।
1: दैट्स अमेजिंग। सो इसे आप देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव के नेफ्यू जो हैं कैसा जो काम है उन्होंने किया है, क्या तैयार किया है, एंड होपफुली वी गेट टू सी दिस, आई गेट टू सी होपफुली ओवर द वीकेंड।
0: हाँ, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी एपिसोड्स आर इन इट, बट आप वंस मौका मिले तो जरूर जाकर देखिएगा। फिलहाल बॉलीवुड की और भी इंटरेस्टिंग खबरें, कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे, बट कमिंग अप नेक्स्ट आज का हमारा पहला सवाल एंड बिफोर वी डू दैट, ये क्या था?
1: क्या था?
0: मतलब व्हाट आर यू डूइंग? अंगड़ाइयां ले रहे हैं आप यहाँ पे? ओह माय गॉड। तो यस, बिफोर वी डू दैट, गुड मॉर्निंग के भी कुछ मैसेजेस आए ना?
1: या थैंक यू सो मच सुबह सुबह हमें याद करने के लिए। और आज सबसे पहले आपने कहा था बॉबी मान जी, इसके अलावा राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे, मिस्टर माटा माटा आपको ये सुबह मुबारक हो।
0: विनीता जी का मैसेज जो है ये आया है, इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे, और साथ में मैंडी ने भी अपना मैसेज भेजा है, गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे।
1: गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पीजे, सल्लू गल्फ हबा फंगपरो से, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, हैप्पी फ्राइडे, आपको भी ये सुबह बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, देखो हम आ गए। Attention, hum passengers, your next boarding call could take you to paradise. Listen.
3: missing out for your special hum boarding call for your chance to win to return a tickets to Vanuatu with Solomon Airlines.
4: Let's take a vacation.
3: And $1,000 spending money.
5: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com. Accurate traffic.
6: Experience fun at Snow Planet.
7: Quite cloudy today and a bit of a foggy start, a high of 16 degrees. Into the city at the moment, flying fairly well on all motorways. Southern, 20 minutes Manukau to town, 32 from Drury, just building south of Manukau, slow at Manurewa. Northwestern, bit of traffic here and there, but fast all the way in, really. 17 minutes Massey to the CBD, and northern, still just 16 in from Constellation, pretty clear the whole way. Southwestern, fine.
6: Ski, board, slide, tube, fun for the whole family at Snow Planet, not a million miles away.
8: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye, wo khushboo aur wo asli masalon ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma ya chana masala. Recipes chahe vegetarian ho ya non-vegetarian. Shan recipe mixes har dish ko bilkul ghar jaisa banati hain. To intezaar kis baat ka? Aaj hi apne nazdeeki supermarket se Shan recipe mixes khareediye. Shan Foods, asli swaad har ghar ke liye.
9: Looking for a flash getaway? Fiji Airways flash sale is on now. Fly direct from New Zealand one way to Nandi from just $295. Or enjoy a stopover in sunny Fiji direct from New Zealand on your way to epic destinations like Tokyo from $675, Singapore from $699, and Hong Kong from $695. Flash destinations for not much cash. Fiji Airways flash sale on now. Book now at fijiairways.com or call your travel agent. Conditions apply.
10: Blood and plasma donors are always precious, but in wintertime, with sickness about, NZ Blood needs even more donors to fill the gaps others leave. So, if you're well right now, we'd love you to step up and help us out. When you become a donor, you're giving a priceless gift to someone in need. You could help them get better and make yourself feel good. Just head to nzblood.co.nz and book in a time to

0: Spencer Rush Munco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up.
2: Let's go.
1: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
3: अभी 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में. आज बहुत सारी चीजें मनाई जा रही हैं या मार्क की जा रही हैं. आज मेंस ग्रूमिंग डे है.
4: ओके.
3: बहुत सारे लोग यू नो यू गो टू बार्बर शॉप. आई मीन मैं तो बार्बर शॉप ही जाता हूँ ग्रूमिंग के लिए. यू नो अभी पहले इतना देखने को नहीं मिलता था. अभी आप जाएंगे तो यू नो द टाइप्स ऑफ थिंग दैट मेन गेट डन.
4: बट बिफोर ना ऐसा समझा जाता था कि आदमियों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. उनको सिर्फ बाल कटानी चाहिए, उनको सिर्फ अपनी बियर्ड जो है ये बनवानी चाहिए, बस हो गया. बट द फैक्ट कि ग्रूमिंग इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जेंडर. इट्स बेसिकली समथिंग जो हर किसी को करना चाहिए टू मेक योर सेल्फ फील गुड, टू मेक योर सेल्फ लुक बेटर एंड मोर प्रेजेंटेबल ना, एंड टू लुक आफ्टर योर हेल्थ. स्किन हेल्थ भी तो बहुत ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, लेकिन स्किन हेल्थ भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो आजकल आई लव द फैक्ट दैट द मैन हैव सच अ चेंज्ड माइंडसेट दैट वो अब खुद का ध्यान जो है खुद रखना इस हिसाब से, लाइक नॉट जस्ट लुकिंग आफ्टर योर हेयर और योर बियर्ड बट योर स्किन टू. ये सारी चीजें करते हैं, इसीलिए फेशियल्स वगैरह भी कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं.
3: आई सो यू नो जो बार्बर्स होते हैं वो ऐसे क्या बोलते हैं थ्रेड लेकर कुछ कर रहे थे, वो
4: थ्रेडिंग कराते हैं.
3: अच्छा,
4: दे गेट दैट, दे गेट दैट डन. अपना आईब्रो शेप कराते हैं. ऑल दीस थिंग्स आर बीइंग डन दीस डेज. सो इट्स क्वाइट अमेजिंग टू सी दैट यू नो द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आप एक पर्टिकुलर एजेंडा सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं है. इट्स बेसिकली द मैन आर ऑल्सो मेकिंग यू नो फुल यूज ऑफ दिस नॉलेज कि करना चाहिए यार, खुद को अच्छा लगने में या अच्छा बनाने में क्या खराबी क्या है.
3: Yeah, if it makes you feel good, go for it. And it's जैसे आपने कहा good for your skin also. तो आज वो celebrate किया जा रहा है. आज कवियों का दिन है. वो भी आज
4: पोएट्री डे है क्या? आज
3: नहीं, पोएट्स डे है.
4: पोएट्स डे है,
3: कविताओं का दिन नहीं है, कवियों का दिन है.
4: ओके.
3: और आज अगर देखें कई लोग अपना बर्थडे जो है ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनमें शामिल है कनिका कपूर.
4: ओके.
3: इनके गाने तो भाई अलग लेवल के होते ही हैं. वरुण सोबती, आई जस्ट लव दिस एक्टर.
4: ओह, इज अमेजिंग. इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है. टेलीविजन से इन्होंने शुरुआत की, पॉपुलैरिटी हासिल की, मूव्ड इनटू मूवीज, कुडन्ट डू वेल इनटू मूवीज बाय द वे जब इन्होंने इनिशियली अपना स्विच किया था फ्रॉम टेलीविजन टू मूवीज. लेकिन बाद में चलकर ही गॉट हिज ड्यू क्रेडिट एंड द फैक्ट दैट इनको इनका जो अप्रिसिएशन है, रिकग्निशन है, कहीं ना कहीं तब जाकर मिला जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सीरीज एंड कंटेंट्स आने शुरू हुए.
3: आई थिंक मैंने मोना सिंह के साथ इनकी एक वेब सीरीज देखी है. I haven't completed it. ये पुलिस ऑफिसर का
4: किरदार. हाँ, उसका सीजन 2 है ये मोना सिंह के साथ. उसका सीजन 1 भी आया था.
3: हाँ.
4: Netflix पर ही है वो.
3: हाँ, I can't remember the name of the web
4: series. I can find it for you now.
3: तो आज वरुण सोबती अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्ट्रेस हैं एक सना खान, ये भी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. और एक और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शायद बहुत कम टाइम, आई डोंट नो अभी ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, लेकिन मैंने इनको वेरी ब्रीफली ही इंडस्ट्री में देखा. इनका नाम है भूमिका चावला.
4: ओके.
3: ये भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट.
4: भूमिका चावला इज क्वाइट एक्टिव इन द साउथ फिल्म इंडस्ट्री दीस डेज.
3: अच्छा, ओके.
4: सो वरुण सोबती का जो शो आप बोल रहे हो उसका नाम है कोहरा. हाँ, नेटफ्लिक्स पर है कोहरा. सीजन 1 सीजन 2 ये दोनों आ गया है एंड आप जरूर देख सकते हैं. अनदर शो दैट आई थिंक एवरीवन लव्ड ऑफ हिज वाज असुर, जिसमें ये थे. सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट जो भी आपको देखना हो. बट राइट नाउ आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं आज का हमारा पहला सवाल. आपको क्या करना है, हम आपको देंगे एक प्लॉट ऑफ अ मूवी, मतलब डिस्क्रिप्शन, और आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है. तो एक यंग गर्ल वुमन आप बोल लो जो यूएस के एक बहुत ही जाने माने शहर में अपनी लाइफ जो है ये बिताती है. इन द बिगिनिंग इट शोज लाइक शी इज़ गॉट अ परफेक्ट हैप्पी लाइफ, शी इज़ लिविंग ऑन हर ओन टर्म्स, और अनटिल यू नो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दैट रिवील्स की हर लाइफ इज़ नॉट सो परफेक्ट. देन कम्स दिस चार्मिंग न्यू नेबर जो उनकी पूरी लाइफ उथल पुथल कर देते हैं. और धीरे धीरे इनका ये जो नेबरहुड से फ्रेंडशिप से लव वाला सिचुएशन शुरू होता है. बट थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होते हैं इनके इस पर्टिकुलर सिनारियो में और दे कॉट अप

0: in a very complicated relationship जो कभी किसी ने शायद expect भी नहीं किया होगा. With a lot of love, laughter, family drama and unforgettable friendships. और एक ऐसा secret जिसने इन सभी की जिंदगी जो है ये बदल दी. This movie has been loved by everyone quite a lot. कौन सी फिल्म ये हो सकती है?
1: I have no
0: अगर
1: idea.
0: मैंने शहर का नाम बता दिया होता ना तो शायद और इजी हो जाता. बट आई थिंक आई हैव गिवन अ फ्यू वर्ड्स हियर एंड देयर जिससे कि आसानी हो सकती है इन आइडेंटिफाइंग कि कौन सी फिल्म है.
1: तो कोशिश आप कर सकते हैं सुबह सुबह आज इस फिल्म को आप आइडेंटिफाई करें. BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है.
0: लेट्स सी अगर आपने पता कर लिया है तो जवाब अभी भेज दीजिए और अगर थोड़ा डाउट है एंड यू वांट मोर टाइम तो एक बार फिर आपको बता दे. आज की जो हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे है इसकी कहानी ऐसी है कि एक यंग महिला है जो US में अपनी जिंदगी जो है ये दिखाती है. इन द बिगिनिंग इट सीम्स लाइक शी इज़ गॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ बट देन सर्टेन थिंग्स रिवील कि इनकी लाइफ उतनी भी हैप्पी नहीं है. एंड बाद में चलकर यू नो इनकी लाइफ में एक ऐसे नेबर आते हैं उस वेरी यंग न्यू यू नो चार्म के साथ और उसके बाद इनकी लाइफ पूरी उथल पुथल हो जाती है. दिस नेबरहुड और फिर फ्रेंडशिप एंड देन टर्न्स इनटू लव. अ थर्ड पर्सन फाइंड्स himself caught in the middle of this whole complicated relationship jo unhone kabhi expect bhi nahi kiya tha. Aur this particular movie is with a lot of laughter, family drama, unforgettable friendships aur ek aisa secret jo inki puri ki puri life jo hai ye badal deta hai aur use you know kafi काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है सीक्रेट की वजह से. तो कौन सी फिल्म ये हो सकती है? इफ यू थिंक यू नो द आंसर BF स्पेस आंसर ये नेम 5599 पर हमारे पास जरूर भेजे. एंड वी वुड लव टू सी आप में से कितने लोगों ने आज की हमारी बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे जो है ये पहचानी है. वैसे सनी आपने अपना जवाब भेजा, आपने कहा है कल सॉरी सनम तेरी कसम. सनम तेरी कसम इज नॉट द राइट आंसर सनी, आई एम सो सॉरी बट थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग.

0: और एक स्पेशल चाय.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
6: हेलो एवरीबॉडी.
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
8: Get up and Gold Coast.
9: Not too much sun, mainly cloudy today with a high of 16 degrees. Into the city, starting to slow a touch on motorways, but pretty quick everywhere. Southern 23 minutes, Manukau to town. Building south of Manukau, slow at Manurewa. We're fine on the southwestern and quick to the airport. Fog doesn't look like it's delaying flights. Northwestern 17 in from Massey, just a bit of traffic close to the city. Northern 18 from Constellation, we're fine.
8: Trade the winter chill for Gold Coast sunshine with great low fares at jetstar.com.
10: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते.
3: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा.
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना.
3: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना. दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन.
14: Knock knock, it's me Dash, helping rugby fans get ready early for game day. Get your official Adidas All Blacks supporters gear on DoorDash, and you could win an epic All Blacks watch party delivered by rugby legends. Adidas on DoorDash. Now that's a good call. T's and C's apply.
15: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
16: हाँ, अच्छा
15: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं.
16: Mrs. Singh.
17: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
18: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
19: हम ये 9 मिनट रह गए हैं सात बजे में. सात पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट. अगले घंटे आपके लिए न्यूज़ हेडलाइंस हम लेकर आएंगे. आपको अ वेरी हैप्पी बर्थडे भी विश करना है. मैसेजेस अगर नहीं भेजे, स्टिल गॉट सम टाइम टू डू सो. और वक्त रहा तो अगले घंटे आपको बताएंगे कि जो आइफल टावर है उसकी हाइट सब दिन एक बराबर नहीं रहती.
6: मतलब I thought if the building is like you know made, a structure is made, तो एक ही हाइट पे तो रहेगी.
19: नहीं,
6: उसमें ऐड होता है क्या?
19: आई डोंट नो.
6: तो हाइट कैसे एक बराबर नहीं रहती?
19: इतना मैं अभी बता सकता हूँ. अगर आगे का आपको जानना है तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा.
6: ओके, सो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द स्टोरी इन रिगार्ड्स विद दिस. क्यों आइफल टावर की जो हाइट है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती. बट ऑन द अदर हैंड, हमने जो सवाल पूछा था आज तो हद ही हो गई. मैंने कहीं ना कहीं यू नो बातें करते करते जवाब ही दे दिया. बट नेवरदलेस आज कुछ गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं. गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार, आई एम विजय पूजा एंड ऑल लिसनर्स ऑफ हम. Have a happy day from Ravnesh Mudliar. Thank you so much Ravnesh ji, aapke message ke liye. Good morning all. Have a blessed day. Dheer ne kaha hai. साथ में प्रिसिलिया ने अपना आंसर भेजा है. रोनल्ड है, सिमरन है, विशाल है, सभी ने आंसर्स भेजे हैं. सनी का हमने बताया था ना पहले, इन्होंने गलत आंसर भेजा था.
19: हाँ, भजन है, साथ में तन्हा है, एडन है, अविनेश पापाकुरस से. थैंक यू सो मच आपके आंसर के लिए.
6: और उसके साथ साथ कुशाल आपका भी मैसेज हमें मिला है. हर मिला आप वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर टू. तो इधर हम आपको बता दें कि आज का हमारा बॉलीवुड मूवी ऑफ द डे वॉज कल हो ना हो. और जितने लोगों ने हमारे पास ये जवाब भेजा, एब्सोल्युटली करेक्ट. इनिशियली आपको पता नहीं चला कौन सी फिल्म है ये.
19: मुझे तो अभी भी पता नहीं. अश्मित है सनी वेल से, इन्होंने भी अपना आंसर भेजा था. थैंक यू सो मच.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: Accurate traffic.
3: Flicks even. You're skipping a bag.
4: A high of 16, a little sun, mostly cloudy all day today. Into the city, Northern Motorway flowing pretty well. Just building a little bit of constellation in Esmond. 18 minutes Constellation Drive to the city. Northwestern, a quick 20 minutes in from Massey. A little heavy at Grey Lynn and slow to the CBD from there, but otherwise fine. Southern 23 in from Monaco. Slow patches here and there, but a quick drive most of the way in.
3: Visit flexibin.co.nz for stockists, TCs and collection areas.
5: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
6: Skinny will do anything to keep prices low and customers happy. Switch to Skinny and get $30 credit on all four weekly plans, $27 and above. $30 credit available to new customers only. In September 4th, T's and C's apply.
7: Get the Skinny!
8: When life becomes overwhelming, you don't have to face it alone. For over 28 years, Asian Family Services has supported Asian communities across New Zealand, offering mental health, addiction, gambling, and social support by professionals who understand your language and culture. Now launching Reach In, Reach Out, a national campaign to encourage open conversations about mental health, because a simple conversation can make a real difference. Call Asian Helpline 0800 862 342 or visit asianfamilieservices.nz for free and confidential mental health support.
9: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
10: At Bunnings, we've got Father's Day sorted. Jumbuck 3-piece barbecue tool set, only $10.20. Trojan 33-piece keyring compact toolkit, just $45.98. Make Dad's Day at Bunnings.
11: Bunnings Warehouse.
10: Lowest prices are just the beginning.
0: Home. Time check.
12: Good morning, it's Samantik Sadbajre here.
0: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 7. A study suggests stable public housing can help keep young people away from crime. Otago University found residents of more than 10 years had significantly fewer interactions with the justice sector. Lead researcher Chang Wai-Yu says that's despite socioeconomic disadvantages.
14: If parents, they have no housing concerns, they have more time with the family, with their kids, so it will build up the parent-kids relationship.
13: Court documents reveal the man who was shot dead by police at Auckland's Sylvia Park had an extensive criminal history. As RNZ reports, 33-year-old Hapai Otini was earlier warned by a judge there was no future in his offending. A 30-year plan to bolster Auckland's motorway network has been described as pragmatic. The transport agency sets out a three-part plan to tackle future challenges. AA Policy Director Martin Glynn says it includes a lot of smaller projects.
15: Managing the motorway networking, sort of maintaining as much performance as possible while the city continues to grow, because there's no plan for extensive expansion.
13: And from car salesman to prince, a 26-year-old in Belgium has just become legally recognised as royalty. He's the once secret son and heir of Prince Laurent. In sport, Fabian Holland and Josh Lord start at lock for the All Blacks in Sunday's test against the Springboks at Ellis Park. In form, Lewis Fords, Anton Signer and Peter Larkai are on the bench. Damien McKenzie's over an ankle injury at fullback. And Northland have won the Ranfurly Shield for the first time since 1978. Captain Rivers Rehana is emotional on Sky Sport after upsetting Canterbury 36-12.
16: We wanted to inspire the next generation, and the only way that we were going to do that was to bring back the Shield, so hopefully we've done that.
13: That's rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: जनरली आज ठीक ठाक मौसम ऑकलैंड में रहने वाला है. अभी जो टेम्परेचर है आप 7 डिग्रीज फील कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 8. आज का है 16, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज और सनराइज हो चुका है, सनसेट 5:53 PM पर होगा.
0: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Morning Madness.
12: 3 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर. गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. अगर इसी घंटे आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए आप हमें सुन रहे हैं फिलहाल ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत इस बार हम कर रहे हैं.
2: इस घंटे भी तमाम चीजों के बारे में बातें जो है ये होने वाली है. बस आपको हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहना है ताकि ये डिटेल्स हम आपको दे सके. सबसे पहले आइए एक स्टोरी जो है ये मैं आपको सुनाता हूँ. ये एक जर्नलिस्ट और एक डेयरी फार्मा की स्टोरी है.
12: okay.
2: आपने सुनी इनकी कहानी?
12: नहीं.
2: तो ये जर्नलिस्ट जो है इस डेयरी फार्मा को अवार्ड जो है ये मिला था.
12: okay.
2: अवार्ड मिला और जर्नलिस्ट उसका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचा. तो वहां पर क्या बोलते हैं जहां पर शेड था गाय का, उसी के बाहर और शेड में 2 गाय थी. और तो जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू शुरू किया और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि ये आपकी गाय एक दिन में कितना दूध देती है.
12: okay.
2: तो किसान ने पूछा ये काली वाली या सफेद वाली.
12: हाँ.
2: तो जर्नलिस्ट ने कहा ये काली वाली. तो उसने कहा 2 लीटर. बस स्टोरी एंड हो गया. तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन देखकर
12: ये काली वाली और सफेद वाली जो आपने बोला तो उससे मुझे याद है, मैंने ये स्टोरी सुनी है इंटरव्यू के बारे में, मुझे पता है.
2: जब मैंने पूछा
12: तो उस टाइम पे आई थॉट इट वाज अ सीरियस थिंग. ना इट्स नॉट अ सीरियस थिंग जो आप अभी बता रहे हो, हरगिज ही सीरियस नहीं है. बट जब आपने बोला तो मुझे लगा सच में, लाइक द वे यू एक्चुअली पूरा माहौल आपने बनाया तो ऐसा लगा कि सच में कोई कहानी है.
2: मैंने डायरेक्टली पूछा
12: कि आज आप कोई कहानी बताते हैं एक जर्नलिस्ट की और एक किसान की एंड इंटरव्यू करने गया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये सच में अलग ऐसी होगी. बट यू कैन कंटिन्यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि मुझे पता
2: है. मजा नहीं आएगा अभी.
12: अच्छा चलो कोई नहीं. अच्छा चलो मैं एक चीज पूछती आपसे.
2: हाँ पूछो पूछो.
12: क्या आपको याद है कि आपकी लाइफ का वो सबसे हैप्पी मोमेंट, सबसे हैप्पी दिन कौन सा दिन था? When was it when you were the happiest? And you can say कि yes, this was the happiest day of my life.
2: It changes ना from time to time. Every day is a happy day.
12: आपसे तो सवाल पूछना ही बेकार है.
2: I should have been a politician.
12: So diplomatic you are. नहीं ये इसलिए मैं पूछ रही थी बिकॉज आई रेड समथिंग सो ब्यूटिफुल जस्ट अ व्हाइल अगो एंड आई फेल्ट लाइक कि दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो इमोशनल. आई नो कि फ्राइडे को हम थोड़ा ऐसे हैप्पी वाइब में होते हैं, यू नो, हंसी मजाक करते हैं, बट कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके बारे में बातें करनी चाहिए. एंड दिस इज समथिंग जो मैंने पढ़ा कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे कौन सा था तो प्रोबेबली यू वुडंट रिमेंबर इट. एंड इट इज़ क्योंकि वो कोई शादी का दिन, कोई वेकेशन या कोई लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट नहीं था आपके लिए. मे बी इट वॉज अ कम्प्लीटली ऑर्डिनरी डे. गुड फूड, समवन यू लव्ड अक्रॉस द टेबल, नथिंग जो आपका अटेंशन डिमांड करता हो, नथिंग दैट नीडेड टू बी फिक्स एंड नो वेयर दैट यू नीडेड टू रश. जस्ट अ क्वाइट फीलिंग दैट फॉर वंस कुछ भी मिसिंग नहीं है,
2: सब कुछ ठीक ठाक है.
12: सब कुछ ठीक ठाक है. यू नो सम ऑफ द बेस्ट डेज जो है ये हमें तब तक स्पेशल नहीं फील होते कि इतना बेस्ट दिन था आज हमारा, जब तक कि वो दिन चला नहीं जाता. बिकॉज व्हेन वी सिट एंड इवेलुएट एंड थिंक अबाउट दैट डे देन वी रियलाइज कि यार ये तो बहुत बढ़िया दिन था. सो कभी कभी टू मेक दैट पर्टिकुलर डे सो स्पेशल एंड सो हैप्पी फॉर यू, जरूरी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ हो.
2: जी
12: आपको शायद न्यूजीलैंड में रेसिडेंसी मिली, यू माइट नॉट हैव बीन द हैप्पीएस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे. आपको शायद अपना पहला घर लेने का मौका मिला, वो शायद आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी डे नहीं था. एक ऐसा दिन था जहां पर यू अचीव्ड समथिंग बिग. आपके यू नो लाइफ में कुछ एक बहुत ही बड़ा सा चेंज आया, यू गॉट मैरिड, यू गॉट एंगेज्ड, यू गॉट प्रमोटेड, यू गॉट योर ड्रीम जॉब, वो शायद आपकी लाइफ का सबसे हैप्पी डे नहीं था. क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि जेन्युइनली वो कौन सा दिन था जब आप सबसे खुश थे अपनी लाइफ में, तो शायद आप उस दिन के बारे में बता भी ना पाए क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा.
2: क्योंकि अलग अलग दिन होता है, अलग अलग दिन आप खुश होते हैं, अलग अलग चीजों को लेकर खुश होते हैं, उस समय पर फील करते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट खुशी ऑफ माई लाइफ. बट
12: समटाइम्स जो सिंपल चीजें होती है, जिस किसी दिन सब कुछ अच्छा हो जाए, लाइक जहां पर आप जागे टाइम पर, आप नौकरी पर टाइम पे पहुंच गए, नो ट्रैफिक, नो वन सेड एनीथिंग बैड टू यू, नो वन इंसल्टेड यू, एवरीवन वाज स्माइलिंग एट यू, यू हैड अ गुड लंच, काम का समय पर फिनिश किया, घर पर समय पर पहुंच गए, दैट इज लाइक अ वेरी हैप्पी डे फॉर यू. यू डोंट इवन रियलाइज इट अंटिल वो दिन आप इवेल्युएट करते हो, यू नो. तो ऐसा भी होता है कभी कभी, कुछ सिंपल चीजें होती है, कुछ ऐसे पल होते हैं जो ग्रैंड ना हो पर फिर भी सबसे स्पेशल होते हैं. तो चलिए इन्हीं बातों के साथ इस घंटे की शुरुआत, 8 मिनट हो रहे हैं 7:00 मॉर्निंग मैडनेस में. थोड़ी देर बाद आपको हम विश करेंगे वेरी हैप्पी बर्थडे. आज है 21st of August, सो अगर आपका बर्थडे है डू लेट अस नो 5599 पर मैसेज करते हुए.

0: राशि वाइब्स।
1: कैसा होगा आज का आपका दिन? सबसे पहले आज मेष यानी एरिस, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती है। बिजनेसमैन हैं तो अपने प्रायोरिटीज के मुताबिक अपने काम को निपटाएं। आज इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें। इस बात का ख्याल रखें कि पार्टनर्स के साथ डील करते समय मन में किसी तरह का अहंकार आज बिल्कुल ना आने दें।
2: और उसके बाद आज वैसे बताया जा रहा है वृषणि टोरस के लिए कि आज आपके जो टैलेंट है, आपका जो कैपेबिलिटी है, इसे ज़रूर पहचाना जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा एंड इट विल कम इनटू नोटिस, जिसके बाद चलकर काफ़ी चीज़ें आपके लिए प्रोफेशनली बदल सकती है। वैसे ये भी बताया जा रहा है कि वे एवर मनी इज़ इन्वॉल्व टुडे, आपको बहुत सोच समझ कर वो काम करना होगा।
1: और फिर मिथुन यानी जेमिनी, आज सही तरह से बातचीत जो है ये सभी से करें, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा और आपका इनकम आज ठीक ठाक ही रहेगा और एक्सरसाइज करके अपना फिटनेस जो है ये बनाए रखें।
2: करके ने कैंसर आपके लिए कहा गया है, जहां नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो कलीग्स इनके साथ किसी भी तरह की बहस में ना पड़े, इससे आज दूर रहे। और साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि घरेलू मुद्दों को लेकर आपके जो जीवन साथी हैं इनके साथ आपका कुछ रिलेशनशिप आज थोड़ा टेंस रहेगा। आज सिर दर्द से बचने की पूरी कोशिश करें क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है।
1: और उसके बाद सिंह यानी लियो, आज काम का प्रेशर काफी ज्यादा होगा, यू नीड टू स्टे फोकस्ड। और आज बिजनेस मामलों में इनकम एक्सपेंडिचर जो है इस पर थोड़ा ध्यान दे। लाइफ पार्टनर के साथ अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो बातचीत से ही मसला जो है ये सुलझेगा, इस बात का ख्याल रखें। मेहनत आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी।
2: वैसे आज कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा जा रहा है कि परिवार में जो सदस्य हैं आपके, इनकी जरूरतों पर आप जरूर ध्यान देंगे, पैसे काफी खर्च होंगे इन मामलों में। साथ में आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज आपका काम जो है, प्रोफेशनल लाइफ की बातें हम कर रहे हैं, इसमें एक धीमी गति जो है ये आप देखेंगे, मतलब आप ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ें सर्टेन टाइम पे करने की, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा, इट वॉन्ट गेट कम्प्लीटेड इंस्टेंटली और एट द टाइम यू एक्सपेक्टेड इट टू बी। और आपके लिए ये भी बताया गया है कि आज का दिन आपको पेशेंस से काम लेना है।
1: तुला यानी लिब्रा, ऑफिस में आज कोलीग्स की बातों का गलत मतलब ना निकालें, वरना रिश्ते खराब हो सकते हैं। कोई भी डील हो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से आप करें, और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से या फिर बेकार में शक करने से रिश्तों में खटास आ सकती है।
2: और आज वृश्चिक ने स्कॉर्पियो के लिए कहा गया है कि काम में सावधानी रखें, छोटी सी चूक आपके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। रिस्क जो है ये आज शायद आप ना ही ले, आपके लिए अच्छा होगा। फालतू की खर्चों से बचे, अदरवाइज भविष्य में चलकर फाइनेंशियली यू विल बी स्ट्रगलिंग अलॉट।
1: धनु यानी सेजिटेरियस, ऑफिस में तो दिन आज आपका काफ़ी अच्छा रहेगा और बिना प्लान के अगर बिजनेस में कोई काम करते हैं तो इससे आपको कुछ देरी हो सकती है, और अनचाहे एक्सपेंसेस पर थोड़ा कंट्रोल बनाकर रखें।
2: आज मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए कहा गया है, काफ़ी इमोशनल फील करेंगे आप, बातचीत के मामले में हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी आप कह पाए जो आप अपने दिल में इतने दिनों से दबाए बैठे थे। इमोशंस विल बी हाई टुडे फॉर यू। और दूसरी ओर आपके लिए ये भी बताया जा रहा है कि पुराने कुछ बिजनेस रिलेटेड कनेक्शंस बने थे आपके, जिनसे आज आप को काफी फायदा होगा, इन कॉन्टेक्ट्स को आप वापस से अप्रोच करेंगे फॉर समथिंग बेटर फॉर यू एंड इट विल वर्क आउट।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा और मुश्किल काम भी बड़ी आसानी से करेंगे। कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं बिजनेस में और आपसी विश्वास जो है ये मजबूत होगा, जिससे रिश्ते भी मजबूत होंगे। हेल्थ आज आपका बहुत बढ़िया होगा।
2: और फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आपका लव लाइफ जो है काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, यू बी शेयरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद योर बेटर हाफ। और दूसरी ओर आपके लिए ये भी कहा गया है कि बिजनेस आपका बढ़ेगा, यू विल गेट मोर क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स टुडे, जिसकी वजह से फ्यूचर में चलकर भी आपके बिजनेस को काफी फायदा होगा। सो ये थे आपके राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे। और याद भी आपको दिला दें कि हमारा हम बोर्डिंग कॉल अभी तक प्ले नहीं हुआ है, इट विल बी प्लेइंग नेक्स्ट आवर यानी कि 8 AM to 9 AM के बीच, तो आपको ध्यान से स्पेशल बोर्डिंग कॉल के लिए सुनना है। एंड एज सून एज यू हियर द बोर्डिंग कॉल,
1: तो आपको जाना पड़ेगा रोवा पर, और वहां जाकर आपको जो कोड लिखा होगा, जहां पर लिखा होगा एंटर कोड नाउ, बस वहां पर बोर्ड नाउ टाइप करके सबमिट करना होगा फॉर योर चांस टू going to the door jahan par 2 return air tickets to Vanuatu flying Solomon Islands jo hafte mein 4 baar Auckland se direct ab Vanuatu fly karte hain flysolomons.com aap visit kar sakte hain unke sath ye do logon ke liye return air tickets jeet sakte hain plus apni aur se hum $1000 spending money bhi de rahe hain
2: bilkul ye sab kuch aapka ho sakta hai par uske liye aapko special boarding call ke liye sunte hi rehna hai aur agar aapko chahiye link because you are not able to figure out ki rova par kahan par jaakar aapko ये बोर्ड नाउ कोड जो ये एंटर करना है तो बीसी लिखे यानी कि बोर्डिंग कॉल का शॉर्ट फॉर्म बीसी लिखकर 5599 पर आप सेंड कर दिए ऑटो रिप्लाई में लिंक मिल जाएगा एंड एज सून एज यू हियर द बोर्डिंग कॉल तो आपको बस उसी लिंक पर क्लिक करना है इट विल टेक यू स्ट्रेट टू दैट पेज जहां पर एंटर कोड नाउ जो है ये आपको दिखेगा बस वहीं पर बोर्ड नाउ आपको टाइप करते हुए सबमिट करना होगा
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
4: We gotta go. Are you ready?
5: Come and take a trip with me.
6: Your attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter board now to lock in your entry to win. Two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money. Vacation.
7: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
8: Let's go.
7: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. Mover, tools, bikes, ya fir sab kuch rakhne ke liye space chahiye? Find shed loads at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson. Garden or lifestyle sheds ki great range ke saath apna perfect storage solution sort kare. Aaj hi baat kijiye with the team at Mitre 10 Mega Westgate and Henderson.
9: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercenter, Cavendish Drive, Manukau.
10: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
11: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
12: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
13: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Celebrity Alarm.
2: So, ready for aaj ka Celebrity Alarm?
1: Yes, I'm looking forward to it today.
2: Let's see कि आज की हमारे जो celebrity इनकी आवाज कौन कौन पहचान पाते हैं and आपको बस एक छोटी सी चीज करनी है We'll play a short audio, you have to listen to it. और अगर आप इनकी आवाज पहचान जाए कि ये कौन शख्स है आपको पता चल जाए तो बस BF लिखकर इनका नाम लिखकर आपको हमारे पास 5599 पर सेंड करना होगा एंड here we go, आज की हमारी celebrity.
14: Social media scares me. Today they take a photograph of me at a funeral and while going from the funeral I'm crying so I'm wearing sunglasses. There are 50 50 photographers around me and one of them is saying, look at me. I'm crying, so I'm wearing sunglasses. Mm. This is not the bad part.
2: तो ये कौन हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? आपने इनकी आवाज पहचानी?
1: I think.
2: Sounds familiar?
1: Yeah.
2: पर नाम नहीं याद आ रहा.
1: एक नाम आ रहा है मन में but पता नहीं ना.
2: Okay, let's see. क्या आपके मन में जो नाम आ रहा है वो बाकियों के मन में भी आ रहा है? और अगर हाँ तो आपका जवाब उनके साथ मैच होगा. पर ये जानने के लिए कि if you guys are all on the same line, मैसेजेस हमारे पास जब आएंगे तो हम इवेलुएट करेंगे, क्योंकि अभी तक तो किसी ने भी गेस नहीं किया कि आज के हमारे सेलिब्रिटी कौन है सेलिब्रिटी अलार्म में. फॉर द लास्ट टाइम आपको हम सुना रहे हैं इनकी आवाज़. आज के हमारे सेलिब्रिटी अच्छे से सुनिए और फिर अगर इनकी आवाज़ आप पहचान जाए, BF लिखकर इनका नाम लिखकर अपने नाम के साथ आपको भेजना है 5599 पर.
14: सोशल मीडिया स्कैर्स मी. टुडे दे टेक अ फोटोग्राफ ऑफ मी एट अ फ्यूनरल एंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम द फ्यूनरल आई एम क्राइंग सो आई एम वेयरिंग सनग्लासेस. देयर आर 50 फोटोग्राफर्स अराउंड मी एंड वन ऑफ देम इज सेइंग लुक एट मी. आई एम क्राइंग सो आई एम wearing sunglasses. Mm. This is not the bad part.
0: Mm. Bollywood's most wanted.
8: Gundi ghad gao. Ya seedha andar aao.
15: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में ऑकलैंड में अगस्त 9 से 16 के बीच सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के कारण 177 लोग चार बड़े हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, जो पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा वीकली एडमिशन रेट है। पीएचएफ साइंस की डॉक्टर हेना कूपर के मुताबिक ये फ्लू पिछले सालों से ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बार इसके केसेस तेजी से बढ़े हैं, जिससे फ्रंटलाइन हेल्थ सर्विसेज पर दबाव काफी बढ़ गया है। ओनेराही में अकेले काम कर रहे 69 साल के एक अनुभवी आर्बोरिस्ट की स्टंप ग्राइंडर मशीन की चपेट में आने से फांगरे हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है। वोकसेफ की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये आशंका है कि उनकी लॉन्ग स्लीव्ड टॉप मशीन की कटा व्हील में फंस गई थी, जिससे उन्हें इमरजेंसी स्टॉप दबाने का मौका तक नहीं मिला। कंपनी डायरेक्टर ने उसे एक काफी कॉम्पिटेंट और सेफ्टी कॉन्शियस वोकर बताया है, जबकि कोरोना ने वोकसेफ के इस रिकॉन्स्ट्रक्शन को सबसे ज्यादा संभव कारण माना है। रेनफली शील्ड को बहुत सालों के बाद नॉर्थलैंड ने अपने नाम कर लिया है। कल एक मैच में नॉर्थलैंड की जीत कैंटरबरी के खिलाफ 36-12 से हुई। वैसे एनपीसी के एक मैच में आज रात 7 बजे होप्स पे मनुवातु से खेलेगा। कल दिन में 1 बजे टेस्मन और साउथलैंड का मैच खेला जाएगा। कल 5:35 PM पर नॉर्थ हार्बर ऑकलैंड को होस्ट करने वाला है। बे ऑफ प्लेंटी और तारानाकी का मैच कल 7:35 PM पर खेला जाएगा, जिसके बाद संडे को 2 मैचेस दिन में 2 बजे वाइकाटो वर्सेस काउंटीज मेनुकाउ और 5 बजे ओटागो और वेलिंगटन का मैच खेला जाएगा। ओएफसी चैंपियंस लीग का ग्रैंड फाइनल कल खेला जाएगा। यह मैच 3 बजे ऑकलैंड सिटी और सेंट्रल कोस्ट के बीच खेला जाएगा। एनआरएल के एक मैच में कल रात पेनरिथ पैंथर्स की जीत मेलबर्न स्टॉर्म के खिलाफ 22-14 से हुई। आज रात 8 बजे कैनबरा राइडर्स ब्रिस्बेन ब्रोंकोस को होस्ट करेगा। 10 बजे डॉल्फिन्स और ईल्स का मैच खेला जाएगा। कल 5 बजे नाइट्स और सी ईगल्स का मैच होगा, जबकि 7:30 PM पर रैबिटर्स वॉरियर्स को होस्ट करने वाला है। ऑल ब्लैक्स टीम में डेमियन मैकेंजी वापस शामिल हो गए हैं। टीम इसी रविवार की सुबह 3:10 पर पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका का सामना करेगी। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, देखो आ गए।
3: Your holiday boarding pass could be waiting.

0: Nuns and Roy's की ओर से ये मैसेज आया है. तो जमीरा हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हमारी पूरी हम टीम की ओर से और आपके इस स्पेशल लविंग फैमिली की ओर से भी.
1: सुरेश द्विवेदी जी हैं और यहांगा में आज आप अपना स्पेशल डे मार्क कर रहे हैं सुबह से ही. आपके जितने भी परिवार वाले हैं दूर और करीब से सभी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं हम सभी की ओर से भी. ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
0: आज हैप्पी 8th बर्थडे रियाना आपको विश करना चाहते हैं. रियाना सामी, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम डैड है रॉन सामी, मम्मी है रेणुका सामी, पार्टी है फिजी से और नाना नानी है, साथ में काका एंड काकी इन फैमिली ने भी आज आपको याद किया है. सो हमारी हम टीम की ओर से भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हम जरूर विश कर रहे हैं.
1: और आज साथ में जियाना चेट्टी ये भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपके मम्मी हैं जैश्विन, पापा हैं नरेंद्र और जितने भी फ्रेंड्स हैं फैमिली मेंबर्स हैं सभी आज आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं. हम सभी की ओर से भी आपको ये दिन बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो.
0: हैप्पी बर्थडे जियाना, मे गॉड ब्लेस यू. फिलहाल 20 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में 8 बजने में.
1: मॉर्निंग मैडनेस. अभी जवाब जो मैं देख रहा था मजा नहीं आया मेरे को उतना.
0: आपको मजा नहीं आया तो हम क्या करें अब.
1: श्वेता है साथ में, वीर है, श्वेता ने एक और कोशिश की है और साथ में सोनल गुप्ता है. इतने ही लोगों ने आज अटेम्प्ट किया.
0: तीन लोगों ने अटेम्प्ट किया है.
1: हाँ, बेसिकली 3 पीपल आउट ऑफ ऑल ऑफ यू ओनली 3 पीपल हैव अटेम्प्टेड.
0: सो प्रोबेबली
1: बहुत हार्ड
0: होगा या आई डोंट नो. मुझे तो लगा था कि आवाज काफी फेमिलियर है लोगों के लिए टू आइडेंटिफाई, स्पेशली अभी क्योंकि रिसेंटली इनका कुछ आया है, बहुत पॉपुलर चल रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं. और
1: अच्छा.
0: हाँ मतलब यू नो अभी राइट नाउ इनका नाम चल रहा है सभी जगह पर.
1: हाँ, थोड़े दिन पहले भी चला था.
0: हाँ हाँ चला था.
1: फॉर द गुड और द बैड.
0: गुड गुड.
1: अच्छा.
0: आज सुबह भी हमने एक चीज मेंशन की थी जिससे ये जुड़े हुए हैं. पिछले घंटे हमने बातें की थी एक चीज के बारे में. हाँ. वैसे तुमने काफी चीजों के बारे में बातें की थी बट देयर वाज वन पर्टिकुलर थिंग दैट वी हैड स्पोकन अबाउट लास्ट आवर, तो उससे ये एसोसिएटेड है.
1: हाँ, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज नहीं हुए.
0: अच्छा, इंटरेस्टिंग क्लूज क्या होते हैं? मैं जवाब बता दूं
1: जिससे पता चल सके, कुछ हिंट मिल सके.
0: ये एक्टर है एक.
1: अच्छा, ये एक हाँ, एक्टर है.
0: चलो मैंने एक डायरेक्ट क्लू दे दिया.
1: डायरेक्ट क्लू. अब आवाज आखिरी बार सुना दो आप.
0: चलो सुना देते हैं. बता दिया कि ये एक एक्टर है. अब इससे ज्यादा क्या ही बताए हम. अगर यू नो कुछ नहीं तो सीधा नाम ही बता दे तो शायद यू नो इजी हो जाएगा. बट सोनल गुप्ता आपने कोशिश जो की, आपने कहा था आयुष्मान खुराना, वो नहीं है ये.
1: okay.
0: और वीर ने कहा था समय रायना, समय रायना भी नहीं है ये. लेकिन ये कौन हो सकते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा.
2: सोशल मीडिया स्केयर्स मी टुडे. दे टेक अ फोटोग्राफ ऑफ मी एट अ फ्यूनरल एंड व्हाइल गोइंग फ्रॉम द फ्यूनरल आई एम क्राइंग सो आई एम वेयरिंग सनग्लासेस. देयर आर 50 फोटोग्राफर्स अराउंड मी एंड वन ऑफ देम इज सेइंग लुक एट मी आई एम क्राइंग सो आई एम वेयरिंग सनग्लासेस. दिस इज नॉट द बैड.
0: तो ये कौन है? एक एक्टर है. और हमने कहा मतलब एक और एक क्लू मैंने ये दिया था कि आज सुबह भी हमने किसी चीज के बारे में बातें की थी जिससे एसोसिएटेड है, जिससे इनका नाम जुड़ा है. और अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ दैट काफी लोग इनके बारे में बातें भी कर रहे हैं.
1: तो अपना जवाब आप भेजिए. जब तक अगला गाना आप सुनेंगे तब तक का ही टाइम होगा. लेट्स सी आपसे कितने लोग इस एक्टर को पहचान पाते हैं. और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिनके बारे में थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे.
0: तो हमारे साथ ही रहिएगा और ऑफ कोर्स हमारे साथ बने रहते हुए आप बाकी चीजों का मजा तो उठा ही सकते हैं. बट याद दिला रहे वंस अगेन, अभी तक हमारा जो हम बोर्डिंग कॉल स्पेशल कॉल ये प्ले नहीं हुआ है. सो हियर आउट फॉर दैट. बट साथ ही साथ हमारा रक्षाबंधन प्रमोशन ये जारी है. इफ यू हैवन टेकन पार्ट इन आवर रक्षाबंधन प्रमोशन रहेगा बिकॉज एनी टाइम इसके लिए भी मौका हम आपको दे सकते हैं. सोशल मीडिया पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू विन $300 कैश, जिसके लिए एक छोटी सी चीज करनी है आपको. विजिट करना है हमारा फेसबुक पेज हम 104.2 FM विद द ब्लू टिक, दैट्स द वेरीफाइड पेज. और वहां पर फीचर्ड फोल्डर में आपको एक पोस्ट दिखेगा, अ लाइफ टाइम इन वन ऑब्जेक्ट. ये है पोस्ट जिसके कॉमेंट सेक्शन में आपको किसी एक ऑब्जेक्ट की फोटो जो है ये डालनी है. और ये जो ऑब्जेक्ट है हो सकता है आपके लिए बहुत स्पेशल मेमोरीज होल्ड करता हो. आप ये स्पेशल मेमोरीज अपने सिबलिंग के साथ शेयर करते हैं. उस ऑब्जेक्ट की फोटो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डालें और 2 या 3 सेंटेंसेस में हमें बताइए कि ये ऑब्जेक्ट आपके लिए स्पेशल क्यों है. साथ में अपने सिबलिंग को टैग कीजिए. वंस यू डू ऑल दीज 3 थिंग्स यू विल बी पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ, जहाँ पर आप $300 कैश जो है ये जीत सकते हैं ड्रॉ में शामिल होकर. एक और एक बात आपको याद दिला दें, कई लोगों के एंट्रीज जो है ये आई हैं फॉर दिस पर्टिकुलर रक्षाबंधन प्रमोशन ऑफ फेसबुक पेज. बट नॉट ऑल ऑफ यू हैव met the conditions of the

0: प्रमोशन. कुछ लोगों ने अलग तरीके से एंट्री ली है, कुछ लोगों ने सर्टन कंडीशंस नहीं मीट किए. बस तीन ही लोग हैं मेरे ख्याल से अभी तक जिन्होंने तीनों कंडीशंस को पूरा करते हुए इस प्रमोशन में हिस्सा लिया है, विच मीन्स सो फार ओनली 3 पीपल आर पार्ट ऑफ दिस ड्रॉ. सो इफ यू गॉट एनी ऑब्जेक्ट जो आपके भाई या बहन के साथ एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी शेयर करता हो, मेक श्योर डोंट जस्ट लेट इट गो टू वेस्ट. क्लिक अ फोटो, पोस्ट इट ऑन फेसबुक पेज इस कॉम्पिटिशन के कमेंट सेक्शन में, और ड्रॉ में शामिल होकर $300 जीतने का मौका है.
1: Let's go.
2: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
0: बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स लोग भेज रहे हैं. इतना डिफिकल्ट होगा मैंने सोचा नहीं था. किसी ने कहा है बाबिल खान, ये सही जवाब नहीं है. कुणाल खेमू दिवनेश आपने कहा है, राहुल पांडे का आया था आंसर इस बाबिल खान. ज्योतिका ने कहा रणवीर सिंह, ये सारे गलत आंसर्स हैं सारे के सारे.
1: ओके, तो बी एफ अपना आंसर और अपना नाम. जब तक ये गाना एंजॉय कर रहे हैं तब तक आप हमें भेज सकते हैं.

0: driving you home.
1: Drive Show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं है उसको.
3: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Ginny Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Accurate traffic.
5: Auckland, your ring starts here.
6: 16 hour high today, staying quite a cloudy one all day. Coming into the city, Southern Motorway, Manukau to the CBD, taking half an hour, 42 minutes, Drury to town. Slowing from Otahuhu, quite a slow on and off there to Rimuera. Southwestern clear, the northwestern, 22 minutes in from Massey, slow on the causeway, and then from St. Luke's. Northern, 20 from Constellation Drive, slow there to Milford and at Esmond.
5: Custom fine jewellery, direct from the maker. Visit diamondfactory.co.nz today.
1: Mola, tools, bikes, Yafir. सब कुछ रखने के लिए स्पेस चाहिए. फाइंड शेड लोड्स एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन. गार्डन और लाइफस्टाइल शेड्स की ग्रेट रेंज के साथ अपना परफेक्ट स्टोरेज सॉल्यूशन सॉर्ट करें. आज ही बात कीजिए विद द टीम एट माइटर 10 मेगा वेस्टगेट एंड हेंडरसन.
7: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Acoustic wall panels, 2 for $99. Round LED bathroom mirrors, 149. Outdoor heaters, just 129. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast, free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: Bunnings Trade is here to help trade customers with 134 Trade. Get quick quotes and pricing on a wide range of supplies, plus stock inquiries, delivery updates and more. Call 0800 134 872 or jump online and we'll help you get what you need fast. Bunnings Trade.
9: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Beds R Us Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
10: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: थ्रोबैक की बारी आई है. बट बिफोर द थ्रोबैक चलिए देखते हैं क्या हाल हुआ है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म का. मैसेजेस तो आए हैं, कुछ सही तो कुछ गलत आंसर्स अभी भी हमारे पास कुछ लोगों ने भेजे हैं. धीर ने अपना जवाब भेजा है, साथ में विशाल जेठवा ये किसी ने कहा है. और उसके अलावा रेशमा का आंसर आया है. थैंक यू सो मच यश. आपने आपने जवाब दिया. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम इज़ यश. आपने कहा है आपका नाम क्या है वो आपने नहीं लिखा है. बट थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए. वैसे देखा जाए आज शायद लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, बिकॉज ज़्यादा
11: तो था.
2: आज जितने मैसेजेस आए हमें उसमें से ज़्यादा गलत आंसर्स थे.
11: ओके
2: बस इफ़ आई कैन काउंट 1 and 2, साथ में देखा जाए 3 and 4, ओनली 4 पीपल गॉट द राइट आंसर. बाकी सभी ने गलत आंसर्स जो है ये दिए थे. द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने सही जवाब दिया वॉज श्वेता. और इनका जो जवाब था जो बेसिकली आज के हमारे सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी अलार्म में है सिद्धार्थ. सिद्धार्थ एक जाने माने एक्टर है, बट सिद्धार्थ सूर्य नारायण इनका पूरा नाम है. बट ही गोज बाय द नेम ऑफ सिद्धार्थ. इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्मों में काम किया है. बड़े कमाल के एक्टर हैं. पर अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बातें करें तो इन्होंने रंग दे बसंती इस फिल्म में काम किया. रंग दे बसंती में ये दिखे थे और इनको बहुत पसंद किया गया था इनके कैरेक्टर के लिए. करण सिंघानिया का रोल इन्होंने प्ले किया था. एंड देयर वाज अनदर मूवी ही हैड डन चश्मे बद्दूर. ये भी इन्होंने की थी।
0: अच्छा अच्छा के हाँ।
2: और मैं क्यों बोल रही थी कि इनके बारे में भी काफी बातें हो रही हैं, अभी काफी हिट है, काफी चल रहे हैं ये, बिकॉज ऑपरेशन सफेद सागर में ये स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के किरदार में दिखे हैं और काफी पसंद कर रहे हैं लोग इनको।
0: तो थैंक यू सो मच, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया भाई, मुझे अगर आप पूछा जाता तो मैं तो नहीं पहचान पाता।
2: इनके पास पहचानने में डिफिकल्टी होती है,
0: डिफिकल्टी मैं पहचान ही नहीं पाता, डिफिकल्टी की तो बात ही छोड़ दो।
2: हाँ, बट कुछ लोगों ने पहचाना जरूर, विच इज वाई वी हैड टू रिवील द आंसर टुडे। सिद्धार्थ सूर्य नारायण इनका पूरा नाम, बट ही गोज बाय द नेम ऑफ सिद्धार्थ इन द फिल्म इंडस्ट्री। आज के हमारे सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म। It's P on the track. Let's go.

0: accurate traffic.
1: Botany Toyota mid-year sale.
2: A lot of cloud today, very little sun, got a high of 16 degrees. Coming into the city, Southern Motorway, about half an hour Manukau to the CBD, maybe faster. Just got slow patches to the city from Otahuhu. Fine both ways on the southwestern. The northwestern flowing really well. Slow from Point Chev, 22 minutes in from Massey. And northern, 20 minutes in from Constellation Drive. Bit heavy there and slow to Milford. Slow again at Esmond.
1: Big savings in store on quality used and selected demo Toyotas. Visit Botany Toyota today.
3: Professional Financials hai saath aapke. Loan or insurance, ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
4: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
3: Business finance. Income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
4: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
5: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
6: 3, 2, 1, rush!
7: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewards rush.
8: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
9: Craving ho rahi hai. Us thick aur creamy dahi ki jaise ghar pe milti thi. To milwate hain aapko Kashish Natural Yogurt se. Jiska har spoon hai ekdam delightful. 100% vegetarian, gelatin and gluten free. Perfect hai smoothies banane ke liye, tangy dips banane ke liye, paneer ya chicken marinate karne ke liye. Ya bas seedha cup se khane ke liye. Kyunki ye hai naturally delicious. Always desi. Available now at your favorite Indian supermarket across New Zealand. Bring home the taste of tradition. Kashish Natural Yogurt.
10: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Morning, I'm Grace Cochran with the latest at 8. There are calls for a nationwide health risk assessment tool to be rolled out to help the sector battle rising flu cases. Services are stretched as the season peaks with a long tail expected. Professor Michael Baker says something similar to the COVID alert levels would be beneficial.
12: I mean, we have these tools we use for fire risk and also weather-related risk.
11: A new study highlights multiple benefits associated with stable public housing. Otago University found young people are less likely to commit crimes or become victims of one. Lead researcher Chang Wayu says it helps the vulnerable.
13: The protective factor of public housing is stronger for young people who have experienced childhood abuse.
11: Police are seeking witnesses to a violent armed robbery in Kaikoi. A woman and a child were seriously assaulted after a man with a firearm broke into a William Street property yesterday morning. A member of the public was also attacked when the offender tried to steal their car. However, officers intervened and took the 38-year-old into custody. A melting glacier has exposed the bodies of two hikers who went missing more than 3 decades ago on the Swiss Alps. In sport, it's a night to remember for Northland, securing the Ranfurly Shield for the first time in 48 years. Captain Rivers Reihana is proud of his team on Sky Sport after beating Canterbury 36-12 in Christchurch.
14: Canterbury are the top side for a reason, and we knew we had to bring our A game.
11: And Fabian Holland and Josh Lord start at lock for the All Blacks against the Springboks at Ellis Park on Sunday morning. Damien McKenzie's over an ankle injury at fullback with Josh Morby and Will Jordan on the wings. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
15: World's best, hamari good brands bhi hai.
10: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
16: Partly cloudy weather with isolated showers aaj honge aur sunrise maaf kijiyega sunset 5:33 PM par aaj rahega, jabki right now temperature to 9 degrees hai, high of 16, baad mein chalkar rahega, overnight temperature 9 degrees again rehne wala hai.
10: Breakfast show. Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
16: 3 minute ho rahe hain isme hamari studios mein 8 bajkar. Good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. Aapke liye hum lekar aa rahe hain aaj ka hamara Rush Hour ka ye program. Trend Patrol ki baatein kare, as in what's trending right now. Agar dekha jaye to aisi kaun si cheez hai jo trend kar rahi hai.
0: अभी कल ही इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने कुछ शेयर किया है जाकर
16: okay.
0: जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो आई वॉज अमेज्ड. और उनका जो आर्टिकल है उसमें लिखा अ न्यू स्मार्ट कैंसर ड्रग डिजाइन टू स्विच ऑन एंड वर्क ओनली इनसाइड कैंसर सेल्स.
16: ओके,
0: तो ये एक ड्रग है जो अगर आपको आपकी बॉडी में दिया जाएगा
16: हाँ?
0: वो तब तक एक्टिव नहीं होगा
16: जब तक कि वो कैंसर सेल्स के साथ कांटेक्ट में ना आए.
0: या देन ओनली इट टर्न्स ऑन. और वो इस तरह से काम करता है या वो सारे काम कर सकता है कि शायद फ्यूचर में चलकर आपको कीमोथेरेपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
16: इंटरेस्टिंग.
0: और कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसमें आर्टिकल में कहा गया है ऑफन डैमेजेस हेल्थी सेल्स अलोंग विद कैंसर सेल्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड एडवर्स इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स. और इसकी वजह से देयर हैज बीन नीड फॉर टारगेटेड थेरेपीज दैट रिमेन इनएक्टिव इन नॉर्मल टिश्यूज. और जब वो शरीर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरता है और तब तक वो एक्टिव ना हो ताकि अन्य पार्ट्स को कोई हानि ना हो. साइंटिस्ट हैव टेकन एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन मेकिंग दिस आइडिया अ रियलिटी. और इस रिसर्च को लीड किया है डॉक्टर आशीष बाला ने
16: ओके
0: जो हु इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि भारतीय सरकार का हिस्सा है साथ में डॉक्टर के पी भभक इन्होंने भी और इन्होंने एक स्मार्ट कैंसर ड्रग जो है ये डेवलप किया है जिसको नाम दिया गया है RK251.
16: ओके.
0: और अभी पूरी दुनिया में जहां जहां भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं.
16: वेरी नाइस. आई वुड से इट्स अ वेरी बिग स्टेप व्हेन इट कम्स टू मेडिकल साइंस. यू नो तरक्की करना एक बात होती है वही एक अचीवमेंट होता है एक सेलिब्रेशन होता है. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर क्रिएटिंग किस हिसाब से आप चीज़ें बना रहे हो या क्रिएट कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है ना. बिकॉज दोज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर. अभी इस मामले में देखा जाए तो डेफिनेटली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस पर्टिकुलर ड्रग जो है ये काम करेगा. एंड ऑन द अदर हैंड सेइंग कि कैंसर सेल्स के कॉन्टेक्ट पे आने पर ही एक्टिवेट होगा इज समथिंग वेरी यूनिक. इससे पहले शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ है. बट नेवरदलेस ऐसी और भी ट्रेंडिंग खबरें जो है ये आपके लिए डेफिनेटली हम पर हम लेकर आते रहेंगे. राइट नाउ न्यूजीलैंड में भी एक चीज़ है जो काफ़ी ट्रेंड कर रही है जिसके बारे में बातें हो रही है. नॉट श्योर आप तक ये खबर पहुंची है नहीं. अगर नए पहुंची है तो चलिए आपको बता दें बहुत ही जाने माने कमाल के रग्बी लेजेंड चोना लुमू जो है इनकी लाइफ पर आधारित एक फिल्म इसके बारे में हमने ब्रेकफास्ट शो में बातें की थी. एक बहुत ही कमाल की फिल्म जहाँ पर इनकी पूरी की पूरी जर्नी न्यूजीलैंड में इनका जो लाइफ रहा फिर उसके बाद में कैसे ये रग्बी जो है इसमें आए और इतना बड़ा नाम ये बने. एंड अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी बीमारी जो है इससे ये जूझे जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई एट अ वेरी यंग एज. बट इनकी कहानी जो है ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है. पीपल हु हैव बीन फॉलोइंग रग्बी हु आर अवेयर ऑफ रग्बी उनको इनकी कहानी पता होगी. वो ये नाम चोना लुमू से भी वाकिफ होंगे. पर अगर आप न्यूजीलैंड में रहते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट रग्बी लेजेंड्स न्यूजीलैंड के जो हैं इनके बारे में आपको नहीं पता इनके ओरिजिन्स के बारे में आपको नहीं पता तो आप ज़रूर ये फिल्म चेकआउट कर सकते हैं. पर कहा जा रहा है कि मैंगरी एंड ओटाहूहू लोकल बोर्ड जो है इन्होंने एक डिसीजन बनाया है टू कंट्रीब्यूट $10,000 टू द इवेंट आफ्टर डिबेटिंग विद अप्रूविंग फंडिंग आउटसाइड द यूजुअल ग्रांट प्रोसेस जो है ये होना चाहिए या नहीं जहां पर ये इस फिल्म को लेकर काफी बातें कर रहे हैं.
0: That's amazing. Jonah Lomu, not only an icon here in New Zealand, but globally, a very big celebrated
16: rugby
0: players.
16: Legend.
0: And their life is quite interesting. People were afraid of going in front of them. So it will be good to watch.
16: Yep. फिलहाल रश आवा की शुरुआत आप सभी के साथ जबकि हो रही है रिमाइंडिंग यू ऑल की आपके लिए लेकर आने वाले हैं आज का हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक. उम्मीद है कि इसके लिए आप तैयार हैं और आज अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है व्हाट्स योर टेक टॉपिक के लिए आप जरूर देंगे वंस यू फाइंड आउट व्हाट द टॉपिक इज.
0: प्लस डोंट फॉरगेट द बोर्डिंग कॉल
16: एनी टाइम प्ले हो सकता है. यस yes.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Don't mind, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
2: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी.
3: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना.
2: और गानों में

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर.
1: Jackie didn't think she needed a DVS system.
2: Our home is brand new.
1: Does your new home have condensation? And can it get a bit stuffy sometimes?
2: Yeah, it does.
1: New homes are built tight. They don't breathe very well. DVS can help with that. We have innovative ventilation solutions for all types of homes, new or not so new. Say yes to DVS for a drier, more comfortable home.
3: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: A safe night can change everything. That's why Contact donates the energy to power Women's Refuge. This winter, when you donate a safe night for someone seeking safety, we'll match it up to 5,000 nights. Donate now at safenight.nz.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery. Beautiful German Grow-A Basin Mixers 149, American Standard Toilet Suite 349, Luxury Clashish Wall Vanities 399. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. Tiny T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
7: मुझे भी
6: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton.
10: What's your take?
8: Hollywood's most wanted.
11: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
12: Main laau apna A game.
8: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
13: तो हमने कहा था कि आज का जो हमारा व्हाट्स इट एक टॉपिक है, इसे सुनने के बाद आप भी अपने कंट्रीब्यूशंस जो है ये कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक खबर जो है ये पढ़ी, एंड इट्स ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका इन इंडिया, जहाँ पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूल किया है कि द वर्ड होम मेकर इज जेंडर न्यूट्रल. इट कैन रेफर टू अ मैन और अ वुमन, इंक्लूडिंग समवन हु वर्क्स, अर्न्स अ वेज or is the family's breadwinner. ये observation जो है तब सामने आया जब एक शख्स है पंपला, इनकी एक केस की हीयरिंग जो ये चल रही थी 2018 में. इन्होंने अपील किया था over compensation for injuries suffered in a 2013 accident involving a rashly driven KSRT bus.
14: ठीक है.
13: और इसमें जो opposing argument था was very striking because जो claimant थे उन्होंने कहा that a postgraduate had worked as a lecturer, she could not be considered a homemaker. Someone जिन्होंने एक lecturer की काम lecturer का काम किया है और you know एक postgraduate है, वो homemaker कैसे हो सकती है?
14: हाँ.
13: तो ये एक दलील दी गई थी. Yes. तो High Court ने इस बात से disagree किया और कहा कि it said a woman does not have to be illiterate. और उनको 24/7 घर पर रहने की भी ज़रूरत नहीं है या एक्सक्लूसिवली डजंट नीड टू डू हाउस होल्ड वर्क टू बी कंसिडर्ड अ होम मेकर. ये जो कोर्ट है इन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि इनका जो होम मेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है इज़ डेफिनेटली एनहांस्ड और इसकी वजह से ही इनकी वजह से इनका घर जो ये चलता है, एंड दैट इज़ वाई उनको एक कॉम्पेंसेशन जो है ये दिया गया था ऑफ 1.96 लाख रुपीज़ विद 6% एनुअल इंटरेस्ट. बट जो रूलिंग है जो दिया जज ने, इसके बाद चलकर कई तरह के सवाल जो है ये ऑनलाइन होने शुरू हो गए हैं. और सवाल ये, व्हाई डिड वी एवर मेक होम मेकर साउंड लाइक अ वुमेन्स रोल इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों ये शब्द है होम मेकर इसको सिर्फ महिलाओं के साथ रिलेट किया गया?
14: मे बी शायद शुरू शुरू में
0: सिर्फ महिलाएं ही घर का काम करती ही होंगी।
13: हाँ, हो सकता है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बट इन दिस पर्टिकुलर केस पर द रूलिंग वाज, क्या आप इससे यू नो अग्री करते डिसएग्री करते हैं, आपकी राय इस मामले में क्या है? बिकॉज आई थिंक कि काफी अच्छी बात कही गई है कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो और वो घर पर रहकर घर का काम कर रहे हैं या घर की सारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो वो भी होम मेकर है, पर अगर कोई पढ़ा लिखा है और अपने घर का इकलौता कमाने वाला हो और यू नो बाहर भी जाकर काम कर रहा हो, घर की भी लुकावटा कर रहे हैं विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद अदर फैमिली मेम्बर्स, क्या इसका मतलब वो होम मेकर नहीं है?
0: They are.
13: Yeah, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, वट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड होम मेकर एंड वट डू यू थिंक वट एवर द रूलिंग हैज बीन डन इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी हमने आपको बताया है कर्नाटका के हाई कोर्ट द्वारा, क्या आप इस बात से सहमत है या असहमत है, ये आप हमें जरूर बता सकते हैं।
0: तो लाइन हम आपके लिए खोल रहे हैं 0800-004-866। बेसिकली जो पर्सेप्शन है वर्ड होम मेकर के साथ जो कि जनरली लेडीज को जोड़ा जा रहा था, ऑब्वियसली ओवर टाइम ये चेंज हुआ है, और कहाँ तक और इसे चेंज की ज़रूरत है, क्या इसे और चेंज की ज़रूरत है इन द फर्स्ट प्लेस, जो नज़रिया हम रखते हैं इसको लेकर, या फिर आई थिंक वेरी ब्रीफली हमने इसके बारे में पहले भी किसी एक दिन कुछ बातें की थी ऑन द शो, तो इट्स जस्ट बिल्डिंग अप ऑन टू दैट मोमेंटम। एंड अब आपके आपका मौका है, आपकी राय जो है ये बहुत अहमियत रखती है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं इसके बारे में।
13: बिल्कुल 0800-004-866 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर कॉल नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस तो आप हमारे पास मैसेज अपना जो है ये भेज सकते हैं। लेट अस नो द वर्ड होम मेकर, डू यू थिंक ये सिर्फ महिलाओं के साथ एसोसिएटेड रहना ज़रूरी है, या ये सिर्फ महिलाओं के लिए एक ऐसा शब्द बना है, या फिर होम मेकर जो है ये कौन होते हैं, समवन हु कैन नॉट गो आउट एंड वर्क, समवन जो सिर्फ अपने घर की देखभाल करते हो, घर का काम करना, यू नो घर की सारी जिम्मेदारियां जो है ये उठाना, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा जो बातें हम कर रहे हैं।
0: सिद्धि, इन दिस डे एंड एज ऐसा शायद खासतौर पर यू नो जहाँ पर न्यूजीलैंड जैसे देश की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहीं रहते हैं, यहाँ पर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू बी अ फुल टाइम यू नो घर पर रहकर घर का ही काम करना, इवन दो सम पीपल डू इट आउट ऑफ मजबूरी, या उनका उनका कुछ रीजन होगा कि वो बाहर अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, या फिर उन्हें शायद कुछ स्वास्थ्य लाभ की ज़रूरत है, सो दे स्टेइंग होम, और उसी दौरान घर का भी काम जो है ये देख रहे हैं, तो अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जनरली जब सब कुछ ठीक ठाक हो, आई थिंक यहाँ जैस यहाँ और भी कई कंट्रीज में, इवन इंडिया, फिजी, आप किसी भी पाकिस्तान कहीं भी देख लो, अभी के वक्त में लोगों का बाहर जाकर काम करना सभी का एक बराबर जरूरी हो गया है, और उसी तरह से उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है सभी का घर पर होम मेकिंग में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना।
13: एग्जैक्टली, तो व्हाट आर योर थॉट्स, डू लेट अस नो, जैसे कि हमने आपसे पूछा है, अभी तक तो खैर किसी का
0: 30 सेकंड्स का टाइम है,
13: हाँ, ना तो कॉल आया है ना तो मैसेज आया है, बट इफ यू गॉट एनीथिंग टू से अबाउट इट आप हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट कि ये जो व्हाट्स योर टेक टॉपिक है, हम तो इसके बारे में अगर चाहें तो बातें कर ही सकते हैं, बट वी लाइक टू हियर योर व्यूज टू ना, इसीलिए तो ये टॉपिक पे हम लाइंस ओपन करते हैं ताकि आपसे कॉन्वर्सेशन हो सके। हो सकता है ये टॉपिक शायद आपके लिए रिलेटेबल ना हो, हो सकता है यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट इफ देयर इज एनी थिंग जो आप इसके बारे में सोच रहे हैं एंड यू लाइक टू डिस्कस दैट इवन, डू लेट अस नो।
0: या तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगर आप कॉल करते हैं तो बढ़िया, या फिर टेक्स्ट भी कर सकते हैं 5599 पर।

0: अरिजीत सिंह की आवाज में और अमाल मलिक के संगीत पर आप सुन रहे थे आवारापन 2 से ये गाना जो आपके लिए आज हमने पेश किया ऑन बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड। फिलहाल आज हम आपके लिए व्हाट्सएप एक टॉपिक जो है ये लेकर आए जिस पर हम बातें कर रहे थे। एंड वी ऑलवेज फील गुड जब हमारे साथ कुछ ऐसे लिसनर्स जुड़ते हैं जो हमेशा सुनते हैं पर शायद यू नो कॉल नहीं कर पाते या टेक्स्ट नहीं कर पाते और ऐसा कोई लिसनर अगर हमारे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करे किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इट मेक्स अस फील वेरी हैप्पी। आज हमारे साथ सुबह सुबह हसनैन जुड़ चुके हैं जिन्होंने भी कॉल किया वाइल द सॉन्ग वाज प्लेइंग एंड इन्होंने कहा कि हमेशा सुनते हैं लेकिन आज पहली बार कॉल कर रही है हमें। सो हसनैन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप
1: जी? गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया, आप सुनाइए कैसी हैं?
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हसनैन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड आई बिलीव आज का जो व्हाट्स योर टेक है टॉपिक है उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, देखें होम मेकर का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। इनिशियली होता ये था कि जो औरतें घर पे रहती थीं और कुछ नहीं करती थीं उनको कहा जाता था दे वर हाउस वाइव्स। तो कुछ लोग कहते थे व्हाई हाउस वाइफ ओनली, दे डू अ लॉट ऑफ थिंग इन द हाउस और सारे घर के काम करती हैं और सब कुछ। तो उनको ऑनर देने के लिए तो कहा गया कि नो दे आर होम मेकर्स, दे मेक द होम, दे लुक आफ्टर द किड्स, दे डू द चोर्स ऑफ द हाउस एंड एवरीथिंग। तो उनको ऑनर देने के लिए ये एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई होम मेकर की। अब जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑल टुगेदर डिफरेंट कर दिया गया है। अब वो कहते हैं जी व्हाई दे आर कॉल्ड होम मेकर्स, क्योंकि होम मेकर तो जो बाहर भी रहता है वो भी हो सकता है। यस दैट्स राइट, दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड होम मेकर्स, बट द इनिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट सेइंग हाउसवाइफ एंड कॉलिंग देम होम मेकर वॉज टू गिव देम दैट ऑनर that they are doing chores of the house and they are making the home. So that is why they should be given that honor. So abhi isko jo hai na altogether ek different concept ke taur pe liya jane laga hai, not realizing why they were initially started to call homemakers.
0: Right. Thank you so much for sharing that. Aapne hamare saath jo apni raaye share ki aur share kiya the whole concept about the word homemaker. Thank you so much for calling in, Hasnain. Bahut bahut shukriya. Ummeed hai ki aage bhi you know aapse baat ye zarur hongi aur aaj ke what's it topic ke liye. Thank you for your contribution. Have a nice day.
1: Thank you. You too, bye.
0: Bye bye. तो there you go. जैसे कि हमने कहा अगर आप चाहे तो हमारे पास टेक्स्ट भी कर सकते हैं if you got anything to share. By the way, before you move on, क्या आपको पता है कि एक नए रिसर्च में जो UK में किया गया है मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज इन समर इसका एक लिस्ट तैयार किया गया है।
2: okay.
0: और न्यूजीलैंड का एक शहर इस लिस्ट का हिस्सा बन चुका है, टॉप 10 का हिस्सा बन चुका है।
2: कौन सा शहर
0: वो मैं नहीं बताऊंगी, आप अनुमान लगाइए।
2: okay.
0: कि न्यूजीलैंड का वो कौन सा शहर है जो इस लिस्ट का हिस्सा बना है अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च डन फ्रॉम द UK द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज इन समर। और दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों का नाम इस लिस्ट का हिस्सा बना लेकिन न्यूजीलैंड का एक शहर टॉप 10 में आया है।
2: तो आप क्या करें, ये कौन सा शहर हो सकता है, आप BC लिखें अपना आंसर और अपना नाम और 5599 पर हमारे पास भेजें। BC लिखकर भेजेंगे तो बोर्डिंग कॉल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही बोर्डिंग कॉल अनाउंस हो उस लिंक पर आप क्लिक करें और जाकर जहां पर एंटर कोड नाउ होगा वहां बोर्ड नाउ लिखकर आप सबमिट कर दें। यू गोइंग टू द ड्रॉ टू विन 2 रिटेनियर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी। सो BC, उसके बाद न्यूजीलैंड का वो कौन सा शहर है जो इस लिस्ट में आया होगा मोस्ट अमेजिंग सिटीज इन समर, कौन सा शहर
0: मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी,
2: ओके मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज। तो BC आंसर और नाम ये 5599 पर भेजें।

0: think it would be Auckland. Why?
1: पता नहीं, मेरे मन में ही ऐसा आया.
0: अच्छा, अगर आपसे पूछे कि अकॉर्डिंग टू यू कौन सा वो शहर है न्यूजीलैंड का जो नंबर, यू नो, इस टॉप 10 लिस्ट में आया है किसी भी नंबर पर, वो कौन सा शहर रहेगा? व्हिच वन वुड यू से इज द करेक्ट आंसर?
1: सबसे खूबसूरत, आई हैवंट बीन टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस, सो.
0: अरे आप नाम बताओ ना शहर का, वो मत बताओ कहाँ गए कहाँ नहीं. इफ यू आर सेइंग ऑकलैंड इज नॉट यू नो पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, यू आर सेइंग इट फॉर अ रीजन, राइट? बिकॉज़ आई डोंट थिंक ऑकलैंड कुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल समर सिटीज इन न्यूजीलैंड.
1: आई एम नॉट सेइंग दैट.
0: नहीं, उससे भी ज्यादा सुंदर और शहर होंगे ये आप बोल रहे हो. या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो कौन सा शहर ना वो बताओ,
1: क्योंकि आई हैव बीन जहां भी मैं गया हूं, आई
0: वुड से क्राइस्टचर्च. उसके हिसाब से बताओ.
1: क्राइस्टचर्च.
0: क्राइस्टचर्च. ओके, सो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप गलत हो. Hmm. और जितने लोगों ने हमारे पास मैसेज किया वो सही है.
1: अच्छा,
0: सो दिस पर्टिकुलर रिसर्च जो है ये यूके में किया गया था, जहाँ पर 63 सिटीज जो है ग्लोबली ये इस लिस्ट का हिस्सा बनी. और एज आई सेड कि न्यूजीलैंड का ये जो शहर है ये टॉप 10 में आया. टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज जो है फॉर समर डेस्टिनेशन के लिए अगर कहा जाए. इस स्टडी में एनालाइज किया गया पार्टिसिपेंट्स के विजुअल अटेंशन को, ट्रैकिंग की वो कितना क्विकली नोटिस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इमेज, एंड हाउ लॉन्ग पीपल स्पेंड लुकिंग एट देम, और उस हिसाब से फिर जो रैंकिंग है ये की गई. सो देखा जाए तो नंबर 10 पोजिशन पर है यूनाइटेड स्टेट्स में लॉस एंजलिस, एल ए. नंबर 9 पर है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में.
1: ओके,
0: और देन उसके बाद कुछ और है जो कि मोंटेनेगो, यहाँ
1: मोंटेनेग्रो में है.
0: हाँ, मोंटेनेग्रो यहाँ में है. कियोटो जापान में, स्पेन में है पाल्मा डे मालार्को, और उसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में है ब्रिस्टल, बेल्जियम में है ब्रूस, ये फोर्थ पोजीशन पर है, और ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी, थर्ड पोजीशन पर है, और ग्रीस में है मेकोनोस, ये सेकंड पोजीशन पे है, जबकि कनाडा में जो एक विच इज़ नॉट बेसिकली अ शहर, शहर ये बताया गया है, आई वाज़ जस्ट रीडिंग समथिंग, दिस इज़ अपेरेंटली द फर्स्ट और द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी जिसको कहा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू समर, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज बानफ और बनाफ, आई डोंट नो हाउ यू से इट, BINFF.
1: ओके,
0: दैट्स द स्पेलिंग. हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस शहर का नाम नहीं सुना, सो नो आइडिया. सो या दैट्स द यू नो टॉप 10. कमाल की बात ये है कि क्वींसटाउन जो है इट नैरोली मिस्ड द टॉप 10, कमिंग इन टॉप 10, क्योंकि इट फिनिश्ड एट 11th, जबकि वेलिंगटन सिक्योर्ड द 13th प्लेस. क्राइस्टचर्च और बाकी कुछ शहर जो है न्यूजीलैंड में वो इस लिस्ट का हिस्सा भी नहीं है.
1: ओके,
0: या सो ऑकलैंड टॉप 10 सिटीज इन द वर्ल्ड, which are being considered as one of the most beautiful cities in the world by this research jo UK mein hua hai. Interesting, isn't it?
1: Yeah, very interesting. Kisne socha
0: tha ki Auckland rahega is list ka hissa. If you may ask me, I would say I really love the view in Wellington. Mujhe Wellington ka drive jo hai, as soon as you enter the Wellington city, सिटी से पहले, वेलिंगटन टेरिटरी में घुसने से पहले, द ड्राइव इज वेरी ब्यूटीफुल.
1: ओके,
0: सो या आई वुड से वेलिंगटन फॉर मी, जितना मैंने देखा है, जितना मुझे पता है. बट नेवरदलेस आप बताइए आपके हिसाब से क्या है, वी लीविंग दिस पर्टिकुलर लिस्ट असाइड.
1: आपके ख्याल से न्यूजीलैंड में समर में द बेस्ट प्लेस, बेस्ट सिटी कौन सा होता है?
0: वो आप हमें बताइए, और हमारे पास अपना जो आंसर है ये आप टेक्स्ट कर सकते हैं 5599 पर.
2: Let's go. From the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: You made it with Caboodle.
3: 16 hour high today, a little sun on a mostly cloudy day. Very quick motorways, northern just 20 minutes, Constellation Drive to town, 34 in from Silverdale, slow Constellation to Milford and a little bit around Esmond. Southern, 28 Monaco to the city, slow from Ellerslie, maybe a bit heavy until Remuera. 20 minutes on the northwestern from Massey to town, just slow here and there, pretty quick, and the southwestern all good.
2: Tradies, get the job done with Caboodle's quality, affordable and easy to install kitchens.
4: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Gold and Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewellery making charges. Saath hi, $2,000 ki har diamond aur precious gem jewellery purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more, to bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry, visit Malabar Gold and Diamonds at Botany Town Centre, Auckland.
5: This winter, with all the dreaded lurgies about, NZ Blood needs blood and plasma donors more than ever. So, if you're able to, get your blood buddies together and book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
6: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center Papatoi. Tickets serve $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoi or Shu Prasad, Kelston.
7: Harrington Living Manukau, home of everyday luxury. Electric recliner lounge suites from just 2,699. Harrington Living, luxury for less. Visit Harrington Living Manukau Supercentre, Cavendish Drive, Manukau.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsarras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
10: Ladies and gentlemen.
11: Got airplane tickets with your name on them.
10: This is the boarding call for Solomon Airlines flight number HUM 104.2 FM to Vanuatu. Boarding is now in progress. Yeah. Please proceed to Rova and enter board now.
9: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
8: Throwback.
12: Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
13: अभी बस थोड़ी ही देर में न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और 9 मिनट रह गए हैं अब 9 बजने में. अगले घंटे आपको बताएंगे हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी में क्या कुछ हो रहा है. बॉलीवुड की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है ये हाथ लगी है जो आपके लिए शायद काफ़ी स्पेशल हो, वो भी अगले घंटे आपको बताएंगे.
14: तो तैयार रहेगा हमारे साथ इसका हिस्सा बनने के लिए, मतलब जानकारियाँ जो है ये हासिल करने के लिए. फिलहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको याद दिला दें कि जबकि बोर्डिंग कॉल हमारा बच चुका है तो आपके पास टाइम है, आप जाकर यू नो एंटर कर सकते हैं कोड जिसके ज़रिए आप जीत सकते हैं 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु और $1,000 स्पेंडिंग मनी.
13: वनुआतु यहाँ से 3 घंटे में आप पहुँच जाएंगे ऑकलैंड से. तो अब सोलोमन एयरलाइंस हफ्ते में 4 बार डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है ये लेकर जाता है जिनके साथ आप जाएंगे, आप और आपका कोई बहुत ही खास होगा जो आपके साथ ट्रैवल करेंगे. और वनुआतु के लिए आपको हम $1,000 स्पेंडिंग मनी भी देंगे तो आपका सारा खर्चा जो है ये भी सॉर्टेड है. एंड इफ़ यू चेक NZ टू वनुआतु डॉलर्स जो है ये क्या आता है तो आपको बताएं कि कितने पैसे वनुआतु डॉलर्स में आपको मिलेंगे जो आप वहाँ पर स्पेंड कर सकेंगे. तो अगर $1,000 आपको मिलते हैं, तो 70,000 जो वनवातु का वातु है, वहां जो करेंसी यूज करते हैं वातु है, 70,000 वातुज आपको मिलेंगे.
14: वन कितना? 1,000
13: न्यूजीलैंड डॉलर्स. तो 70,000 न्यूज वनवातु के का जो करेंसी है ये आपको मिलेगा, जो आप आराम से वहां स्पेंड कर सकेंगे. बट ऑल यू गॉट टू डू इज
14: टेक पार्ट. लेट अस नो यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग दिस, बिकॉज जब तक आप पार्ट नहीं लोगे तो जीतने के चांसेस कहां से होंगे ना, होंगे ही नहीं. अभी ये सारे जो प्रमोशंस आपके लिए हम लेकर आते हैं, इफ दे जस्ट गो लाइक दिस It's missed opportunity. तो आप फिर बाद में सोचते ना कि अरे पार्ट ले लेते तो अच्छा होता था.
13: तो अगर आपको लिंक चाहिए, BC लिखकर 5599 पर जल्दी से भेजें, आप डायरेक्टली जाकर एंटर कर सकेंगे.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: तो आज वेदर याद रहे, थोड़ा क्लाउडी रहेगा, थोड़ा बारिश जो है ये होने की भी संभावना है. सनसेट तो 5:53 PM पर होगा आज. टेम्परेचर राइट नाउ 11.1 डिग्रीज है, हाई ऑफ 16 एक्सपेक्टेड है. बाद में ओवरनाइट टेम्परेचर 9 डिग्रीज रहेगा.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smunko, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
4: What's going on? Kya bakte ho?
5: Arre kehna kya chahte ho?
6: अभी क्या है कि क्या बकते हो में अलग अलग कहानियां हम आपकी खातिर हम पर लेकर आते रहते हैं और ये आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और हमने आज कहा था कि आपको बताएंगे आईफिल टावर के बारे में, रिमेम्बर
1: जी,
6: कि हमेशा वो 330 मीटर्स टोल नहीं रहता है. ये एक सॉलिड और अनचेंजिंग मॉन्यूमेंट की तरह दिखता है, लेकिन कहते हैं ऑन हॉट समर डे ये जो लैंडमार्क है, इट कैन बिकम स्लाइटली टोला.
1: अच्छा, वो कैसे?
6: और इसमें कोई नया सेक्शन ऐड नहीं किया जाता है. द चेंज कम्स फ्रॉम द आयन इटसेल्फ. जैसे टेम्परेचर ऊपर जाता है,
1: आयन एक्सपेंड होता है,
6: मेटल एक्सपेंड होता है, मेकिंग द टावर गेन अ फ्यू मिलीमीटर्स इन हाइट. और जब मौसम ठंड हो जाता है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट
1: हो जाता है. ओके, सो दैट्स हाउ आईफिल टावर का हाइट चेंज होता है. आई वाज थिंकिंग लाइक ऐसा कैसे पॉसिबल है, मतलब कोई एक्स्ट्रा लोहे थोड़ी ना जोड़ता होगा उसे लंबा करने के लिए, और फिर एक्स्ट्रा लोहे जो ये निकालता थोड़ी ना होगा. बट नेवरदलेस इंटरेस्टिंग है ना, कभी कभी हमें पता नहीं होता है ये सारी चीज़ें. हमने पूछा था कि आपके नज़र में वो कौन सा शहर है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ इन न्यूजीलैंड व्हेन इट कम्स टू समर.
6: रवि ने कहा है क्विंसटाउन.
1: अच्छा, जो लोग गए उनके लिए शायद इजी है टू आइडेंटिफाई ना. देयर इज़ वन प्लेस कॉल्ड नॉर्थलैंड, नॉर्थ आइलैंड में नॉर्थलैंड. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन देयर. मुझे वो जगह बहुत पसंद है, इट्स वेरी पीसफुल. छोटा सा शहर है और वहाँ पे द कल्चर इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, यू नो, और साथ में नेचर वेरी ब्यूटिफुल. वहाँ पे एक वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, सेंड्यून्स टाइप. लाइक देर इज अ लेक, और लेक के बिल्कुल सामने आपको सेंड्यून्स जो दिखेगा. इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस. और समा में ना सच में बहुत खूबसूरत लगता है. अगर आपने नहीं विजिट किया है तो आपको अगर मौका मिले नेक्स्ट कोई ट्रिप प्लान करने का, नहीं थिंकिंग लाइक न्यूजीलैंड में ऐसी कौन सी जगह है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है. इफ़ यू लिविंग ऑन नॉर्थ आइलैंड एंड करंटली आपका बजट नहीं है साउथ आइलैंड जाने का, क्योंकि ऐसा होता है ना, बजट थोड़ा हिल जाता है जब आप कभी कभी कुछ चीज़ें देखते हैं. इफ़ यू हैव टू गो इन अ सर्टन टाइम, वहाँ पे प्राइसेस जो है ज़्यादा होते हैं, टिकट ज़्यादा होते हैं एंड ऑल, तो आप नॉर्थ आइलैंड डिस्कवर कर सकते हैं. अरे नॉर्थ आइलैंड में नॉर्थलैंड डिस्कवर कर सकते हैं. इट्स नॉट अ वेरी बिग प्लेस, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने को. इट्स अ प्लेस वे यू कैन गो एक्सप्लोर नेचर एंड रिलैक्स, चिल कर सकते हैं.
6: So you can do that if you want. वैसे 0170 इन्होंने कहा कि इन्होंने बोर्डिंग कॉल तो सुना लेकिन नॉट द कोड, हेल्प प्लीज फर्स्ट टाइम.
1: ओके, सबसे पहले अगर आपने सुन लिया कि बोर्डिंग कॉल प्ले हुआ, गुड ऑन यू, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव आइडेंटिफाइड इट. दूसरी चीज हमने कहा था कि अगर आपको लिंक चाहिए कहां पर जाकर आपको कोड एंटर करना है, तो आप BC यानी कि बोर्डिंग कॉल इसका शॉर्ट फॉर्म लिखकर भेजें. अगर आपने BC लिखकर भेजा है, ऑटो रिप्लाई में एक लिंक आया होगा. अब आप क्या कीजिए, अपना वो मैसेज ओपन करें जो ऑटो रिप्लाई में आया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए. एंड वंस यू क्लिक ऑन द लिंक,
6: जो कॉम्पिटिशन पेज है खुल जाएगा, एक जगह पर आपको दिखेगा एंटर कोड नाउ. वहां पर बस आपको इतना करना है, बोर्ड नाउ, BORD नाउ, NOW टाइप करना है और सबमिट कर देना है. That's it. Simple as that. क्योंकि जब बोर्डिंग कॉल एयरपोर्ट पर आता है, what you do is you go and board the call. तो यहाँ पर बोर्डिंग कॉल आया है, you have to go and board the competition. जाकर ऑन बोर्ड चले जाएं, बस बोर्ड नाउ टाइप करें और सबमिट पर एंड हिट कर दें. यू बिकम पार्ट ऑफ द ड्रॉ, जहां पर 2 रिटेनियर टिकट्स टू वनवातु विद 70,000 वातुस ये आपको मिलेगा. 1,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स जो है ये आप आपको मिलेगा फॉर योर ट्रिप टू वनवातु. तो दो लोग आराम से जाकर, आई डोंट नो जितने भी दिन आपको वहाँ स्पेंड करने हैं, घूम फिर कर रिलैक्स करके वापस आ सकते हैं रिफ्रेश्ड एंड एनर्जाइज्ड एंड एट नो कॉस्ट. कोई खर्चा आपका नहीं, पैसे तो हम आपको दे रहे हैं, रिटेन एयर टिकट्स भी हमने आपको दे दिए. और बस आपको इतना ही करना है, यू नो देयर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यू लिसनिंग टू अस. आई थिंक फर्स्ट वीक में मोर देन 1000 पीपल इन्होंने कॉम्पिटिशन एंटर कर लिया है. और देखेंगे नेक्स्ट वीक, दूसरे वीक के बाद कितने लोग हैं जिन्होंने कॉम्पिटिशन को एंटर किया है. तो अगर आपको पता नहीं था कैसे आपको एंटर करना है, व्हाट यू गॉट टू डू राइट नाउ इज बी सी लिखे, बी और सी के बीच में कोई स्पेस मत दे, और 5599 पर हमारे पास भेज दें. और हमें अच्छा लगेगा अगर अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं वो भी लिख कर भेजें. इफ़ यू फील लाइक डूइंग दैट, इफ यू फील लाइक मेकिंग अस हैप्पी ऑन अ फ्राइडे, तो वो भी लिख कर.
1: इमोशनल ब्लैकमेल.
6: नहीं, इट्स नॉट ब्लैकमेल. आपको अच्छा नहीं लगेगा.
1: नहीं अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स.
6: नहीं अच्छा लगेगा,
1: मतलब अच्छा लगेगा, ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा.
6: तो मैं बस वही जो दिल की बात है वही बोल रहा हूँ. तो आप बीसी अपना नाम और कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं वो लिखकर भेज दें, और आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा, एक मैसेज आएगा हमारी ओर से.
1: हाँ.
6: उसमें वो लिंक होगा,
1: राइट,
6: कॉम्पिटिशन पेज का. बस उस पे उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा. इट्स दैट सिंपल.
1: बहुत आसान है. और अगर जैसे कि इन्होंने मैसेज किया कि ये पहली बार पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पर नहीं समझ पा रहे कि कहाँ पर कोड है, क्या कोड है, इन्होंने पूछा, हमने बताया, एंड अब इनके लिए इजी हो गया होगा टू टेक पार्ट. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट्स, थिंग्स आर नॉट क्लियर राइट नाउ, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, तो आप हमारे पास मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, एंड वीड लव टू हेल्प यू आउट अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग, ताकि आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सके और ड्रो में शामिल होकर इतना अमेजिंग प्राइज जो है ये जीत सके.
6: लेट्स सी आप में से कितने लोग हैं जो बी सी अपना नाम और कहां से आप हमें सुन रहे हैं, कम से कम ये लिख कर भेजते हैं. मिस्टर माटा माटा, इनको लगता है बहुत दया आई हमारे ऊपर, लेकिन आपने बी और सी के बीच में स्पेस
1: डाल दिया.
6: हाँ, वो स्पेस नहीं होना चाहिए वरना लिंक आपको नहीं मिलेगा. सो बी और सी के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, वो लिखकर 5599 पर भेजें.

0: 13 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर हमारे स्टूडियोज में इस बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक बड़ा ही खूबसूरत राखी सॉन्ग, क्योंकि अगले फ्राइडे यानी कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन जो है ये मनाया जाएगा। और आपको हमने पहले बताया है कि कैसे हमारे सोशल मीडिया पेज पर जाकर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेकर आप जीत सकते हैं $300। और दूसरी ओर हमारा जो ऑनियर कॉम्पिटिशन है इसमें भी पार्टिसिपेट करने का मौका है, जहाँ पर अपने सिबलिंग्स का परफॉर्मेंस रिव्यू करने का मौका आपको मिलेगा। एंड यू कैन टेल अस कि आपके भाई या बहन एक पर्टिकुलर मामले में कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू यू नो डूइंग समथिंग। जैसे हमने एक बार बोला था कीपिंग योर सीक्रेट्स, हाउ गुड और बैड योर सिबलिंग इज व्हेन इट कम्स टू कीपिंग सीक्रेट्स। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हम आपको देंगे जिस पर आप अपने सिबलिंग्स को राइट कर सकते हैं और बदले में ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं टू विन योर शेयर ऑफ $500। टोटल हम दे रहे हैं जिसमें से दो लोग जो है ये $250 ही जीत सकते हैं।
1: तो बस इतना ही आपको करना है और ड्रो जो है नेक्स्ट वीक फ्राइडे को होगा। जैसे ही हम आपको बताएं आपको कॉल करना होगा हमारे पास और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा।
0: राइट, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेटर दिस आवर तो होगी ही, बट ऑन द अदर हैंड अभी चलिए सुनते हैं आज का बड़ा ही खूबसूरत ये राखी सॉन्ग।

0: What's going on?
1: What's up? What's up, Auckland?
2: क्या हो रहा है हमारे आसपास कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं. लेकिन सबसे पहले मत भूले, कल रवितेश देव और उनकी टीम जो है ये रहेंगे स्टेज पर एट द वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोयोटो में, जब भजन जैम्स जो है ये आपके लिए होगा. प्रेजेंटेड बाय साउथ ऑकलैंड ड्राइविंग लिमिटेड एंड क्यूरेटेड बाय न्यूजीलैंड कल्चरल ट्रस्ट. ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम होने जा रहे हैं और ये गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी के सहायता तो होगा, जहां पर डिवोशनल म्यूजिक, फ्यूजन भजन और कीर्तन का मजा आप ले सकेंगे. और टिकट सिर्फ $30 है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है. और टिकट्स आप ले सकते हैं जेस फ्रेश मार्ट पापाटोयोटोए, वैली फ्रेश पापाटोयोटोए और शिव प्रसाद एंड सन्स कैल्स्टन से, या फिर ऑनलाइन टिकट्स इवेंट ब्राइट से आप ले सकते हैं. तो इसी या कल पहुंच जाए शाम 6:30-7 बजे से जो प्रोग्राम है ये शुरू हो जाएगा और आप भी भजन जेम्स लाइव में जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
3: और इसके अलावा आपको याद दिला दें कि जो न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन है, ये 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट करने जा रहे हैं. ये इसी वीकेंड रहेगा, कल 22nd एंड संडे 23rd ऑफ अगस्त को बेकन हेड स्काउट्स हॉल पर. यहाँ पर सभी प्लेयर्स जो है अलग अलग स्किल लेवल्स के आपको वेलकम किया जा रहा है टू पार्टिसिपेट. नॉट श्योर इफ इट्स वेरी लेट फॉर यू टू नाउ गेट रजिस्टर्ड एज अ प्लेयर, बट इफ़ यू नीड डिटेल्स आप कैरम एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है पंकज मोंगा, इनसे बातें कर सकते हैं 021-090-85067 पर. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो द इंटायर जर्नी ऑफ पंकज मोंगा कि कैसे उन्होंने यहाँ पर न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन की शुरुआत की, कैरम जैसा खेल जो है इसे आज भी जिंदा रखने के लिए, इसे आज भी रिलेटेबल रखने के लिए, व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस एंड ऑफ कोर्स द कॉमन मिथ्स अराउंड द पर्टिकुलर गेम, ये क्या कुछ जो है ये आप अगर समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप CB लिखकर 5599 पर ज़रूर भेज सकते हैं, क्योंकि सैंडी एंड रूसबेग गॉट अ चांस टू हैव अ चैट इन अनफिल्टर्ड विद द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा के साथ, जिन्होंने इन सारी बातों पर अपनी ओर से अपनी राय जो है ये शेयर की है.
2: और साथ में मत भूलें कि आज रात वैदिक सेंटर 32 ग्लासगो एफ पापाटोयोटोए में ऑकलैंड भक्ति सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं. ग्रैंड त्रिकोणा कीर्तन नाइट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अशोधन नायर, ऑकलैंड के नितिन गाउंडर और फिजी से आए हैं अश्विन कुमार अप्पा, इन तीनों को एक साथ आप स्टेज पर देख सकेंगे. लिमिटेड टिकट्स गेट्स पर भी आपके लिए अवेलेबल होंगे जो सिर्फ $20 में आप ले सकते हैं.

0: attention, please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open, and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win two return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 spending money.
1: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying four times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
2: Let's go.
1: Visit flysolomons.com. T's and C's apply. There's never been a better time to drive GWM at West City Auto Group. For a limited time, save $2,000 across the GWM Canon Ute range and $2,000 across the Havel SUV range. Plus, if you choose a GWM plug-in hybrid, you'll receive a complimentary home wall charger backed by a 7-year unlimited kilometer warranty. Visit West City Auto Group GWM in Westgate today or check out the latest offers at westcityautogroup.co.nz. Terms and conditions apply.
0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz
6: Dirt cheap, dirty thoughts, a dirty tackle. Sometimes you can get away with being dirty. Other times you need Dirtworks. Ride dirty, keep clean with Dirtworks eco-friendly bike cleaner for mountain bikes, dirt bikes and 4x4s. Check out dirtworks.co.nz for more info. That's works with an X.
7: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
8: सुनो, bills बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
9: हाँ, mortgage भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
10: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी. अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
9: पर डेवलपमेंट के पैसे?
10: आपको नहीं लगाने. NZPMI सब संभाल लेगा.
0: NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800-4-NZPMI.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
13: What's going on?
14: अभी समय की ओर देखें तो 22 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर और अब अपॉर्चुनिटी हम आपको देने जा रहे हैं टू पार्टिसिपेट रक्षाबंधन कंपटीशन में लाइंस हम खोल रहे हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0800-004866 पर बस आपका आपके बेसिकली 2 मिनट्स ही चाहिए होंगे और आपको हम एक टॉपिक जो है ये देंगे या पूछेंगे आपके भाई या बहन के बारे में किसी एक मामले में वो कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर उतना खास नहीं है जो भी आपको लगे वो आप बताएं और आपका नाम ड्रो में शामिल हो जाएगा
15: राइट और आप हमारे पास अपने व्यूज जो है ये शेयर करते हुए इस ड्रो का हिस्सा बन सकते हैं टू विन योर शेयर ऑफ $500 0800-004866 पर आपको कॉल करना है दिस इज अ कॉल इन कॉम्पिटिशन इसीलिए टेक्स्ट पे तो हम एंट्रीज नहीं ले पाएंगे कॉल कर आपको बातें करनी जरूरी है ताकि आपका नाम हम ड्रो में शामिल करें इतना क्रिएटिव, इतना कमाल का प्रमोशन है. एंड वी लव कि अगर आप भी अपने अपने यू नो इंटरेस्टिंग क्रिएटिव एंट्रीज जो है ये हमारे साथ कर सके. तो आई थिंक कल ही किसी के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी, आई थिंक मी कशिका एंड सैंडी वी वर टॉकिंग, आई हैड नो आइडिया दैट द ड्राइव शो हैड डन समथिंग लाइक दिस एंड आई फाउंड इट टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो कशिका जी सुन रही थी, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि रुजबे ने सैंडी की भाई को पहले कॉल करने की कोशिश की.
14: अच्छा.
15: आई थिंक रुजबे इज द ओनली चाइल्ड ना, तो उनका सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू तो हो ही नहीं सकता.
14: बच गया.
15: हाँ, बच गया. तो सैंडी के भाई को कॉल किया, उन्होंने आंसर नहीं किया. फिर उसकी बहन को कॉल किया, एल्डर सिस्टर को, सैंडी का सिबलिंग परफॉर्मेंस रिव्यू लेने के लिए.
14: He
15: wanted it from the brother because he thought कि शायद थोड़ा you know different type of review रहेगा. But Sandy had very rightly said कि जो भाई होते हैं ऐसे ही होते हैं, आपस में पर्सनल रिश्ता चाहे यू नो वो नोकझोंक वाला हो, बेइज्जती पे बेइज्जती, लाइक फन वे बेइज्जती, नॉट लाइक सीरियस वन, लेकिन किसी और के सामने ना दे विल बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट यू, दे विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, दे विल ऑलवेज शो द लव टुवर्ड्स यू. एंड बहनों का क्या आता है, तो उसकी बड़ी बहन ने उसका रिव्यू किया कि हाँ अच्छी है, लाइक मैंने सुना नहीं, मैंने मुझे बताया कि ऐसे से बोला कि हाँ अच्छी है, सही है, बस जब गुस्सा आती है तो हम सब इधर उधर चले जाते हैं, ऐसा बोला. तो वो एक रिव्यू उन्होंने दिया ना. एंड हमारे केस में तो आई डोंट नो, वी कैन ट्राई योर्स बट डोंट रियली नो कि रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं. और मेरा तो मैं ट्राई भी नहीं कर सकती, किसको कॉल करूँ मैं.
14: आप अपने भाई को कॉल कर सकती
15: हो. वो कहाँ फीजी में है अभी, वो कहाँ उठाएगा.
14: यहाँ भी है ना.
15: और वो ये वाला भाई है, चाहिए इसका तो पता नहीं.
14: यहाँ ये वाला भाई नहीं, यहाँ ये वाले भाई हैं.
15: हाँ, बहुत भाई है इधर, पर इनका पता नहीं ना क्या ही बोलेंगे, इसीलिए मेरे को नहीं करना इनसे कोई रिव्यू भी करवाना ही नहीं है. बट एनीवेज, इफ यू वांट टू डू अ सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू, बिकॉज इन रिटर्न हम आपको $500 योर शेयर जो है $500 का ये जीतने का मौका दे रहे हैं. यू हैव 40 seconds एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
14: 40 सेकंड्स के अंदर आपको कॉल करना है 0800-004866. इस नंबर पर कॉल करना है. बस हम कुछ पूछेंगे, अगर भाई हुए तो आपकी बहन के बारे में पूछेंगे, बहन हुई तो आपके भाई के बारे में कुछ पूछेंगे. बस आप एक दो मिनट में बताएंगे और आपका नाम इस ड्रो में शामिल हो जाएगा.
15: अच्छा, एक कॉल आया है, लेट्स सी. गुड मॉर्निंग. हम
14: गुड मॉर्निंग.
2: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा जी, कैसे हो.
15: बढ़िया जी, किनसे बात हो रही है. केवल तो नहीं है आप.
2: केवल ही हूँ मैं. हाँ जी.
15: अच्छा.
14: केवल ही सुन रहा होता है मैं.
15: यही सुन रहे होते हैं. बट इनके इनके लिए दो बार इनका नाम एंट्री ड्रॉ में चला गया.
14: ओके.
15: ही मस्ट हैव अ इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर, नो डाउट. बट आई एम लाइक कि ऑलरेडी इज पार्ट ऑफ द ड्रॉ ना.
14: अच्छा, स्टोरी पूछ लेते हैं.
15: हाँ, स्टोरी पूछ लेते हैं,
14: क्योंकि नाम तो इनका ड्रॉ में शामिल हो चुका है
15: जी.
14: ओके. तो केवल आप ये बताइए कि आपने कहा था आपकी तीन बहनें.
15: एक
2: नहीं भाई, मेरी एक,
14: वो एक है. हाँ, बस में वोल्वो ना
15: जी.
2: वोल्वो बस.
14: हाँ, वोल्वो बस में. आप हमें ये बताइए कि जब भी आपकी बहन जो है, मम्मी पापा अगर उन पर नाराज होते थे तो उनसे बचने के लिए कितना अच्छा नाटक करती थी या कितना बुरा नाटक करती थी, ड्रामा.
15: बच जाती थी कि नहीं बचती थी उस पे डिपेंड करता है.
2: वो बच जाती थी भाई, पर वो सारा इल्जाम मेरे पे डाल देती थी.
15: अच्छा.
14: अच्छा.
2: कि मैंने किया ये, मैं तो थी नहीं यहाँ पे.
15: हाँ.
2: किसने किया, मेरे को डांट रहे हो, मैं तो गलत टाइम पे आ गई.
15: गलत टाइम पे आ गई. अच्छा, वेरी नाइस. दैट्स लाइक द बेस्ट एक्सक्यूज. आपके बच्चे हैं वैसे केवल.
2: हाँ जी, मेरा एक बेबी है.
15: अच्छा, एक है अभी. हाँ. जिस दिन दो हो जाए कुल मिलाकर तब बताइएगा.
14: आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे इस तरह से परफॉर्मेंस रिव्यू में हिस्सा ले ना.
15: सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू में ये कॉल करते हैं. एंड अभी हमारे पास टाइम है पर किसी और को करना नहीं है. और मेरा ना गला दर्द करने लगा.
14: हाँ, ठीक है, चलो.
15: इट्स सो हार्ड. मेरी आवाज इतनी बदल गई है अभी कुछ हफ्तों से. मेरे लिए हाई पिच पर नई बातें.
14: थोड़ी देर चुप रहना सीखना पड़ेगा आपको ना.
15: भाई मैं अगर चुप हो गई तो फिर क्या होगा.
14: नहीं, यहाँ से बाहर.
15: हाँ, तो वही तो बोल रही हूँ, अगर मैं चुप हो गई तो क्या होगा.
14: कुछ नहीं, थोड़ी शांति मिल जाएगी सबको.
15: बहुत सी चीजें हो जाएंगी जो आप कर नहीं पाओगे.
14: बहुत सारे
15: Because I communicate is why things get easier for you.
14: बहुत सारे लोगों को शांति मिल जाएगी थोड़ी देर के लिए.
15: Anyways, तो अभी क्या है ना, एंट्रीज नहीं ले पाएंगे अब हम, क्योंकि और कॉल्स नहीं आ रहे. विल मूव ऑन नेक्स्ट शो में. अगर जब भी आपको मौका लगे तो जरूर अपनी एंट्री दीजिएगा टू पार्टिसिपेट इन रक्षाबंधन सिबलिंग्स परफॉर्मेंस रिव्यू.
16: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
17: गुंडी खड़गा
16: सीधा अंदर आऊं
17: मैं लाऊं अपना ए गेम
18: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: क्या बॉलीवुड का आप बताने वाले थे?
1: अरे बॉलीवुड का मैं बताने जा रहा हूँ कि गोलमाल 5 इट इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट.
0: रियली?
1: हाँ.
0: ओके, कौन कौन है इसमें?
1: बहुत सारे एक्टर्स हैं.
0: ओह, आई थिंक अक्षय भी है ना इस बार.
1: यस, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अरशद वारसी, कुणाल खेमू, तुषार कपूर, शर्मन जोशी.
0: राइट.
1: और इस फिल्म के बस दो ही गाने बाकी रह गए हैं शूट करने को, जो अगले कुछ महीनों में हो जाएंगे. और कहा जा रहा है कि काफी रिलैक्स्ड एटमोसफियर है सेट पर, और लोगों को पता है कि क्या होने जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस है. रोहित शेट्टी हैज अ यंग एंड हार्ड वर्किंग टीम ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं. असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो है ये भी बहुत कम बात करते हैं. दे फोकस मोर ऑन देयर वर्क. फ्रेंडली है विद द एक्टर्स बट ऑल्सो मेंटेन ए प्रोफेशनल डिस्टेंस.
0: राइट.
1: जो उन्होंने रोहित शेट्टी से सीखा है. और रोहित शेट्टी पिक्चर्स के एक प्रवक्ता ने बताया है कि वी हैव कम अक्रॉस स्पेकुलेशन रिगार्डिंग द रिलीज डेट ऑफ आवर फिल्म गोलमाल 5. इतना हम बताना चाहते हैं कि ये सारी जो रिपोर्टें आ रही हैं गलत है. हमारी पूरी टीम जो है इज फोकस्ड ऑन मेकिंग एन एंटरटेनिंग फिल्म फॉर ऑडियंस. और जैसे ही सही समय होगा हम खुद जो जानकारियां हैं ये रिवील करेंगे.
0: तो फिल्म जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुआ है. और ऐसी कोई रिवील हो रही है अगर आपके आसपास रिलीज डेट को लेकर, दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कंफर्म. इट कुडंट बी एक्यूरेट क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. बट गोलमाल सीरीज इज समथिंग दैट एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी होती है गोलमाल सीरीज से. सो लेट्स सी वंस ये रिलीज होती है कितना यू नो पसंद किया जाता है. आपका फेवरेट कौन सा रहा गोलमाल को लेकर?
1: गोलमाल को लेकर जिसमें तुषार कपूर, अजय देवगन, अरशद वारसी इन्होंने काम किया था.
0: अरे यही तो है कॉमन कॉमन है ये सब. हाँ. मेरे बट कौन सा वाला? गोलमाल, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3, गोलमाल अगेन, कौन सा?
1: कोई तो
0: भी गोलमाल
1: कोई तो होगा उसमें से. मुझे नहीं याद क्योंकि एक एक फिल्म की स्टोरी मुझे याद ही नहीं है कुछ ना.
0: सबसे पहला गोलमाल जो था
1: वो इसमें जिसमें पॉइंट करते अजय देवगन को गुस्सा आ जाता, वो वाला अच्छा था.
0: वो थ्री था. सो सबसे पहला गोलमाल वाज जिसमें परेश रावल थे एंड ही प्लेड द कैरेक्टर ऑफ अ ब्लाइंड मैन.
1: नहीं याद मुझे.
0: सेकंड गोलमाल वाज जिसमें अजय देवगन और करीना कपूर जो है हस्बैंड वाइफ थे और करीना कपूर का भाई वस्तु शार कपूर.
1: अच्छा.
0: एंड अरशद वारसी वाज द पुलिस इंस्पेक्टर. थर्ड गोलमाल वाज दिस वन जिसमें आप बोल रहे हो कि उसमें उंगली पॉइंट करते तो उंगली तोड़ देता है. जॉनी लीवर थे उसमें और करीना थी और हु एल्स वाज देयर लाइक कुणाल खेमू. आई थिंक कुणाल खेमू जॉइंड गोलमाल विद गोलमाल 3. अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तुषार कपूर एंड अजय देवगन. और फोर्थ वाला था गोलमाल अगेन जिसमें वो थे क्या नाम है उनका
1: मुझे नहीं पता.
0: परिणीति चोपड़ा थी और प्रकाश राज थे. सोनू सूद वाज आल्सो देयर एंड नील नितिन मुकेश.
1: ओके,
0: वो फोर्थ वाला था. आई आल्सो लाइक द थर्ड वन. एनीवेज थोड़ी देर बाद आज का डेली राउंड अप. ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. डोंट माइंड
2: लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: At Macca's, you can get the new honey sriracha sauce on any breakfast. McMuffins, brekkie wraps, big brekkie burgers, hotcakes. Nah, that'd be weird. Honey sriracha, only for a limited time. T's and C's apply.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले. जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट. squirrel.co.nz.
5: Make layovers something to look forward to with the American Express Gold Rewards Business Card. You can earn 100,000 bonus points worth up to $750 in Amex travel. Plus, enjoy 2 priority pass visits each year in over 1,300 airport lounges worldwide. Search Amex Business and turn payments into points. Offer ends 14th of December 26. 1.5K minimum spend in the first 3 months. New Amex card members only. T's and C's for membership rewards and lounge exclusions apply. Priority pass enrollment required.
6: वो इनडेलिबल होम्स

0: your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: Don't miss the Volkswagen 5-day sale on now at your local dealership. Get exclusive offers across the range and go in the draw to win one of 40 Samsung OLED TVs worth 7699. Offer ends August 22nd. T's and C's apply.
5: Volkswagen.
6: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
7: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: What's going on?
9: डेली राउंडअप में 31 साल के एक व्यक्ति पर चार्जेस लगाए गए हैं, जब कल उसने लिन मॉल में स्टाफ को दिखाया कि वो एक फेक पिस्टल कैरी कर रहा है अपने वेस्ट बैंड में। पुलिस को कॉल जो है ये मिला फ्रॉम सिक्योरिटी स्टाफ एट न्यू लिन, और जिन्होंने रिपोर्ट किया अ मेल हैड एलिजेडली टोल्ड स्टाफ कि वो शॉपलिफ्टिंग नहीं कर रहा है, बट ही डिड हैव अ वेपन। वैतमाता एरिया प्रिवेंशन मैनेजर एक्टिंग इंस्पेक्टर निक सोल्टा ने बताया कि ऑफेंडर देन लिफ्टेड हिज टॉप टू रिवील द हैंडल ऑफ व्हाट ही रिपोर्टेड टू बी अ पिस्टल जो उसके वेस्ट बैंड में था। इसके बाद व्यक्ति जो है दुकान से निकल गया विद द हुडी विदाउट पेइंग फॉर इट, और उन्होंने कहा कि ऑफिसर्स वे नॉट एबल टू फाइंड द मैन एट द सीन। एक घंटे बाद पुलिस को एक और कॉल जो है कि आया फ्रॉम ए मेंबर ऑफ द पब्लिक, जिन्होंने उसके बारे में जानकारी दी एक्टिंग सस्पिशियसली इन ग्लेन ईडन, और इन्फॉर्मेंट ने इस व्यक्ति को डिस्क्राइब किया ऑन अ वीडियो कॉल लिफ्टिंग हिज स्टॉप टू रिवील अ पिस्टल इन वेस्ट बैंड। पुलिस जल्दी से वहां पहुंची और लोकेटेड टू पीपल इन अ स्टेशनरी व्हीकल। एक जो है उसने जो चुराई गई हुडी है ये पहनी थी, और साथ में दूसरे को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली और एक प्लास्टिक बीबी गन और एक बैग में मेथमफेटमिन भी पाया। और इसके अलावा अब 31 साल के एक व्यक्ति को आज वैटाकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा चार्ज विद प्रेजेंटिंग एन इमिटेशन फायर आर्म एंड शॉपलिफ्टिंग। 48 ईयर्स की एक महिला पर 5 ड्रग रिलेटेड चार्जेस लगाए गए हैं, और उन्हें भी आज वैटाकरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा।
10: दूसरी ओर एक खबर आ रही है जहाँ पर कहा गया है न्यू नर्सिंग ग्रेजुएट्स न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड जॉब्स, इवन दो फिलहाल कंट्री का हाल ऐसा है कि नर्सेस का शॉर्टेज जो है ये नोट किया जा रहा है। कहा गया है कि कुछ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने मोर देन 100 जॉब्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी प्लेसिंग नहीं मिली है। एट द सेम टाइम नर्सेज यूनियंस का कहना है कि हॉस्पिटल्स आर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स और हॉस्पिटल वर्ड्स जो हैं ये एक्सट्रीमली बिजी हैं और अंडरस्टाफ्ड है। एक ग्रेजुएट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये नर्सिंग ग्रेजुएट है जिनका नाम मिगन बताया गया है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पिछले साल अपनी जो डिग्री है ये कम्प्लीट की, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स ऑफ अनपेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया और अप्लाई किया है फॉर मोर देन 100 नर्सिंग जॉब्स, और अभी तक इनको एक भी नौकरी नहीं मिली है। शी इज करंटली सर्वाइविंग ऑन द जॉब सीकर बेनिफिट। इनका कहना है कि ये काफ़ी डेविस्टेटिंग है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन थे इनके कि नर्सिंग करियर जो है ये अच्छा रहेगा एंड इट वुड बी ईजी टू फाइंड वर्क। अब जो सिचुएशन बन पड़ा है इसकी वजह से ये कंसिडर कर रहे टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि थिंग्स डोंट वर्क आउट तो ये अपना नर्सिंग का जो करियर है इसे गिव अप कर कुछ एकदम अलग कम्प्लीटली डिफरेंट जो है ये करने वाली हैं। दूसरी ओर हेल्थ न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो ऑफर कर रहे हैं रफली द सेम नंबर ऑफ ग्रेजुएट पोजीशंस एज लास्ट ईयर। उनका कहना है कि वो इस बात की श्योरिटी चाहते हैं कि देयर इज अ बैलेंस बिटवीन न्यू ग्रेजुएट नर्सेस और एक्सपीरियंस नर्सेस। हेल्थ न्यूजीलैंड ने कहा है कि इट इज सपोर्टिंग ग्रेजुएट नर्सेस इनटू एम्प्लॉयमेंट, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि दे मे गेट अ जॉब इमीडिएटली। इम्पोर्टेंटली हेल्थ न्यूजीलैंड ने यह भी कहा है इट हैज़ नेवर बीन एबल टू एम्प्लॉय एवरी नर्सिंग ग्रेजुएट। वो फिलहाल हेल्प कर रहे हैं एम्प्लॉयज रिक्रूट अप टू 400 ग्रेजुएट नर्सेस विद फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू $15,000 फॉर अर्बन प्लेसमेंट्स और $20,000 फॉर रूरल प्लेसमेंट्स. तो लेट्स सी, अभी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ये सामने आया है, इसके बारे में काफ़ी बातें कई दिनों से हो रही, इट्स नथिंग न्यू, बट क्या सोल्यूशन क्या है इसका, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट.

0: एंड इफ एनी सोल्यूशन इज बींग वर्कड ऑन तो उसकी भी जानकारियां देनी चाहिए, बट अभी तक तो कुछ नहीं आम हुआ है. इफ एनीथिंग कम्स थ्रू डेफिनेटली आपके साथ हम शेयर करेंगे.
1: Let's go. Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. Do Baate.
1: इस हफ्ते की ये आखिरी दो बातें हैं, तो जरा गौर फरमाएं। पहली बात, खेल किस्मत का होता है, अगर दिमाग का होता तो बिरबल बादशाह होता।
2: क्या बात है।
1: और आज की दूसरी बात
2: जी,
1: इस पर भी हो सके तो
2: गौर फरमाइए।
1: हाँ, सबसे सब्र नहीं होता,
2: बिल्कुल,
1: पर सब्र से सब होता है।
2: बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में ज़रूर आई, क्योंकि अगर ये दो बातें हम बोल भी रहे हैं और आपको समझ में ना आए तो फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है इसका। बट अगर समझ गए तो आप भी बेहतर से बेहतरीन खुद को ज़रूर बना पाएंगे। अब आपसे चाहेंगे इजाज़त जाने की। थैंक यू सो मच आपके साथ और कीमती समय के लिए जो आज आपने हमारे नाम किया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अब मंडे को ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। जाते जाते बस इतना ही कहना है, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर फ्राइडे एंड सी यू ऑल ऑन मंडे।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
2: My time with Kashiko.
3: A very very good morning to you people. How are you? Studio की घड़ी में आज 10:03 हो रहे हैं. आज 21 अगस्त का दिन है. आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो आप वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. वैसे ऐसे में आपका मूड कैसा चल रहा है? जैसे मेरा होगा आई एम वेरी श्योर. रीजन इज क्योंकि आज का दिन होता ही खास है. अरे खास इसीलिए क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है. थैंक गॉड इट इज शुक्रवार. TGIF. और ऐसे में आपका प्लान क्या है भाई? ऐसे ऐसे बोलते हुए कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी के हर पल में एक नई शुरुआत जब होती है आप उसे खो दें. तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना समय ज़रूर अपने लिए निकालें ओवर द वीकेंड. बस इसी नोट पर आप सबको वेलकम करना चाहती हूँ कशिश फूड्स के सौजन्य से, जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे आपका कारवान मेरे साथ जुड़ जाता है. और ऐसे में देखो फिर ऐसे में ऐसे में किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ किसी न किसी चर्चा पर किसी न किसी ऐसे टॉपिक पर बात करती हूँ जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रखता हो. और आज हमारा साथ निभाएंगी इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 800 रचना. कोई सवाल है तो बिल्कुल मुझे आप बता दीजिए. लेकिन अभी के लिए बजाऊँ क्या? पहले गाना बजाती हूँ, बाकी बातें बाद में.
0: बजाओ क्या

याद रहे बोर्ड नाउ, हाँ अभी नहीं है बोर्ड नाउ, ओबीसी लिख के भेज सकते हैं आप 5599 पे और कॉम्पिटिशन पेज पर आप जा सकते हैं, बट यू हैव टू स्टिल वेट फॉर द अनाउंसमेंट, नॉट नाउ, ओके।

0: सो माइक टाइम में, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वैसे कहाँ भटक रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? सो इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800, ये आ गई टेलीफोन लाइन पे बोलने के लिए. क्या?
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग रचना.
1: गुड मॉर्निंग, मैंने आधा सुन लिया था इसलिए आई जस्ट इंटरप्टेड कि कॉल करो 0800 रचना.
0: एब्सोल्युटली. ऐसा है कि हम लोग कहते हैं ना, इधर उधर जाने से बचना. यहाँ इतना लाइफ हम लोगों की बिजी हो चुकी है, मुझे लगता है इंडिया से ज्यादा हम लोग बिजी हो चुके हैं, तो हम इधर से एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं लिटरली, कि टू कैच अप ऑन टाइम. एंड समटाइम्स यू नो व्हेन यू प्रॉब्ली मस्ट बी वांटिंग टू गिव एन अपॉइंटमेंट एंड दोज पीपल माइट बी थिंकिंग कि ये क्लैश ना हो जाए कहीं, इज देयर अ वे, अ क्विकर वे विच वी कैन थिंक कि आपको और हमारे जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कुछ जुड़ सकते हो?
1: बिल्कुल, आप हुक्म करो और हम हाजिर हैं. बिल्कुल,
0: कुछ करना पड़ेगा तुम्हें.
1: बिल्कुल ठीक है. तो ऑन योर डिमांड काशिका जी, आई हैव टोल्ड यू फ्यू टाइम्स कि वी विल कम अप विद सम आइडिया. सो व्हाट वी हैव डन इज कि इन द पास्ट वी यूज्ड टू कंडक्ट सेमिनार्स इन पर्सन.
0: राइट.
1: तो क्या होता था कि कई बार लोगों को आना होता था बट दे वर नॉट इन अ पोजिशन टू कम, क्योंकि ऑफिस से निकलना है, नहीं हो सकता था. तो दिस टाइम व्हाट वी हैव डन इज on the public demand and on lot of people's request, what we have done is we are doing a webinar specially only for the first home buyers. Theek hai ki what they can do is we are having an expert who is going to come and give the tips as well. I am going to give tips on how they can get into the home ownership from the lending perspective with my 20 years of experience in the industry. So hum kya kar rahe hain, we are doing this webinar for especially first home buyers on 2nd of September at 7 PM. Okay, and what how they can do is, and please jitne bhi log, agar aap home owner ho, aapko lagta hai ki aapke friends ko zarurat hai ye tips ki, they are looking to buy a house, jitne logo se aap share kar sako aap karo. What we are going to do is today we are putting on the on our Facebook page of 0800 Rachna the invitation, and wahan pe barcode hoga, QR code hoga, sorry. आप वहां पे स्कैन करके आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हो. सो इट्स एज सिंपल एज यू टेकिंग आउट 30 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम टू एनरोल योर सेल्फ एंड यू कैन बी कमिंग. एंड इट्स एब्सोल्यूट फ्री सेमिनार वेबिनार दैट वी आर पुटिंग फॉर आवर फर्स्ट होम बायर्स.
0: ग्रेट. आई थिंक इससे बढ़िया बात ही नहीं कुछ हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग आजकल इतने हॉप जंप एंड स्किप करते हैं, चाहे वो किसी इवेंट में हो, कम्युनिटी का हमारा कमिटमेंट हो, ये हो वो हो, लेकिन एज यू सेड दिस इज गोइंग टू हैपन ऑन द 3rd of September.
1: नो, सेकंड, सेकंड ऑफ सेप्टेम्बर.
0: सॉरी, 3rd of September इज योर बर्थडे यार, मैं भूल गई.
1: So 2nd of September, because I'll tell you why it is even more useful. On 2nd of September there is a OCR announcement. अब ये भी देखना है कि OCR ऊपर जाता है कि this time they are going to hold it. तो उस point of view से हम अपने fresh tips देंगे शाम को 7 बजे. सो इवन मोर इट इज इवन इम्पोर्टेंट फॉर द फर्स्ट होम बायर्स टू कम एंड अटेंड टू सी वॉट इज इन स्टोर फॉर देम and how soon they should be in the home ownership. अगर आपके पास 5% deposit है, अगर वो 5% genuine saving भी नहीं है, but it's a family who is gifting you, whatever the options are, come and talk to us, come and join us for that free webinar. Take the opportunity and we would love to see you. Just register on our Facebook page, which will be up after midday today. So anybody who is interested as a first home buyer, please do come. It's an absolute free webinar that you can take an advantage of.
0: रचना, आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने आपसे एक बार कहा, आपने छठ से लेके वेबिनार प्लान कर लिया, और लुक एट द प्रॉम्प्टनेस इन यू. आई मीन ऑनेस्टली योर सर्विस इज फैंटास्टिक. और आज आप 12 बजे आप मुझे कह भी रही हो कि ये मैं फेसबुक के पेज पे पोस्ट भी कर दूंगी कि भाई वेबिनार कर रही
1: हूं मैं. मुझे 2 घंटे तो चाहिए, राइट?
0: और
1: तो बस मुझे 2 घंटे दे दो एंड आई विल एब्सोल्युटली पुट इट ऑन द फेसबुक पेज जस्ट आफ्टर मिडडे टुडे.
0: लोगों ध्यान से सुन लो, ये रचना है जो आप, मैं कहती रहती हूँ कि इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 800 रचना. लेकिन रचना, आपका फेसबुक का पेज भी बता दो, और आई नो दे कैन कॉन्टेक्ट यू एज वेल.
1: देखो हमारी वेबसाइट है www.0800rachna.co.nz. आप 0800 रचना फेसबुक पेज पे जाओगे तब भी आप मिल पाते हो. एंड एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड सी अस इन पर्सन, तो हमारा ऑफिस लोकेटेड है Level 3, 45 माउंट वेलिंगटन हाईवे, माउंट वेलिंगटन. तो आई हैव गिवन सो मेनी ऑप्शंस.
0: एब्सोल्युटली, एंड वी कैनॉट मिस दिस आउट. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. सॉरी आई टुक अ लिटिल मोर टाइम फ्रॉम यू टू बताओ यू, मगर ये कुड़ी तो पट गई. Thank you.
1: आपके लिए कुछ भी. Thank you
0: so much and have a great weekend. Bye.
1: Thank you.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumadi oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
2: Face it, you're good in groups. So why not turn your superpower into getting a group of blood buddies together? Friends, whānau, workmates, book a time to donate at nzblood.co.nz. Give blood, give plasma, save lives.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz।
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4-NZPMI।
6: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। फिर ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक Guru.
1: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This is the Bali and Bangkok. One epic trip. 5-star all-inclusive stays. Breakfast, lunch, dinner sorted. Return flights from Auckland to Bali to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.

0: मैं आज जब ऑफिस शाउट आउट की बात कर रही हूँ तो बस सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, एंड दैट इज दैट मुझे कौन कहाँ से सुन रहा है। भाई ऐसा भी बहुत कुछ होता है जहाँ पे मैं कह सकती हूँ ये नॉर्थ शोर से कहाँ से आ गए आप लोग। अरे फैंटास्टिक बिंदु, अ बिग थैंक यू टू यू क्योंकि आप मुझे नॉर्थ शोर से सुन रहे हैं। एंड आपने मुझे बताया कि नमस्ते नमस्ते ग्रोसरी शॉप है, आई थिंक इट्स इन वायरू, यू आर समवेयर देयर, तो आप वहाँ से सुन रहे हैं मुझे। सो बिग थैंक यू टू यू एंड हेलो टू ऑल द पीपल एट द नमस्ते इंडियन सुपर मार्केट एट द वायरो वैली।
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: spending money.
1: Thanks to Solomon Airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: देखा, मैंने कहा था ना, ये रिमाइंडर है आपके लिए, जहाँ पे दो रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआटू सोलोमन एयरलाइंस के साथ आप जीत सकते हैं अलॉन्ग विद $1,000 कैश प्राइज. अब ये कभी भी हम बोर्डिंग का अनाउंसमेंट आपके लिए करेंगे, और जैसे ही बोर्डिंग का अनाउंसमेंट होगा आपको रोवा पे जाना है और फटाफट टाइप करना है बोर्ड नाउ और फिर सबमिट करना है अपनी एंट्री को. बस इतना ही सिंपल है. ये अनफॉरगेटेबल डेस्टिनेशन का एक अमेजिंग वेकेशन आपके लिए प्लान्ड है. जाइए इस पैराडाइज में जाकर एंजॉय कीजिएगा. और आपको इतना बता देती हूँ, एक नहीं दो टिकट्स होंगी, है ना. तो बस जिस समय बोर्डिंग नाउ आए तो आप फटाफट एक काम करिएगा इजी बनाने के लिए, बीसी लिखिए बोर्डिंग कॉल के लिए, बोर्डिंग कॉल के लिए बीसी लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको वो लिंक मिल जाएगा जिस लिंक के ज़रिए आप अपना बोर्ड नाउ सबमिट कर सकते हैं. बहुत सिंपल है ये. बिग थैंक यू हम कहना चाहते हैं टू सोलोमन एयरलाइंस, जो चार बार हफ्ते में नॉन स्टॉप फ्लाई करते हैं टू वनुआटू. इसके साथ साथ इनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप डिटेल्स हासिल कर सकते हैं flysolomons.com के ज़रिए. वैसे हमारे जो कॉन्टेस्ट है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझने के लिए भी आप हमारे वेबसाइट पर चले जाएं, रोवा ऐप पर भी चले जाएं.

0: Matter.
1: एक बात है, जितने भी दोस्तों से या फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी बात करते हैं ना, ये पता चलता है कि फ्लू है, बैडली यू नो सिक हैं, कुछ है। एक बात है कि ऑकलैंड ने वर्स्ट वीक ऑफ फ्लू देखा है, जहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिशन्स भी हुए हैं। देयर वर 177 पीपल, जो चार हॉस्पिटल्स में अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की वजह से बिटवीन 9 टू द 16th ऑफ अगस्त एडमिट किए गए, और उसके पे एक हफ्ता पहले 125 यानी कि बढ़ते चले गए। और ये पता चल रहा है कि ये हाईएस्ट वीकली एडमिशन रेट है सिंस 2015। और ये भी पता चल रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पाइक इन दिस एक्टिविटी राइट नाउ, जहाँ ये फ्लू बहुत जल्दी कैच कर रहा है लोगों को और ये बढ़ता ही चला जा रहा है। पर्टिकुलरली ये सिवियर विंटर की इलनेस हो सकती है, और ये जो फ्रंटलाइन की सर्विस है कितनी बिजी हो गई है इसकी वजह से। ये अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जो है, ये फ्लू लाइक इलनेस होती है, और ये इसका एक आई कैन से दैट इट्स अक्रॉस द कंट्री नाउ। ये कभी फीवर के साथ स्टार्ट होता है, कभी यू नो कोल्ड के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन साथ में ये आपकी ब्रीदिंग के जो एक्टिविटी है उसको भी रोकने की कोशिश करता है। इट कैन एक्चुअली गेट सो बैड एंड सो वर्स, लेकिन ये भी एक कहा जा रहा है कि एक स्ट्रेन है। अब ये कौन सा स्ट्रेन है, AH3 वायरस इसको बोलते हैं, लेकिन डोंट बी टू स्केर्ड अबाउट इट। आई थिंक मैंने जो एक चीज़ कल जाने से पहले कही थी, पहली बात तो ये कि बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, यू नो फॉर दिस अराउंड 5,500 लोगों ने अपना यू नो इसका वैक्सीनेशन भी लिया था। बट एक चीज़ जो है, मैंने कल जाने से पहले कहा था, आपका विटामिन सी का इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड करता है, आपको इन्फेक्शन से फाइट करने से रोकता है।
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुज़बी, टिकट्स बुक हो गए,
4: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है,
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती।
3: बैंकॉक
4: में होगा हमारा असली तशन,
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी,
2: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुज़बे, ओनली ऑन हम।
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
9: Indelible Homes, your building expert.
10: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए,
11: वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद।
10: ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
12: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
13: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
14: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
15: हाँ। अच्छा
14: बताओ, तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं।
15: मिसेस सिंह,
16: आई
0: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
15: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
16: Why just get through winter when you can sparkle through it? Come and enjoy the Winter Sparkle Celebration at Malabar Golden Diamonds. Scratch and win up to 100% discount on gold jewelry making charges. Saath hi $2,000 ki har diamond aur precious gem jewelry purchase par paye free gold coin. Plus, have old gold of 18 carat or more? To bina kisi loss ke exchange kijiye. Hurry! Visit Malabar Golden Diamonds at Botany Town Center, Auckland.
17: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.

0: after. Dream Diary.
1: So, Dream Diary में आप थोड़ा concerned हो गए थे after I spoke about the flu और किस तरह से चल रहा है. उन्होंने कहा this reminds me कि उनको सपने में भी ऐसे ही कुछ आया कि you know somebody is sick. अब बेसिकली ये होता है द थिंग इज दैट आप जब ड्रीम करते हैं ना कि कोई बीमार है, इट्स अ फेस फ्रॉम द ड्रीम जो आपके साथ रह जाता है. वो एक पेल फेस होता है या फेमिलियर फेस होता है. मे बी इट इज़ समवन यू लव, मे बी इट्स सम स्ट्रेंजर, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अब किसी भी जो बीमार है उसके बारे में अगर आप सोचते हैं या सपना देखते हैं

0: कहीं आपका पैशन हो सकता है, कहीं आपको लगता है कहीं दिल में चोट लगी है, या एक्चुअली कोई पुरानी चोट थी जो वापस निकल कर आ रही है. दिस माइंड ऑफ योर्स ये बोरो करता है और वो फिर एक ह्यूमन शेप में फॉर्म कर देता है कि आपका माइंडसेट क्या चल रहा है उस समय. अगर ऐसा भी होता है कि किसी ऐसे जने को आप जानते हैं जिसका आप सपने में आप देख रहे हैं, इट कुड बी एनी वन, तो मे बी दैट पर्सन इज लूजिंग दैट सपोर्ट एंड दे नीड दैट सपोर्ट फ्रॉम योर एंड. या एनीथिंग इज पॉसिबल.
1: दिल से दिल तक. अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स. फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800-4NZPMI.
0: कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन इज रवि तेज देव जो हैं बिल्कुल एकदम तैयार हो चुके हैं, जहां NZ कल्चरल ट्रस्ट के जरिए ये आपके लिए कमाल का प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं, जिसमें म्यूजिशियंस हैं और टैलेंटेड वोकलिस्ट्स हैं जो गाना गाने वाले हैं. एक लाइव वाइब्रेंट कॉन्सर्ट आपके लिए तैयार किए हैं. वैदिक सेंटर में आपको पहुंचना है. $30 की ये टिकट है एंड eventbrite.co.nz के जरिए आप ये टिकट भी खरीद सकते हैं. याद रहे, दिस स्पेशल इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन एड ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ फिजी. And this is presented by South Auckland Driving Limited.

0: you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: एक बात तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, दैट रक्षाबंधन अगले हफ्ते है. और क्या क्या आपने प्रिपरेशन की है, क्या क्या आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं. एक काम करते हैं, एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, ठीक है. अगले एक घंटे पर मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिचुएशन, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना एक उसका एक्सपीरियंस बताएं, कोई रिव्यू कर दीजिए उसी बात को लेकर, ठीक है.

0: आजकल हम चल रहा है बहुत न्यूज में, आप भी तो नहीं।
1: Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua west में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cash back or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
6: आपकी मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं। पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है। अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है। कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट।
7: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Gems, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoi. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Auckland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoi or Shiv Prasad, Kelston.
8: डिब्बा खुल गया
9: भरत भाई, टिफिन खुल गयो छे।
10: संजना का डिब्बा खुल गया।
11: जब कशिश स्पाइसेस से खाना बनेगा तो सारे ऑफिस की नजर में रहेगा। फिर यही तो होगा,
10: डिब्बा खुल गया।
11: हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, कशिश मसाले, अच्छे वाले। बाय एनी कशिश प्रोडक्ट एंड बी इन द ड्रॉ टू विन अप टू $10,000 वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस, गोल्ड कॉइंस एंड गिफ्ट वाउचर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today. Terms and conditions apply.
1: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. A long-running dispute over firefighters' pay is showing no sign of ending. Fire and Emergency says the Professional Firefighters Union has rejected arbitration despite an independent facilitator asking both sides to consider settlement proposals. The two sides remain more than $80 million apart in their offers. The Aotearoa Educators Collective has launched its own sector roadmap to combat never-ending policy shifts. Spokesperson Stephen Lethbridge says one of the five focus areas points to system-wide equity.
14: For too long, we've not addressed the real needs of catering for students with diverse learning needs in our schools.
13: An incident with a fake pistol at Auckland's Lynn Mall has landed a man in court. The 31-year-old is charged with presenting an imitation firearm and stealing a hoodie. When caught, police recovered a plastic BB gun and a bag of meth from a vehicle. A 48-year-old woman now also facing 5 drug-related charges. And new guidance on a Te Reo Māori parade has sparked backlash from the PSA. The union claims the Public Service Commission has discouraged staff from attending the annual event and says that undermines efforts to revitalise the language. It wants the guidance withdrawn.
8: And in sport, Simon Parker has got bragging rights with the All Blacks in South Africa. The loose forward is the only squad member from Northland who won the Ranfurly Shield in the NPC last night. Halfback Cam Roygaard says Parker was glued to the game against Canterbury.
15: Yeah, we did see him on his phone throughout the whole gym session though. He was watching pretty closely, especially in the closing minutes.
8: The Loggerwood is due to arrive at Whangarei Airport with the team at 11.50 this morning. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. Exclusive Rugby World Cup packages selling now.
1: News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
16: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
17: सोचित किया जाता है कि बालेवू नौसारी फिजी के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती मुत्तु स्वामी गोंदर की पुत्री सनीवेल ऑकलैंड की जेफरी हॉग की पत्नी ऑकलैंड की सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की माँ सनीवेल ऑकलैंड की विजयलक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आने वाले सोमवार 24 अगस्त को दोपहर 1 बजे मैनेकॉ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0212137900 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने, बाउलेवू नौसारी फिजी के स्वर्गीय श्रीमान श्रीमती मुत्तु स्वामी गोंदर की पुत्री सनीवेल ऑकलैंड की जेफरी हॉक की पत्नी ऑकलैंड के सनील स्वामी और करिश्मा कुमार की माँ सनीवेल ऑकलैंड की विजयलक्ष्मी की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार आने वाले सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे मैनेकॉ मेमोरियल गार्डन्स में की जाएगी. ज़्यादा जानकारी के लिए 0212137900 पर आप संपर्क कर सकते हैं.
16: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
1: वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर वेयर लर्निंग इज फन. कॉल 0800462626.
17: The highs of 16, overnight temperature of 9. आज का फोकस बताया जा रहा है. It feels like 15 degrees right now. आसमान पे थोड़े बादल हैं. हल्की हवाओं के साथ साथ इस समय आप 15 डिग्री टेम्परेचर महसूस कर पा रहे हैं. 55.53% सनसेट बताया गया है.
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर.
18: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा.
1: Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
19: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithe, kyunki aa rahi hai.
20: My Time with Kashika. Wow.
17: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में 11:04 हो चुके हैं. आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. और ये टीम हम की तरफ से और मेरी तरफ से काशिका की तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं. और साथ साथ ये भी आपके लिए हम प्रे करना चाहते हैं, आप जैसे भी रहें कैसे भी रहें स्वस्थ रहें, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है. अब जब मौसम ख़राब है तो या तो मैं कहूँगी घर पे बैठिए, या कहूँगी अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ही बाहर जाइएगा. ज़रा सी ठंड की चपेट पड़ी कि आप समझ लीजिए कि वो आपको पकड़ लेगा, है ना. ये मौसम बदल रहा है और ऐसे में आपको मैंने पिछले घंटे पे बताया भी था किस तरह से इतने ज़्यादा इस सीज़न में आपको फ्लू से रिलेटेड जोल्ट्स मिल रहे हैं. लोग तरह तरह के आपको घरों में आपको ये पता चल रहा है कि इसको फ्लू है, बहुत बीमार है. प्लीज़ अपना ख्याल आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा. मैं तो नहीं रख सकती, मैं खाली रिमाइंड करा सकती हूँ कि सब ठीक रहे. यस, आई एम योर रिमाइंडर क्लॉक कशिका. और 12 बजे तक आपका मेरा साथ होता है मंडे टू फ्राइडे कशिश फूड्स के सौजन्य से. अब थोड़ी ही देर बाद मैं आपके लिए टेलीफोन लाइंस खोलने वाली हूँ क्योंकि राखी से रिलेटेड मुझे आपके साथ कुछ बातचीत करनी है. होता यह है कि रक्षाबंधन के मौके पर कोई सरप्राइज़ आपको मिलता है, या भैया या बहन आपका कोई आपको आके इस तरह से मेमोरेबल बना देता है आपके लिए. वो आप उस समय हमेशा गुस्से में रहते हैं, अरे भाई बहन है ये आते नहीं है, कुछ नहीं करता, सडनली आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं. उस समय आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होता. कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, कुछ रिव्यू करना चाहेंगे अपने भाई या बहन को, 0800 हम पर आप ज़रूर कॉल कीजिएगा. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लता मंगेशकर जी की आवाज़ का गाना है जो मैंने प्लेस किया है उसके बाद.
1: बचाओ क्या,

0: ऐसा कभी हुआ कि आपके भाई या बहन ने वो वादा नहीं निभाया, और जब वो वादा निभाया तो उस समय आके आपके सामने एक सरप्राइज बन के खड़े हो गए या हो वो खड़ी हो गई? ऐसा कहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ तो प्लीज़ ज़रूर आप हमें बताइए। मेरे साथ ऐसा हुआ था डेफिनेटली, क्योंकि मेरी एक सिस्टर जो थी वो रहती थी कहीं ओवरसीज़, एंड उसके बाद इट वॉज़ ऑलवेज़ यू नो लाइक वी वुड ट्राई एंड सी कि अगर मम्मी के साथ एंड यू नो फादर के साथ हम लोग रक्षाबंधन पे, जब व्हेन आई वाज इन मुंबई एट दैट टाइम, एंड वी यूज़ टू फ्लाई, आई यूज़ टू फ्लाई डाउन, एंड वहाँ पर हम लोग कोशिश करते थे अपने भाई को, और स्पेशली जब पता था कि भाई यू नो हमारा एक बार हुआ था कि यूएसए से आए थे, एंड उसके बाद हमें लगा कि अब तो भाई से यहाँ पे तो मुलाकात करनी पड़ेगी। हमारे घर में एक रिचुअल होता था कि भैया और भाभी दोनों को राखी बांधते हैं। आई डोंट नॉट नो आपके घर पे ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट ऐसा हमारे घर पे हुआ तो, एंड वो भाभी को लेकर आए थे साथ में, एंड छोटा मतलब भतीजा था मेरे साथ उनके साथ, तो हमें एक्साइटमेंट हो गया कि नहीं हमें मिलना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक तो मैं मुंबई से उस समय आ रही थी, मेरी सिस्टर ओवरसीज थी उस समय, एंड हम दोनों ने क्वाइटली प्लान किया कि हम यू नो मिलके एक साथ वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी बड़ी बहन जो है बहुत पर्टिकुलर हैं, इस टाइम पे ये होना चाहिए, क्योंकि हम लोग झूठे मुँह राखी नहीं बांधते। तो उनका ये तो हम लोगों ने सुबह की जो अपनी फ़्लाइट बुक करी हुई थी, हम लोगों ने ऐसे प्लान किया कि हमने लैंड हुए, एंड माई सिस्टर केप्ट वेटिंग फॉर मी बिकॉज मैं लोकली आई थी, एंड उसके बाद हमने टैक्सी पकड़ी, और टैक्सी पकड़कर जब घर पहुँचे तो देखा दीदी की गाड़ी खड़ी हुई, बड़ी सिस्टर की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैं और मेरे से बड़ी वाली सिस्टर, हम लोग दोनों ने वहाँ जाके यू नो टैक्सी से बोला, मतलब मैं शैतान, मैं ज़ोर ज़ोर से हॉन्क करना शुरू कर दिया, तो ये लोग सोचने लग गए घर के बाहर टैक्सी आके खड़ी है, कौन चिल्ला रहा है इतनी ज़ोर से, क्यों हॉर्न बजा रहे हैं? तो मेरे फादर ही वॉज़ वेरी एंग्री कि कौन है आके इस तरह कर रहा है, बहन भी आ गई और भाई आके वहाँ पे खड़े हो गए कि चक्कर क्या है, कौन है ये? एट द मिनट दे सॉ अस, दे लिटरली लाइक स्क्रीम्ड काइंड ऑफ अ थिंग, ओ माय गॉड, मतलब यू डोंट नो दैट मोमेंट कैन बी व्हाट, दैट वॉज दैट मोमेंट। एंड मेरे भाई जो थे वो कहते, मेरे अंदर से मन में था कि मेरी दोनों बहनें कैसी हैं, इनको पता है कि मैं ऐसे मौके पे जब आया हूँ तो मेरे साथ ये लोग आ नहीं सकते राखी के लिए, मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, एंड वी मेड इट एंड वी डिड इट, इट वॉज सच अ बिग सरप्राइज। अभी ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है, आपके साथ कुछ ऐसा कहीं से रिलेट कर सकते हैं, 0800 004 866 पर आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड करना चाहती हूँ। आई एम सो एक्साइटेड टू लिसन टू योर पार्ट ऑफ द स्टोरी कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके सिबलिंग की रिव्यू कैसे आप करना चाहते हैं। चलो चलो कॉल करो भाई, वरना ये एक हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते तो ये ड्रॉ भी हो जाएगा, फिर कहेंगे कि आपके, अरे यार हमने आज तो हमने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे भाग लेने का मौका है आपके लिए, और दूसरा जो मौका है आपके लिए है वो हमारी सोशल मीडिया के ज़रिए, बट इससे पहले कि मैं सोशल मीडिया पे पहुँचूँ, मुझे लगता है कोई भाई या बहन को मैंने पुकारा और उन्होंने मुझे कॉल किया। हम गुड मॉर्निंग, किन से बात कर रही हूँ?
1: गुड मॉर्निंग, संगीता से बात कर रही हैं, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ संगीता, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग।
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड आपने इतना टची टॉपिक लिया है आज, यू नो इट रियली टचेस माय हार्ट एंड ब्रिंग्स बैक ब्यूटीफुल मेमोरीज। ऐसा हुआ था कि मैं इंडिया गई हुई थी, एंड मैंने अपने किसी भी रिलेटिव को अपनी इंडिया ट्रिप का नहीं बताया था, एंड इट हैपेंड टू बी राखी टाइम, एंड आई डिडंट रियलाइज कि वो दिन राखी का था। सो मैं अपने कजिन्स के पास जा रही थी, तो उन मेरी ताई जी के घर, तो मेरी ताई जी ने बड़े दिनों से बोल रही थी, बेटा आ जाओ, उम्र का पता नहीं है कब पूरे हो जाए, मिल जाओ। एंड मैंने एयरपोर्ट से उनको कॉल की, वी आर लकी आजकल व्हाट्सएप है तो आपको पता ही नहीं चलता आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। सो मैंने उनको कॉल करी, मैंने कहा ताई जी आप क्यों रो रहे हो, आंखें बंद करो और मैं आई। कहते तू हर बार ऐसे बोलती है, बट अब मैं आंखें बंद करके रखूंगी जब तक तू नहीं आएगी। आई सेड नहीं, डोंट डू दैट। सो आफ्टर 3 hours आई रीच देयर, एंड गेट पे मेरे ताया जी सैर कर रहे थे, दे आर ऑल इन 90s। सो एंड मेरा कजन उनके साथ था, एंड आई हैडंट met these cousins for almost 10 years.
0: Huh.
1: So, main jaise hi gayi, everybody started to scream.
0: Oh.
1: And mera ek nephew tha jisko maine kabhi, I mean, maine dekha tha jab wo paida hua tha, but he didn't know me.
0: Huh.
1: And he ran inside his house.
0: Oh.
1: And told his mom, pata nahi amma kaun aayi hai, sab keh rahe hain bitiya aa gayi, bitiya aa gayi. And they're all crying.
0: Oh my God.
1: So she came running out and she said, Abhi, it's so, Didi, it's so nice that you have come for Rakhi.
0: Oh.
1: I said, honestly, I didn't know it is Rakhi today, but I'm glad I could make it. You know?
0: My God.
1: That was a beautiful moment for me. And it still brings tears in my eyes.
0: Mm.
1: But, bahut sundar memories.
0: I know. Aapke bhai ka naam kya hai?
1: Mere brother ka naam Sanjay hai.
0: Sanjay, तो वो तो बिल्कुल, you know, एकदम
1: everybody was taken aback.
0: I can totally relate to you. Relate to you, Sangeeta. और मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड भी कर दिया है. It's really emotional because I can visualize it, you know, totally. Oh, thank you so much for your
1: when
0: call.
1: I heard yours, you know, honking on taxi ka honk and all that, so maine kaha maine bhi yahi kiya tha, but I told the taxi driver chup rehna.
0: Nahi, mujhe to shor machane ki aadat hai. Thank you.
1: I think umr ka takaza hai.
0: Aisa kuch nahi hai. कभी कभी उम्र कहते हैं ढलनी नहीं चाहिए एंड योर हार्ट इज ऑलवेज यंग. सो थैंक यू सो मच संगीता फॉर योर कॉल एंड मैंने आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर दिया. टेक केयर. हैप्पी राखी टू यू.
1: थैंक यू एंड सेम टू यू. बाय
0: बाय.
1: गॉड ब्लेस. बाय.
0: चलिए सिक्स वर्ड स्टोरी भी कुछ इसी तरह से अगर कर सकते हैं बता सकते हैं तो टेक्स्ट कीजिए.
2: Please. We are now inviting all passengers booked on flight Hum 104.2 to the tropical paradise of Vanuatu with Solomon Airlines to begin boarding immediately. Please have your phone ready, your Rova app open and your excitement switched on for inspection. Your boarding pass for this exclusive flight is easy. Listen out for the special Hum boarding call on air. That's your cue to open Rova app and enter Board Now to lock in your entry to win. To return air tickets to Vanuatu flying with Solomon Airlines plus $1,000 pending money.
3: Hum boarding call thanks to Solomon Airlines, flying 4 times each week non-stop from Auckland to Vanuatu.
0: Let's go.
3: Visit flysolomons.com. T's and C's apply.
4: And now the latest in sport. Teams are gearing up this week for $10 deals on Uber Eats. Holy. And now time for a break, I think. Find Ding Dong Deals on Uber Eats.
5: Contact support if promo not applied. T's and fees apply.
6: At Woolworths, we're helping you get more value every day. Like New Zealand-grown loose pre-ripened avocados, a fresh deal at just 99 cents each. And Huggies Jumbo Nappies 64 to 108 pack, just $26.89 per pack. T's and C's apply.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
8: Join our tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
8: join our tribe!
9: आपके मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं. पिछले 28 सालों से एशियन फैमिली सर्विसेज न्यूजीलैंड में एशियन कम्युनिटीज को उनकी भाषा में मेंटल हेल्थ, एडिक्शन, गैम्बलिंग और सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है. अब शुरू हो रहा है रीच इन रीच आउट, एक नेशनल कैंपेन जो मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करने पर इनकरेज करता है. कॉल एशियन फैमिली सर्विसेज हेल्पलाइन एट 0800 862 342 या विजिट करें asianfamilieservices.nz फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट.
10: The sleepless nights, the aching knees, the energy that's never quite there. They may be linked to excess weight and shouldn't be ignored. Talk to your doctor about your weight and what support is available to you. Weight management takes time and effort to be successful. People should seek professional advice on diet, exercise, and lifestyle changes. Medicines have risks and benefits. Individual results may vary. Eli Lilly New Zealand Limited, Auckland.
11: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band.
12: Ram, Ram, bolo re.
11: Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life, Fiji ko donate honge. Providing free heart surgeries. Powered by Events Oakland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh, Papatoy. Or Shri Prasad, Kelston.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six Word Story.
0: This was really prompt और आपने कहा shared secrets, endless late night laughs and why don't you write your names? Sometimes it really really makes me feel sad. और आपने कहा thank you so much, the topic was so interesting and it was so emotional and thanks Kashika for bringing down you know these things. Okay, thank you so much. चलिए आगे बढ़ते हैं.
2: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: My Time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: अब बहुत बात यह है कि द प्राइस है रिकॉर्ड प्राइस आई कैन से दैट इज मोर देन 30% एंड दिस इज जस्ट इन 2.5 years. अब ये आप सोच रहे हैं किस चीज़ का इतना बड़ा प्राइस हो चुका है. बीफ का जो मिन्स प्राइस है इट्स हिट द रिकॉर्ड हाई. जहाँ फॉर्मली ये प्रोटीन जो था ये बजट शॉपर्स के लिए ग्राइंडिंग वाला $24 अ किलो का था, अनलाइकली मे बी इट ईजेस बाई 2027. अब ये न्यूजीलैंड का जो ये जो एक बीफ है जो पर्टिकुलरली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, इससे क्या होता है रिटेल की जो प्राइसेस थे इट वाज वर्किंग आउट एज अ चीप ऑप्शन एंड लोगों को इसमें फ़ायदा भी होने लगा. बट द थिंग नाउ हैज़ हैपेंड दैट पहले इनिशियली चिकन ब्रेस्ट वॉज एवरेजिंग एट $14.80 के हिसाब से एंड पोक वॉज $16.70 अ किलो. नाउ अब आप फ़र्क देखिए जाके, तो ये प्राइसिंग जो है बढ़ती चली जा रही है एंड पीपल आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट इट.

0: ईट बेटर लिव बेटर. लेकिन एक रेवोल्यूशन आया है जहाँ रणबीर कपूर इज ऑल सेट टू स्टार्ट शूटिंग एंड बुकर जी की ब्रह्मास्त्र 2 फ्रॉम अप्रैल 2027. अब ये एक स्टर आ चुका है क्योंकि इस फिल्म में दीपिका पादुकोण इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अमृता एंड उनकी रीयूनियन होने वाली है विद रणबीर कपूर. अब ऐसे में ये कॉन्वर्सेशंस के दौरान पता चल रहा है दैट दे ऑल्सो लॉक्ड आलिया भट्ट इन द सीक्वल. अब ये क्या होने वाले है, इन्होंने एक एक्सटेंडेड अपियरेंस अपने ब्रह्मास्त्र 2 में देने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू बी शूटिंग फॉर अराउंड 25 डेज. ये फिल्म जो है 125 डेज की शूटिंग का एक प्लान जो चल रहा है ब्रह्मास्त्र 2 का, जहाँ देव और अमृता के ऊपर ये कहानी थी. नाउ दिस विल बी एक्सपेक्टेड टू प्ले बाय रणबीर कपूर एज वेल एज दीपिका पादुकोण. सोर्सेज के जरिए पता ये चल रहा है कि रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र 2 में डबल रोल करने वाले हैं, शिवा एंड देव. अरे वाह. और आलिया भट्ट जो है वो शिवा के ऑपोजिट नज़र आने वाली हैं. दीपिका पादुकोण विल बी एज देव्स वाइफ. अब ये पैरेलल रोल जो है, क्या ये ब्रह्मास्त्र 3 बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ पता नहीं. अभी रियलिटी चेक नहीं हुआ इसके ऊपर.
1: Drive show with Sandy and Rusby.
2: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हो.
3: ये गलत बोल दिया यार.
2: और पहनता भी नहीं उसको.
3: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूं मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
2: इंटरेस्ट
4: ब्रांड हो गया अभी.
3: अभी ब्रांड हो गया ना.
2: रुस्बे के बाल लगे उस.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
8: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 21 branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare brings you a crazy offer with 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
9: Boat plus ute equals beaut. Get Dad a $5 The Real Deal instant Kiwi ticket for a chance to win a Toyota Hilux and Stabycraft 1450 Frontier combo. Get your Father's Day gift sorted at your local Lotto NZ store. R18 T's and C's apply.
10: Auckland's growing with more people on our roads every day. So we need to make better use of the spaces around your hood. AT is proposing to connect bus and transit lanes along Mount Eden Road, Sandringham and Remuera Roads to ease congestion and create smoother journeys for all road users. And we want to hear from you. To have your say, search Keeping Central Auckland Moving on the AT website. AT, your city moving.
11: Rebel's taking it back to 96 with our big birthday blowout. We're celebrating 30 years with up to 30% off store-wide. That's up to 30% off clothing, footwear and equipment. Only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
12: 3, 2, 1, rush! Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
13: South Auckland Driving Limited presents Bhajan Jams, live concert by Ravitesh Dev, devotional fusion bhajans or kirtans with live band. Saturday, 22nd August, 7 p.m. Vedic Center, Papatoy. Tickets sirf $30. Free entry for children under 5. Sare proceeds, Gift of Life Fiji ko donate honge, providing free heart surgeries. Powered by Events Oakland, Maki and Party Hire. Tickets available from Eventbrite, Jay's Fresh and Valley Fresh Papatoy or Shiv Prasad, Kelston.
14: Rescue me, recycle me.
0: रेस्क्यू में, रिसाइकिल में मैं एक ये चीज़ सजेशन देना चाहती हूँ. हमारे पास हम

0: प्लास्टिक में थैली के बजाय अपने बॉक्सेस में डाल दिया, तो दैट इज़ अ गुड वे एक्चुअली टू गो अबाउट इट. आई होप आप में इनमें से कोई भी एक चीज़ जब मैं कभी कुछ बताती हूँ आप ट्राई कर सकते हैं. एक चीज़ और कर सकते हैं आप, जब आप ब्रेड खरीदते हैं, ब्रेड के ऊपर एक एक्सपायरी डेट का टैग होता है. अब ये जो टैग्स होते हैं, जो लेबल होता है ना उसके ऊपर जो टैग्स होते हैं, कभी कभी कंप्यूटर आपके डेस्क पे जो कंप्यूटर होता है उसके पीछे आप सारे वायर्स को उसमें इकट्ठा करके लगा सकते हैं. एक दिन आई ट्राई टू फाइंड अ रबर बैंड, मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने वो ब्रेड का वो देखा, मैंने करे आई कैन ऑलवेज ट्राई दिस अराउंड एंड आई डिड दैट, वर्क्ड वेल.
1: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: airlines, flying four times each week, non-stop, from Auckland to Vanuatu. Visit flysolomons.com.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: तो याद रहे कि ये आपके लिए बोर्ड नाउ का एक साइन जो है, एक अनाउंसमेंट हो चुका है. फटाफट जाइए, 30 मिनट्स तक आपके लिए ये बोर्डिंग का डोर जो है ये खुला हुआ है, जहाँ पे आप अपना अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं. एंड टू पीपल यू विल बी रेडी टू फ्लाई टू वनुआटू. अच्छा, ये तो आप यहाँ से फ्लाई करेंगे, मुझे तो फ्लाई आउट करना पड़ेगा स्टूडियो से, क्योंकि मेरा टाइम आ चुका है यहाँ से आपसे टाटा बाय बाय कहने के लिए. तो कह सकती हूँ कि कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है शुक्रवार, और आप अगर आप बर्थडे एनिवर्सरी है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. लुक आफ्टर योर सेल्फ, स्टे वार्म. आई नो मौसम थोड़ा खुल गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ फिर भी आप वार्म रहिए. ऑलराइट, लेकिन आज शाम को अगर आप फ्री हैं तो ऑकलैंड भक्ति सत्संग का ग्रैंड थ्री कॉर्नर कीर्तन नाइट आप वैदिक सेंटर में जा सकते हैं एक्सपीरियंस करने के लिए. इट विल बी अमेजिंग. सो दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज. लुक आफ्टर योरसेल्फ्स. आपसे मुलाकात होगी मंडे की सुबह 10 बजे. तो कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है शुक्रवार, मुलाकात होगी दिन कहलाएगा सोमवार. बाय.